तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुप्रभात, 5:06 हुए हैं और एक नया दिन इंतजार कर रहा है हमारा। मैं हूं नमनी और अगले 2 घंटे तक हम साथ होंगे सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए जबरदस्त गानों के साथ, इंटरेस्टिंग बातों और पॉजिटिव वाइब्स के साथ। इन्हें एक बात याद रखिए, सूरज हर रोज इसलिए नहीं उगता क्योंकि कल परफेक्ट था, बल्कि इसलिए क्योंकि आज एक नई शुरुआत का मौका है। तो अपनी चाय या फिर कॉफी का कप तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत थर्सडे साथ में RM2 रेडियो मस्ती पर ही।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: जाना होगा,
1: मेले में ले जाना होगा,
0: खाना भी पकाना होगा,
1: झूमका दिलाना होगा,
0: झाड़ू भी लगाना होगा,
1: नखरे उठाना होगा।

0: जिंदगी में हर थर्सडे एक छोटी सी याद दिलाती है। वीकेंड दूर नहीं है, लेकिन सपने उससे भी ज्यादा करीब है अगर आज मेहनत कर लिया जाए। तो मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अगला गाना आ रहा है सिर्फ आपके लिए, आपके इस मॉर्निंग को अमेजिंग बनाने के लिए।
1: RM2 Radio Musti

0: 5:40 मिनट हुए हैं, चलिए अभी जानते हैं आज का हॉरोस्कोप।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
0: तो आज इस सितारे कौन सा मैसेज लेकर आए हैं, चलिए शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
0: आज आपके उत्साह और साहस में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने के लिए समय बिल्कुल परफेक्ट है। परिवार के किसी सदस्य से एक सुखद समाचार भी मिल सकता है। लकी कलर आज आपका है केसरी और नंबर आपका

0: है तीन।
1: टॉरस वृषभ राशि,
2: आज धैर्य और संयम बनाए रखना आपके हित में रहेगा। कार्यक्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में सोच विचार कर निर्णय लीजिए। लकी कलर का है गुलाबी और रन नंबर है 8।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
2: आज आपकी वाणी और बुद्धि दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। मित्रों या सहकर्मियों के साथ मिलकर किया गया हर काम सफलता दे सकता है। लकी कलर का है हरा और रन नंबर है 5।
1: कैंसर कर्क राशि,
2: घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा। पुरानी चिंताओं से राहत मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य और आराम का भी ध्यान रखें। लकी कलर का है सफेद और नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि,
2: आज आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। लकी कलर का है सुनहरा और नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
2: आज व्यवस्थित तरीके से काम करने पर अच्छा परिणाम मिलेंगे। किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर भी मिलेगा। लकी कलर का है हल्का नीला और नंबर है 6।
1: लिब्रा तुला राशि,
2: आज संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। किसी की बात ध्यान से सुनिए, उसमें आपके लिए उपयोगी सलाह छिपी हो सकती है। लकी कलर का है पर्पल और नंबर है 9।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
2: आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। अति विचार करने के बजाय निश्चित कदम उठाइए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। लकी कलर का है ब्राउन और नंबर है 4।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
2: आज सीखने और नई बातें जानने की इच्छा बढ़ेगी। छोटी यात्रा या किसी नए काम की योजना बन सकती है। लकी कलर का है ऑरेंज और नंबर है 7।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
2: आज मेहनत का उचित फल मिलने के योग है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लकी कलर का है ब्लैक और नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
2: आज नए विचार और रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी। किसी पुराने मित्र से संपर्क भी हो सकती है। शुभ रंग आपका है फिरोजी और नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
2: आज मन शांत रहेगा और आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर भी मिल सकता है, तो वो अवश्य करना। लकी कलर का है पर्पल और नंबर है 12।
3: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Yes, it's your RM2 Radio Musti. And aaj ek bahut hi pyara din hai, dosto. And उस दिन का नाम है शेयर हग डे। वैसे सोचिए आखिरी बार आपने किसी अपने को दिल से हग कब किया था? एक हग सिर्फ दो लोगों को पास नहीं लाता, कभी कभी ये बिना कुछ कहे ही कह देता है कि मैं हूँ ना। तो अगर आज आप अपने पेरेंट्स, दोस्त, लाइफ पार्टनर या बच्चों से मिल रहे हैं, एक वॉर्म सी झप्पी देना ना भूलें। और हाँ, अगर वो दूर है तो एक फ़ोन कॉल एक इमोशनल हग जैसा ही होता है। तो अपनों के साथ कनेक्ट कीजिएगा ज़रूर। और RM2 रेडियो मस्ती पर भी आप अपने मैसेजेस, डेडिकेशंस भेज सकते हैं 5499-1294 पर।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning. सुबह के 6 बजे है. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे आस्था नमस्कार.
6: नमस्कार. 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. कुछ अहम खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के बुलेटिन में. 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट की जांच के सिलसिले में मूवमेंट पैट्रियट मॉरिशियन के नेता अलान गानूनी से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कल पूछताछ की. उन्होंने कहा कि जिन मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी उनका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध नहीं था. सरकार SMEs को बढ़ावा देने के लिए लगभग 10 साल पुराने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. वहीं अगस्त से 25 माध्यमिक स्कूलों में ग्रेड 10 के छात्रों के लिए रिबाउंड प्रोग्राम शुरू होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक बनाना है. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की नई रिपोर्ट के अनुसार लड़कियां पढ़ाई में आगे हैं, लेकिन लीडरशिप वाले पदों पर उनकी भागीदारी अभी भी पुरुषों से कम है. आज से शावर मास का

0: शुभारंभ हो गया है। सनातन धर्म में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, जबकि आर्य समाज में वैदिक यज्ञ, स्वाध्याय और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में यूरोप के कई देशों में जंगल की आग का संकट जारी है। ग्रीस में आग बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। वहीं स्पेन में अब तक 43,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है। इसके साथ ये समाचार समाप्त हुआ और अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश के दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर बरसात होगी, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद पश्चिम में वर्षा होने की संभावना है और बादल भी छाए रहेंगे। और इसके बाद रात को पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराने की संभावना है, वर्षा काफ़ी तेज़ भी हो सकती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर, सूर्यास्त 5:51 पर होगा।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:60 मिनट हो गए हैं और खुल के हो रही है दिल की बातें. कनेक्टेड भी हो चुके हैं हमारे बहुत सारे लिसनर्स. गुड मॉर्निंग. आप सभी कितने एक्टिव हो. वाह, ऐसा ही होना चाहिए, जोश इन द मॉर्निंग. एंड आप है जयशन जी, अब्दुल सायरा बानो जी भी साथ दे रही है. बॉम्बू से देवदोस्त फैमिली अपना प्रेजेंस लगा रहे हैं. परवादी जी को भी बड़ा सा गुड मॉर्निंग. किशन जी भी साथ दे रहे हैं, मांग रहे हैं गाना अपनी फैमिली के लिए, तो आप लोगों के लिए गाना चिल्लाएंगे ज़रूर. एंड अगर आज आपके पास कोई बर्थडे डेडिकेशंस है वो भी भेज दीजिएगा, क्योंकि हम यहीं पर है आपके स्पेशल इंसान के स्पेशल डे को स्पेशल बनाने के लिए. इट्स योर RM2 रेडियो मस्ती और 7 बजे तक इट्स योर राइज एंड शाइन.
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world.
1: Radio Musti. Feel the Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: हर सुबह जिंदगी हमें दो तोहफे देती है, एक नया दिन और एक नया मौका। फैसला सिर्फ इतना है कि आज हम मुस्कुराहट चुनते हैं या फिर शिकायत। तो आपकी कौन सी चॉइस होगी, लाइफ कैसी होगी, ये आप पर डिपेंड करता है। सो डू मेक द राइट चॉइस विद योर RM2 रेडियो मस्ती।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world.
1: Radio Musti. Feel the Musti.

सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। गुरुवार 30 जुलाई की सुबह, ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट मामले में एफसीसी की जांच जारी। मूवमेंट पैट्रियोट मॉरिसियन के नेता अलन गानू से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। उनका दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट से उनका कोई संबंध नहीं। छोटे और मध्यम उद्योगों को नई रफ्तार देने की तैयारी। लगभग 10 साल पुराने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट में बड़े बदलाव की दिशा में सरकार का कदम। युवाओं को ड्रग्स के खतरे से बचाने की पहल। अगस्त से 25 कॉलेजों में ग्रेड 10 के छात्रों के लिए रिबॉन प्रोग्राम शुरू होगा। पढ़ाई में लड़कियां आगे लेकिन लीडरशिप वाले पदों पर अभी पीछे। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की नई रिपोर्ट में सामने आई है ये तस्वीर। आज से श्रावण मास का शुभारंभ। सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना तो आर्य समाज में वैदिक यज्ञ स्वाध्याय और सेवा का विशेष बल। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में यूरोप के कई देशों में जंगल की आग का कहर जारी। ग्रीस में 2 दमकल कर्मियों की मौत जबकि स्पेन में आग ने रिक्टर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया।

0: नमस्कार, इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट की जांच के सिलसिले में मूवमेंट पैट्रियट मॉरिशियन के नेता अलान गानू से मंगलवार को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अंडर वार्निंग पूछताछ की। पूछताछ के बाद उन्होंने कहा कि जिन दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी उनका कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं के सभी सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए हैं और आवश्यक स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे दोबारा भी एफसीसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए तैयार हैं। ये जांच वर्ष 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को दिए गए 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है। अलान गानू को सुनते हैं।
1: Ministère Foreign Affairs, pour qui moi je suis responsable à l'époque-là, ni ministère de Land Transport, puis montre preuve à l'appui, avec bonne explication qu'ils m'ont donné. Je ne pas confirme tout ce qu'ils m'ont dire. Mais moi, je suis content aujourd'hui, l'enquête il passe bien, je m'ont répondre toutes bonnes questions, et tout il a vite quoi s'en trouver. Et maintenant, FCC, pour gagner le droit, confirmer, à le vérifier, tout ce qu'ils m'ont dire. Et moi, je dis à d'autres, si vous êtes bien à moi, aussi, je pourrais venir, puis aucun problème, absolument aucun problème.
0: मॉरिशस में छोटे और मध्यम उद्योगों यानी SMEs को बढ़ावा देने के लिए सरकार नया कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। लगभग 10 साल पुराना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट अब बदला जाएगा ताकि उद्योगों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों से राहत मिल सके। मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में उद्योग मंत्री आदिल अमीमिया ने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कानून में बदलाव जरूरी हो गया है। उन्होंने नवंबर 2024 से SME मॉरिशस द्वारा उद्योगों के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों की भी जानकारी दी। सुनिए ये रिपोर्ट। SME मॉरिशस छोटे और मध्यम उद्योगों को लगातार सहायता दे रहा है। नवंबर 2024 से अब तक 1271 SMEs को 117 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। इन उद्योगों ने भी लगभग 90 मिलियन रुपए का निवेश किया, 7.7 बिलियन रुपए का कारोबार किया और 6594 लोगों को रोजगार दिया। वित्तीय सहायता के अलावा 17836 उद्योगों और कारोबार शुरू करने के इच्छुक लोगों को SME मॉरिशस ने मार्गदर्शन और सलाह भी दी। वहीं 756 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई और 3000 से अधिक भावी उद्योगों को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। पिछले 18 महीनों में आयोजित SME मेलों में 152 प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया और 40 से अधिक लोगों ने इनका दौरा किया। सरकार अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू करने की योजना बना रही है, जहां SMEs के लिए उपलब्ध सभी सहायता, ग्रांट, टैक्स छूट और वित्तीय योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। अब आज शिक्षा सेक्टर के करते हैं। युवाओं को ड्रग्स के खतरे से बचाने के लिए सरकार अगले महीने से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। अगस्त से देश के 25 कॉलेजों में ग्रेड 10 के छात्रों के लिए रिबान प्रोग्राम की शुरुआत पायलट परियोजना के रूप में की जाएगी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य किशोरों में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और नशे से दूर रहने के लिए जागरूक बनाना है। ये कार्यक्रम पहले से चल रहे गेट कनेक्टेड अभियान का विस्तार है, जो छोटे छात्रों के लिए शुरू किया गया था। रिबान प्रोग्राम की सिफारिश वर्ष 2018 में ड्रग्स की तस्करी पर गठित जांच आयोग ने की थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे यूरोप के कई देशों में पहले से लागू किया जा चुका है। इस बारे में अधिक जानकारी हमें दे रहे हैं शिक्षा मंत्रालय के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस डॉक्टर वेदियन मुनसामी, उन्हें सुनते हैं।
2: Le programme Rebound, c'est ce qu'on appelle Drug Prevention Education Program, qui servit pour aider les enfants à développer des compétences et des aptitudes pour qu'ils soient capables de résister à la tentation de la drogue. À la place qu'ils nous peut donner une intervention directe, nous peut faire une interactive session pour qu'ils soient capables de gagner des compétences de critical thinking, decision making, nous donner une emotional resilience, nous faire comprendre que la situation situation est beaucoup plus ambiguë qui le monde road point li qui est capable d'un man moment que une décision difficile à prendre, comment capable résister man peer pressure par exemple. Donc tout ça il forme partie du rebound projet et a développé depuis une université allemande qui s'appelle Finder Academy. Et pour

0: être enseignée en tant qu'IN programme individuel. Bon, là, elle peut piloter au niveau de 25 écoles, mais dans le futur, nous verrons étendre demande les autres écoles maximum.
1: सनातन धर्म में आज से पवित्र श्रावण मास का आरंभ हो गया है। भगवान शिव को समर्पित ये महीना श्रद्धा भक्ति संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पूरे मास में श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं तथा ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में की गई पूजा दान और सत्कर्म का विशेष फल मिलता है। मॉरिशस में भी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य अजय कुमार मिश्रा को सुनते हैं।
2: श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित महीना है। श्रावण के महीने में भगवान की दिव्य कथाओं से अपने जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के पापों से मुक्त होने का महीना है। श्रावण का महीना झमझमाते हुए बारिश और कहीं रिमझिम बारिश का आनंद उठाने का महीना है। श्रावण का महीना भगवान शिव के भक्ति में लीन होने का महीना है। श्रावण के महीना में भगवान शिव को भक्त अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनकी एक कृपा की छटा प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेक प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं। भक्तगण इसमें भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक का विधान है। इसी क्रम में मॉरिशस के इस प्यारे भूमंडल में हम सभी भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, यहाँ रहने वाले निवासियों के कल्याण के लिए हर शिवालय में अपने अपने मंदिरों के नियम अनुसार शाम के समय या दिन के समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी वक्त शिव अभिषेक का विधान किया गया है। कहते भी हैं, माँ की गोद में और भगवान के मंदिर में दो पल भी बिताया तो बहुत है। इसलिए श्रावण का महीना हम सभी को सुख देने वाला है। हमारे परम प्रिय, हमारी आत्मा, हमारे प्राण में बसे हुए भगवान शिव, मॉरिशस के कण कण जनवासी देशवासियों के हृदय में बसे शिव, मॉरिशस के कण कण में विराजमान भगवान शिव हम सभी का कल्याण करें, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूँ।
1: आज से पवित्र श्रावण मास का आरंभ हो गया है तो आर्य समाज के लिए ये महीना केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि वैदिक जीवन शैली, आत्मानुशासन, यज्ञ, स्वाध्याय और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। इस पूरे मास में आर्य समाज के विभिन्न केंद्रों में वैदिक यज्ञ, वेद मंत्रों का पाठ, सत्संग और सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मॉरिशस में भी श्रद्धालु श्रावण मास को वैदिक परंपरा के अनुरूप मनाते हुए ईश्वर की उपासना, सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। आर्य सभा मॉरिशस की प्रधान शांति महाबीर को सुनते हैं।
3: श्रावणी का पवित्र त्यौहार आज से आरंभ हो रहा है। यह पर्व भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक चेतना का आधार है। यह त्यौहार वेदों के अध्ययन, ऋषि तर्पण और स्वाध्याय का त्यौहार है। शुभ संकल्पों को धारण करके आत्मशुद्धि और जीवन को उन्नत बनाने का यह पर्व है। श्रावण मास में हम ऋषियों के विचारों को आत्मसात करने का भरपूर प्रयत्न करते हैं, ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपने दुर्गुणों से मुक्त होने का यत्न करते हैं और अपने जीवन का उत्कर्ष करने की हम चेष्टा करते हैं। आर्य सभा मॉरिशस के सभी शाखा समाजों में महायज्ञों का अनुष्ठान होता है, वेदों का पठन पाठन होता है, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती है। इस बार हमारा सौभाग्य है कि भारत से कर्मकांड के विद्वान आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी, दर्शन आचार्य आशीष आर्य जी और संगीताचार्य विवेक पथिक जी का आगमन हुआ है। इनके व्याख्यानों और भजनों से हम लाभ उठाते हुए सुमार्ग पर अग्रसर होने का प्रयत्न करेंगे। आज सुबह 9 बजे आर्य भवन में बहुकुंडीय महायज्ञ से श्रावणी महोत्सव का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। सभी भाई बहन आस्था और उत्साह के साथ इसमें भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं।
1: मॉरिशस में लड़कियां पढ़ाई में लड़कों से आगे निकल रही हैं, लेकिन जब बात बड़े पदों और लीडरशिप की आती है तो उनकी संख्या अभी भी कम है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की नई रिपोर्ट में यही

0: तस्वीर सामने आई है। साल 2025 में एचएससी परीक्षा में 51.1% लड़कियां सफल रही, जबकि लड़कों का जो सफलता उसका प्रतिशत है 76.2% रहा। उच्च शिक्षा में भी लड़कियों की भागीदारी लड़कों से ज़्यादा है, लेकिन नौकरी और कारोबार की दुनिया में ये बढ़त दिखाई नहीं देती। केवल 11% महिलाएं ही किसी कंपनी का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा 24% है। समाज शास्त्री निकोला गागुटू का कहना है कि इसकी वजह सिर्फ पढ़ाई का चुनाव नहीं है, बल्कि नौकरी स्थल पर आने वाली कई चुनौतियां भी हैं। उनके अनुसार महिलाओं के सामने आज भी ऐसी अदृश्य रुकावटें हैं जो उन्हें ऊंचे पदों तक पहुँचाने से रोकती है। निकोला गागुटू को सुनते हैं।
1: Même dans les filières qui étaient autrefois, allons dire, dominées ou réservées pour les garçons, pour l'engineering, etc., maintenant on voit des filles entrer partout. Pourquoi? Parce que leur performance au niveau académique est vraiment supérieure. Ça, il n'y a pas photo, c'est établi. Maintenant, on voit beaucoup de filles entrer sur le marché du travail, ça aussi, c'est un fait. Mais quand on voit le middle management ou encore le top management et dans le boardroom, on voit qu'il y a une surreprésentation des garçons au détriment des filles, même si, qualification-wise, on voit que les filles ont plus de qualifications. Donc, c'est ce qu'on appelle le glass ceiling en sociologie, qui empêche les filles de monter, pour, entre autres le fait que c'est dominé par les hommes qui préfèrent travailler avec les hommes dans le boardroom, croyant que ce sera plus facile pour eux de gérer. Pas une question de compétences, des qualifications, mais c'est plus une société patriarcale qui fait que repliquer le même modèle.
0: सरकारी सेक्टर में कुछ सकारात्मक बदलाव भी हैं। इस दिशा में पिछले एक साल में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत महिलाओं की हिस्सेदारी 34.9% से बढ़कर 37.2% हो गई। दुनिया के कई देशों में कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। कुछ देशों ने 30% का न्यूनतम लक्ष्य तय किया है, जबकि कुछ कंपनियों ने महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मॉरिशस सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर के अनुसार फिलहाल देश में 29,500 कुत्तों का पंजीकरण और माइक्रोचिप लगाया जा चुका है। सोशल मीडिया पर कुत्तों की कथित चोरी के वीडियो सामने आने के बावजूद एनसो को अब तक ऐसी कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। हालांकि संस्था ने ऐसे मामलों पर चिंता जताई है जिनमें कुछ लोग खोए हुए कुत्तों को लौटाने के बदले मालिक से पैसे मांगते हैं। एमसो ने एक बार फिर कुत्तों का पंजीकरण और माइक्रोचिप अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है, ताकि पुलिस असली मालिक की पहचान आसानी से कर सके। साथ ही रोजेल प्लानमानियो और देश के कई पुलिस स्टेशनों में कुत्तों के निःशुल्क पंजीकरण और नसबंदी अभियान जारी है। अभियान का पूरा कार्यक्रम एमसो के फेसबुक पेज पर उपलब्ध है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने अपना पहला मेडल पक्का कर लिया है। ये उपलब्धि मुक्केबाज मैं वैक्लेयर ने हासिल की। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने गाना के प्रिशस अकाई नीति को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ मैं वैक्लेयर ने कम से कम ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। ये रोमांचक मुकाबला आपने कल MBC 11 पर लाइव देखा। अब सभी की नजरें सेमीफाइनल पर होगी, जहाँ मैं वैक्लेयर फाइनल में जगह बनाने के लिए उतरेंगी। स्थानीय सरकार ने खबरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर की बात करते हैं। MCCI अन्य साझेदारों के साथ मिलकर AI पर एक अध्ययन चला रहा है। इसकी लॉन्चिंग कल ICT मंत्री की मौजूदगी में की गई।
1: मैम dans les filières qui étaient autrefois allons dire
0: Oumed Virgule
2: मॉरिशस की कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का स्तर जानने और उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए एक सर्वे शुरू किया गया है। मॉरिशस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री MCCI की ये पहल देश की राष्ट्रीय AI रणनीति और बजट में घोषित उपायों के तहत की जा रही हैं। MCCI के अध्यक्ष पैट्रिस मारी कहते हैं, हर एक उद्योग को एक जरूरत होती है, उत्पादकता, ऑटोमेशन या कारगरता की। हम जानना चाहते हैं कि डिजिटल बदलाव के सफर में वे कहां स्थित हैं। इससे हमें बाधाओं को जानने में मदद मिलेगी और हम कहां मदद दे सकते हैं, कहां सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, संचालन और सुरक्षा में हम किस तरह योगदान दे सकते हैं। इस सर्वे की शुरुआत के अवसर पर मौजूद ICT मंत्री अविनाश रामतोहल ने इस पहल का स्वागत किया। वे कहते हैं, संचालन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम

0: इसका स्तर नहीं जान सकती। ये एक पहला कदम है एआई को अपनाने में समझने के लिए। जितना उद्योग एआई का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्पादकता बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। कई नीतियां तैयार की गई हैं। अगर उद्योग इसे और बढ़ाना चाहते हैं या सुधार चाहते हैं तब हम इस पर विचार करेंगे। उत्तम और कैपफॉर मॉरिशस के सहयोग से किए जा रहे इस अध्ययन में ये भी देखा जाएगा कि स्थानीय कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से रूप सबसे उपयुक्त हैं। इस सर्वे में लगभग 450 कंपनियां शामिल होंगी।
1: विदेश की खबरों में यूरोप के कई देशों में जंगल की आग का संकट बना हुआ है। ग्रीस में आग बुझाने के अभियान के दौरान 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई जबकि तेज हवाओं के कारण कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। तुर्की में भी जंगल की आग के चलते एक प्रमुख राजमार्ग बंद करना पड़ा और अस्पताल के एक हिस्से को खाली कराया गया। वहीं स्पेन और फ्रांस में इस गर्मी की चौथी हीट वेव शुरू हो चुकी है। स्पेन के आविला प्रांत में लगी आग में अब तक 43,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जल गया है और इसे देश के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग माना जा रहा है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के साथ साथ उसके दोबारा भड़कने की आशंका को देखते हुए लगातार निगरानी कर रहे हैं। और अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर रहकर बरसात होगी। अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद देश के पश्चिम में मौसम कुछ खराब हो सकता है और बारिश की संभावना है। देर रात को पूर्व और उत्तर सेंट्रल प्लाटो पर भी मौसम ज़्यादा खराब हो सकता है और बारिश तेज़ होने की संभावना है। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर, सूर्यास्त 5:51 पर होगा।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ती हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। गांधी रोड त्वाबुतिक यूनियन वेल में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री संजीव धुकबंजन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के मकान यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। मिशन क्रॉस रोड बोनाकोई में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड की कविता मूरत की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गोबिन, लोग उन्हें अमृता के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के मकान मोनाको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोनाको ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। न्यू रोड रोशनवा में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र कुमार इंदर नारायण की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें माइकल के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज उठाई जाएगी। समय और स्थान के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। मामूली प्लेनमानियों में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड के सच्चिदानंद कालीचंद की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राकेश के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद दो बजे उनके पिता दयानंद कालीचंद के मकान प्रेमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। तेगाली रोड ऑंस जोंसे में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड

0: की लक्ष्मी चुलन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नामनन को उनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उन्हीं के मकान रोंसे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। अली तमारें बॉम्बू में 76 साल की 76 years old की गीता सुखराम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राधा के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उन्हीं के मकान बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रामधनी रोड प्लंदी पपाई में 66 साल की 66 years old की कमलावती सीधी हल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें उमा के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके भाई विद्यानंद सीधी हल के मकान प्लंदी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाहे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन Today at 11 AM. Flamboyant Street, cité CHA, Rivière-du-Rhin-Pomé, Arsate Saleh, qui, 68 years old, qui, Miss Rambha Ganaoui, qui mrti ho gai hai, Rashna, से लोग उन्हें ज़्यादा जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हें के मकान रिवाजुआपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। टेम्पल रोड ला लुसी रोय बेले रिवियर सेश में 65 साल के 65 years old के श्री गोविंदा मुतुसामी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें पॉमिस के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान बेले रिवियर सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड प्लंदी रोश में 82 साल के 82 years old के श्री रामदत्त सुमाका की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके बेटे दोमान सुमाका के मकान प्लंदी रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। कौरोश ओयतामी 83 साल की 83 years old की अचामा तुमिया की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कोना येरुकुनांदू। लोग उन्हें देवी उदने के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हें के मकान कौरोश ओयता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। सिंगारों स्ट्रीट व्यू ग्रांपो में 32 साल की 32 years old की श्रीमती साक्षा गुंडोरी चितामन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें कीर्ति के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पिता राजेश गुंडोरी के मकान व्यू ग्रांपो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए व्यू ग्रांपो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे at 11 AM. Rivaillon Road, Crève-Cœur-Mé, 60 साल के 60 years old के श्री सुनील गोविंद की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें स्वामी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान रिवायों रोड क्रेव-क्यूर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रेव-क्यूर की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Radio Musti.
2: Problème léger, les baguettes léger, les capaves moi, les capaves toi, les capaves nous tous. Protège tous les caisses aujourd'hui, pour qu'ils disent mais tu pas à risque un bon problème de caisse. Allô, enjoy your life avec Enke Life, parce qu'il s'abondit les Enke Life là, et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te bonne activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bondit les Enke Life, mais là, te prends soin tous les caisses. Enke Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
1: RM2
3: Radio Musty.

हर दिन को ना इस तरह जिए जैसे कि ये खाली किताब का पहला पन्ना हो और हर अच्छा काम उस पर लिखा हुआ सबसे खूबसूरत शब्द। तो इसी कोट के साथ मैं नीलमणि इजाजत लेती हूँ आपसे, मिलेंगे कल फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड हैव अ ग्रेट डे विद योर आरएमजी रेडियो मस्ती।

0: दर्द है चुभन है तुमसे मिलने के बाद दिलबर तो ये कैसा मिलन हुआ
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: अरे भाई मिलन के बाद तो खुशी होनी चाहिए. आज का नजारा आई टेल यू. आपको तो पता है भी फुल मून था और अभी क्या है कि हम देख रहे थे कि पीछे सनराइज हो रहा है, सामने से मून सेट हो रहा है. फिर मैंने सोचा बीच में मूड सेटर आ गया है. हाँ जी बिल्कुल, रेडियो मस्ती पर आ गई है विनीता आपका साथ देने के लिए. योर मॉर्निंग बीट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. कैसे हो भाई? जुलाई महीने को तो अभी से ही बाय बाय बोल दो भाई, क्योंकि ये तो गया. आप सोचो एक नया महीना आ रहा है और उसके लिए आपने शायद तैयारी कर ली होगी, नहीं की होगी, क्योंकि आप हमेशा कहते हो अरे कल करेंगे कल करेंगे. कल करते करते देखो

0: सात महीने यूं ही निकल गए, कुछ नहीं किया ना। अभी सोच लो जो करना है ठान लो, अगस्त के महीने में जो भी करना है कर लेना। अभी चलो अगस्त महीने तो बच्चों का यूनिवर्सिटी भी शुरू हो जाता है ना। ओह माय गॉड, तो चलो बच्चों आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, और बाकी जिनकी छुट्टियाँ चल रही हैं मस्त रहो, खुश रहो। और अभी फ्री फ्लो में भी गाड़ियाँ चल रही हैं आराम से मॉर्निंग में, थोड़ी सी सर्दी और सूरज का उगना, वाह वाह वाह सनराइज, कितना मज़ा आ रहा है। तो ऐसे ही जिंदगी में हमेशा खुश रहिएगा, और बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुशी जो है दुगनी हो जाए, डू लेट मी नो कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। 5491294 पर
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

0: गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:16 हुए। आई नो आपको अगर पंजाबी नहीं आती, लेकिन फिर भी आप इस गाने को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अभी चल रहा था विक्की कौशल का वही खतरनाक डांस मूव्स।
1: कमजी वाला मशीना एक फॉर्मलेन नुगेयों को बुकु प्लीज।
2: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
0: स्टेप्स तो याद कर लिए, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं अगर एक प्रोमो चला रही हूँ और अगर आप सुनकर मुझे 3 टैगलाइंस याद करें और मुझे कॉल करके बताएं कि वो 3 टैगलाइंस कौन सी हैं जिसका मैं अनुवाद करती हूँ, जी हाँ, उसको ट्रांसलेट

0: ट्रीट करती हूं उसका मतलब है और आसान और तैयारी और स्वादिष्ट। तो चलिए फार्मलैंड के साथ हम खेल रहे हैं और यहां पर आपको मिल सकता है एक गुडी बैग। और गुडी बैग में क्या क्या है, इसमें है फार्मलैंड फैमिली सीरियल, फार्मलैंड मिल्क पाउडर 1 kg, फार्मलैंड मिल्क पाउडर 500 grams, 1 एक्सक्लूसिव मग और एक टोट बैग। तो ये आपको जीतना है। नहीं, स्माइल कर रहे हो, बोल रहे हो हाँ, लेकिन टैगलाइन कौन से हैं उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा 4028035 पर पर, और मुझे बताना होगा अने कि वो तीन टैगलाइंस कौन से हैं। आर यू रेडी? चलिए सुनते हैं प्रोमो।
1: L'habitude qui jamais pousse en zé, au tea time avec Farmland.
2: Ah ben oui, madame Sheila, où toujours bien smart.
1: Et comme au son du travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Farmland.
2: Mmh, où fais-moi faire?
1: Astérix Farmland Hot Chocolate, la vie encore blisse ta maman. Encore.

0: choice. Morning Beat.
1: James. RM2, Radio Musty, in the mix.
2: तो प्रोमो आपने सुन लिया, फोन की घंटी बज रही है, बात करती हूँ, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, चलिए इसी बात पे आपका मुंह मीठा करती हूँ। मॉर्निंग मॉर्निंग में अफगान जलेबी चलेगी।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: A good beat for your morning show. RM2 Radio.

0: बाप रे बाप, इतने सारे कॉल्स। और हमने आपको ये प्रोमो पहले भी सुनाया था, तो अभी लोगों को आदत हो गई है। 728, चलिए जल्दी से मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि इनके पास क्या जवाब है, क्या इनको भी याद है कि नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
0: जी, पहले आप अपना नाम बताएंगी।
1: जयरानी शांति।
0: जयरानी जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं भूबासन से बोल रही हूँ।
0: भूबासन से, ओके। और आपके पास वो जो प्रोमो है आपने सुना, तो जवाब क्या है आपके पास?
1: Encore plus tamam, encore plus préparation, encore plus simple।
0: हाँ, और एक चीज खा गई।
1: Encore plus tamam।
0: हाँ,
1: एक और। Encore plus simple।
0: हाँ हाँ,
1: हाँ
0: वही भूल गई। शुरू शुरू में तो सब बोलते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं पता नहीं क्यों डर जाते हैं। भाई मैं छेड़ने थोड़ी ना हूँ, मैं इंसानों को थोड़ी ना खाती हूँ। चलो, बहुत बहुत थैंक यू, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है हमें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड आपको मैं बता दूं जयरानी जी कि आपको मिल रहा है गुडी बैग, जिसमें आपको मिल रहा है फार्मलिन फैमिली सीरियल, फार्मलिन मिल्क पाउडर, वन एक्सक्लूसिव मग एंड टोट बैग। इसके लिए थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि इनके पास अभी कुछ नए रेंज के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि फार्मलिन फैमिली सीरियल और फार्मलिन का जो हॉट चॉकलेट है, लोगों को काफ़ी पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, और इधर सबको फार्मलिन का टेस्ट पसंद है। वाह क्या बात है, आपको मिल रहा है गुडी बैग, जो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा आकर एट MBC अपने ID कार्ड के साथ। याद रखिएगा, सुबह 9:30 से सुपर के 3 बजे के बीच में ID के साथ आप कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग।
1: थैंक यू वेजिटा।
0: थैंक यू, बाय
1: बाय।
2: मॉर्निंग बीट RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

और जिनके जीतने और डरने का नहीं, अभी हम एक और वाउचर लेकर आए हैं लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से, जिनका बर्थडे, उनका नाम और उनका फोन नंबर जरूर भेजे 549-1294।

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो मस्ती पर। और चलिए इसी के साथ हमारी आज की जो बर्थडे गर्ल है उनसे मिलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार माया जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक हूँ।
2: अच्छा माया जी, क्या बनाया आज घर पे, ब्रेकफास्ट पे क्या खाने आए हम आपके यहाँ?
3: मैं वेजिटेरियन हूँ, कोहरा का सब्जी रोटी।
2: नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस ये बोला कि आप क्या बना रहे हो, हम आपके साथ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप क्या बना रहे हो।

0: from Radio Masti.
1: तो रेडियो बस्ती टीम की तरफ से माया जी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हैं. वैसे आप काम करती हैं, घर पे रहती हैं, क्या करती हैं?
2: दुकान है मेरी.
1: अरे वाह, तो अभी तो आप दुकान पे ही होंगी.
2: थोड़ा खाना तैयार हो रहे हैं अभी.
1: देखा, मैंने वही तो पूछा कि आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो. वैसे आज का दिन क्या प्लान किया आपने, क्या करना है आज? घर पे ही रहना है?
2: बच्चे लोग प्लान किया है.
1: अच्छा, बच्चे लोगों ने प्लान किया. ठीक है, तो बच्चे लोगों को बोल देना हमारी रेडियो मस्ती की पूरी टीम आ रही है लेकिन रेडियो के जरिए आएंगे. तो आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे माया जी. और लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से आपको मिल रहा है एक वाउचर जो आपको कलेक्ट करना आना पड़ेगा, या तो फिर आज या तो फिर आप कलेक्ट कर पाओगे इसको कल, लेकिन आपके आईडी कार्ड के साथ. एंड हमारी जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो आपको फोन करके सारी डिटेल्स दे देंगी. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सारी गुड विशेस आपके लिए. थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी बर्थडे.
2: थैंक यू आपको भी.
3: रेडियो मस्ती.
4: Allez, il a flash sales pour des bons coups de métrique. Depuis 17 jusqu'à 31 juillet, Vin profite d'un méga promo, l'ON grand sélection produit pour ou la case. Jusqu'à 50% discount, l'eau sanitaire, robinetterie, lavabo et collage, prix là, flash net, promo là, extra. Métrique, une enseigne du groupe KRMG.
5: Dis maman, pourquoi tu

0: झूम झूम के और घूम घूम के ही जाना है और हमें मिलना है किसके साथ? अरविंद के साथ।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज,
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: स्पोर्ट्स वर्ल्ड से लेटेस्ट खबरें लेकर आ गए हमारे दोस्त अरविंद। जी हाँ, चलिए बात करते हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। अब मैं सोच रही थी ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड। चलो मॉर्निंग में अच्छी खबर दे दो, लेट्स हैव सम गुड न्यूज। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, और इस गुड मॉर्निंग को गुड न्यूज के साथ शुरू करेंगे। फाइनली द कैट इज इन द बैग MBCK स्पोर्ट्स 11 पर, और यहां पर RM2 पर आप लोगों ने लाइव देखा और सुना, मैवेक्लेयर मॉरिशस के लिए पहला मेडल जीत पाया। रंग क्या

0: होगा ये बाद में पता चलेगा। सो मैवे क्लेयर ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में हमारे लिए मेडल लेकर आएगा। मैवे क्लेयर कल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ, मतलब मेडल पक्का। अब रंग क्या होगा, ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड, ये आगे देखेंगे। फिलहाल मेडल टेबल में मॉरिशस का नाम होगा जरूर। मैवे क्लेयर ने क्वार्टर फाइनल में कल गाना के प्रिशियस अकाय नेटी को हराया। आज सेमीफाइनल है। राशेल क्लोपफाइनस्टाइन 800 मीटर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई। डॉक्टर बेर्नार्ड बाटिस भी शॉर्ट पुट के फाइनल में जा पाया। पैरा एथलेटिक्स में नोएमी अल्फोंस फिर से फाइनल में होगी। कल रेस के दौरान अल्फोंस के अलावा ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि कनाडा के एथलीट के कारण रेस पूरा नहीं कर पाए। दोनों ने अपील की थी और अब रेस फिर से लगेगी, मतलब नोएमी के लिए मेडल जीतने का दोबारा चांस। मेडल टेबल में ऑस्ट्रेलिया के पास हैं अभी 47 गोल्ड मेडल टोटल 103। कनाडा 14, इंग्लैंड 12, 12 स्कॉटलैंड 9, टीम इंडिया के पास 3 गोल्ड मेडल हैं टोटल 15। भारतीय टीम के लिए तीसरा गोल्ड मेडल पैरा एथलेटिक्स में दिलीप महादू गवीत ने जीता। यूईएफए चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के रिटर्न लेग के मैच कल खेले गए। इनमें कैरात और ओमोनिया के बीच मैच ड्रो गया 1-1। पेनाल्टी पर कैरात की जीत, ज़ालगिरिस 1-0। लेच पोजडन 1 AGF 4, पेनाल्टी पर जाकर AGF की टीम क्वालिफाई हुई। शेवा 2 विकिंगू 0, 3-2 से शेवा क्वालिफाई। क्रायोवा 2 लेव्स्की 2, लेव्स्की क्वालिफाई 3-2 से। गोनिक 1 फेनेरबाचे 1, 2-1 से फेनेरबाचे क्वालिफाई। रेड स्टार 5 लारने 0, स्लोवान 1 इबारिया 1, 3-2 से स्लोवान की टीम क्वालिफाई हुई। कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफिकेशन में लुगानो रैपिड वियना की जीत और सिडनी सुपर कप में टोटनहम हॉटस्पर ने सिडनी टीम के खिलाफ मैच ड्रॉ किया 1-1। पेनाल्टी पर टोटनहम हॉटस्पर की जीत हुई। क्लब फ्रेंडीज में आज सुबह लिवरपूल ने रेक्साम को 1-0 से हराया। सेकंड हाफ में एंगुमोहा का गोल। रेक्साम की टीम 3 मैचों में ये पहली हार है उसकी। उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी हराया था फ्रेंडीज में। लिवरपूल की दूसरी जीत है संडरलैंड के बाद। सेडोरिजो 1 डॉर्टमुंड 0, एथलेटिक और ग्रेटाफे के बीच मैच सस्पेंड कर दिया गया। ब्रिस्टल सिटी 4 न्यूकासल यूनाइटेड 1, डोनकास्टर 0 वुल्व्स 2, बर्नले 2 स्पैनियल 2, वाटफोर्ड 0 फ्लोरेंटिना 1, इप्स्विच 1 और सासुना 2। अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया, पर फीफा डिसिप्लिनरी कमिटी ने उसके खिलाफ तहकीकात शुरू की है। एक तो फाइनल मैच पूरा होने पर हाथापाई यानी वायलेंट सीन्स देखे गए थे, जहां अर्जेंटीना के खिलाड़ी लड़ने लगे थे। इसके अलावा इंग्लैंड के को हराने के बाद फॉकलैंड आइलैंड्स मुद्दे पर बन दिखाने के लिए अर्जेंटीना पर आरोप है, तहकीकात है। पेरिस सेंट जर्मेन के ब्रैडली बारकोला के लिए लिवरपूल पहला बिड तैयार कर रहा है। पेरिस सेंट जर्मेन ने उस पर 145 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का दाम रखा है, पर लिवरपूल इससे कम में उसे साइन करना चाहता है। इधर फीफा के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान को आगे ले जाने के लिए प्रेसिडेंट इन्फांटिनो हर फीफा मेंबर देशों को 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार हैं। यूईएफए इस प्लान का विरोध कर रहा है। सितंबर 19 तक हर फुटबॉल फेडरेशन को अपना फैसला सुनाना होगा। सो दैट्स इट, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। सो वी हैड इट लाइव ऑन रेडियो मस्ती कल, जहां पर मैवे क्लेयर ने मॉरिशस के लिए पहला मेडल जीता। रंग बदल सकता है, वाई नॉट गो फॉर गोल्ड। और आज हमारे काफी एथलीट क्वालिफाई होने के लिए फाइनल में होंगे। गो फॉर गोल्ड, एले मोरिस, लेट्स होप फॉर मोर मेडल्स। टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच। यस, हम भी अपने फिंगर्स को क्रॉस कर रहे हैं फॉर द गोल्ड।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Jumbo, Quality Déco, fin lance extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds par 100 roupies. Des pieds par 4 pieds portiers, 295 roupies. Granit, 8 pieds par des pieds, 2000 roupies. Lavoie portier, 3500 roupies. SPC flooring, lordoise, luminaire, sanitaire, robinetterie. Et plaisir, les autres produits à bas de prix incroyable, mais vrai. Promotion là, 10 pour des semaines seulement. Pour plus de renseignements, check nos pages Facebook, Quality Déco.

0: ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग दिसंबर में पहुंच गए क्या? ये तो क्रिसमस में इतने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, अब पूछो मत इतने सारे गिफ्ट्स कौन देता है भाई। हम देते हैं रेडियो मस्ती पे देते हैं और मस्त होकर देते हैं क्योंकि हमारे पास गेम्स बहुत सारे हैं ना। तो चलिए अभी जो भी जीतेगा उसको क्या मिलेगा, उसको मिल सकता है एक आपको इंडियन फूड पसंद है ओके, तो सैफरन ग्रिल की तरफ से आपको 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिल सकता है या आपका हो सकता है अगर आपने हमारे सवाल का जवाब दिया तो ओके। तो हम खेल रहे हैं फॉर आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4। चलिए तो यहाँ आपको मिल सकता है ये वाउचर अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे और आपको बताना होगा, जी हाँ आपको बताना होगा कि क्रिकेट के टर्म में LBW का क्या मतलब होता है, व्हाट डज LBW स्टैंड फॉर इन क्रिकेट। आपको मुझे सही जवाब देना है ऑन 5491294, याद रखिए पूरे नाम और पते के साथ। आई एम वेटिंग फॉर यू।
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
2: Radio

0: आ गए जी आ गए लेकर अपने विनर आ गए। और इस गाने को सुनने के बाद तो मॉर्निंग में सबका मूड धुरंधर जैसा हो जाता है ना। चलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, मैं हूँ वेदिता, आपका साथ दे रही हूँ आपके अपने मॉर्निंग बीट में। गुड मॉर्निंग,
1: a good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: एंड यस, इंडियन फूड का सवाल है बाबा, और यहाँ पर किसको पसंद नहीं है खाना इंडियन फूड। हाय हाय, सैफरन गिल की तरफ से आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। कैसे नहीं मिल सकता है, व्हाट डू यू मीन मिल सकता है, मिल गया, लेकिन किसको मिला ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गेम आपके लिए हम लेकर आए थे आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 से की तरफ से। एंड आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन, और ये आ गए हैं उसी एक्साइटमेंट के साथ अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए लेकर, इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of August एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू, जहां पर 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। कॉन्टिनेंटल चीतास, वाह, AMG Panthers, Campus Abroad Lions, APP Leopards, One Health Jaguars और Thomas Cook Tigers सारे के सारे होंगे वहाँ पर। और चलिए, अगर आपको विजिट करना है एट ग्राउंड तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं। मैचेस विल बी प्लेड ऑन सैटरडे आफ्टरनून एंड संडे मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। तो चलिए, ये जो वाउचर है सैफरन गिल का ये तो पोस्ट कर देंगे, लेकिन किसको पोस्ट करेंगे? ये है स्मिता दुर्गा फ्रॉम गुड लेंस, कंग्रेचुलेशंस आपको मिल रहा है सैफरन गिल की तरफ से 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। एंड वी से थैंक यू। आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा हो रहा है सीजन 4, भूलिएगा नहीं।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती, टेक मैग पावर्ड बाय 365, बियन प्लस एनकोर।
3: Did you know that Mauritius is finally joining Google Street View? Until now, our island has been one of the few major tourist destinations without comprehensive Street View coverage. But that's about to change. Between 19 July and 21 August, specially equipped vehicles fitted with 360-degree high-definition cameras will travel across Mauritius, capturing roads, landmarks, and popular attractions. Once the images are processed, they'll be integrated into Google Maps and Google Earth, allowing anyone in the world to explore our island virtually. The technology won't just benefit tourists, it will also make navigation easier for residents, help businesses become more visible online, and even support urban planning and emergency services. Concerned about privacy? Google automatically blurs faces and vehicle license plates before any images are published, protecting the identity of people captured by the cameras. So if you spot a car with a large camera mounted on its roof over the coming weeks, don't be surprised, it could be helping put Mauritius on the digital map for millions of people around the world.
2: Tech Mag was powered by 365. Bien plus encore.
4: Join the RM2 team this Saturday, 1st of August at the Blue Bay Beach Arena for the Family Sports and Leisure Day organized by the Tourism Employees Welfare Fund in collaboration with the Mauritius Recreation Council. RM2 will be live from 10 a.m. to noon, so don't miss out.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: And yes, एक और गेम के साथ आ गए हैं। Now we're playing with Bargillo. जी हाँ, आपको मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और आपने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। अभी मेरा एक सवाल और है। What does Bargillo specialize in? Is it A, watches? Is it B, shoes? Yeah, is it C, perfumes and fragrance products? Aapke jawab on 549 and 1294. Puri naam aur pate ke saath bhejiyega. Thank you so much.

0: तो जी यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था और आपसे पूछा था कि what does Barjalu specialize in? Is it A, watches, B, shoes, या C, perfumes and fragrance? तो सही जवाब है C, perfumes and fragrance products. और यहाँ पर सही जवाब देकर पूनम रोमू बनी है हमारे विनर. Congratulations, आप रहते हैं पॉम्प्लेमूसेस. और आपको बता दें कि आपको मिल रहा है ये voucher. जी हाँ, आपको मिल रहा है 500 रुपीज का गिफ्ट voucher. एंड द गेम वॉज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाई Barjalu, योर फ्रेग्रेंस स्पेशलिस्ट. Barjalu इज एट विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल Port Louis. Yes, Barjalu, the scent of quality. For more inquiries, 214-6811 पे आप कॉल कर सकते हैं.
1: RM2 Radio Mystery.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: घड़ी मिलाते चले, समय सुबह के 8 बजे हैं.

33 बिलियन रुपया के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट के जांच में मूवमेंट पैट्रियोट मॉरिशियन के नेता अलान गानू से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पूछताछ कर लग पूछताछ के बाद अलान गानू कहलन की जिन दू मंत्रालय के जिम्मेदारी उनकर लगेल रहल ओकरा के ई कॉन्ट्रैक्ट से कोनो लेना देना नहीं बा उ कहलन की जांच अधिकारी लोगन के सब सवाल के जवाब दे देवल गल बा और जरूरत पड़ला पर फिर उसे एफसीसी के सामने हाजिर हो के खातिर तैयार हवन ई जांच 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप के मिलल 30 बिलियन रुपया के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ल बा मॉरिशस में छोटा और मध्यम कारोबार मतलब एसएमईज के बढ़ावा देवे खातिर सरकार नवा कानून ले आवे के तैयारी में बा करीब 10 बरिस पुराना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट में बदलाव हुई जमे ठेकेदार लोगन के काम आसान हो सकी उद्योग मंत्री आदिल अमियामिया कहलन कि आज के आर्थिक हालात के हिसाब से कानून बदले के जरूरत बा ऊ एसएमई मॉरिशस

0: की ओर से कारोबारी लोगन खातिर शुरू करल गल योजना के बारे में भी जानकारी देलन। अब शिक्षा के बाद नौजवान लोगन के नशा से बचावे खातिर सरकार अगस्त महीना से नवा रिबाउंड प्रोग्राम शुरू करी। पहला चरण में ई योजना 25 कॉलेज के ग्रेड 10 के छात्र लोगन खातिर हुई। ई कार्यक्रम के मकसद बा कि बच्चा लोग सही फैसला ले सकी, गलत संगत के दबाव से बच सकी और नशा से दूर रही। आज से पवित्र श्रावण मास शुरू हो गल बा। सनातन धर्म में ई महीना भगवान शिव के समर्पित मानल जाला। ई महीना में श्रद्धालु व्रत रखेलन जा, जलाभिषेक करेलन जा, ओम नमः शिवाय के जाप करेलन जा और पूजा पाठ में भाग लेवेलन जा। आर्य समाज खातिर ये महीना वैदिक जीवन यज्ञ स्वाध्याय अनुशासन और प्रकृति के रक्षा के संदेश देवे वाला समय मानल जाला। मॉरिशस के अलग अलग आर्य समाज केंद्र में यज्ञ सत्संग और धार्मिक कार्यक्रम हुई। आज पोर्टवी के डीएवी कॉलेज में आर्य सभा मॉरिशस के ओर से बहुकुंडीय यज्ञ के आयोजन करल जाता। दूसर देश के खबर में यूरोप के कई देशन में जंगल के आग अभियो लगल बा। ग्रीस में आग बुझावत दो दमकल कर्मी के मौत हो गल। तुर्की में भी आग के चलते सीमा बंद करे के पड़ल और अस्पताल के गो हिस्सा खाली करावल गल। उधर स्पेन और फ्रांस में तेज गर्मी और जंगल के आग से हालात अभियो गंभीर बा। स्पेन में अबले 43,000 हेक्टर से जस्ती इलाका आग में जल चुकल बा। तो ये रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार। हमनी के लजा धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं, वेलकम आपका हमारे मॉर्निंग बीट में। ये वो शो है जहां पर हम अपने गीतों के साथ सैलुटेशन को बीट करती हैं, जस्ट पैरेट। चलो, तो आप भी साथ दे रहे हो, थैंक यू सो मच। थर्सडे 30th of July, बाय बाय। बस दो दिन रह गए और फिर क्या, अब तो फिर थोड़ा बाय बाय हो गया, लेकिन नए महीने के लिए रेडी हो ना, तो चलो ठीक है। अभी हम रेडी हो रही हैं ये जानने के लिए कि बाहर मौसम कैसा है और पूरे दिन मौसम कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं, मिलते हैं किसके साथ, आस्था के साथ।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: ओनली टू विनर्स।
4: हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश के दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बरसात होगी, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद देश के पश्चिम में कुछ वर्षा हो सकती है, जो काफी तेज भी हो सकती है। देर रात को पूर्व उत्तर और सेंट्रल प्लेटों पर वर्षा की संभावना है। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान साहली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:40 पर, सूर्यास्त 5:51 पर होगा।
5: La foire Belbel Kadi retourne Côte Winners.
6: Belbel Kadi de retour Côte Winners. Du mercredi 29 juillet au vendredi 31 juillet, la gamme de déodorants femmes Ushuaïa de 200 ml à 244 roupies 95. Et du mercredi 29 juillet au jeudi 30 juillet seulement, la serviette de bain 100% coton de 75 par 150 cm à 199 roupies 95. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
7: On est tous winners!
1: RM2
8: Radio Musty.
1: Feel

0: और झुमका
1: A good beat for your morning show.
2: Come on.
1: RM2
3: Radio Musti.
4: चलो जी झुमके को जरा संभाल के रखो कहीं गिर न जाए। और इसमें सैड होने वाली कौन सी बात है, क्या हो गया इतने सैड लग रहे हो? अरे भाई रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हो, एक स्माइल तो बनता है। मैं क्या स्माइल, क्या लाफ्टर बनता है भाई। चलो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू रेडियो मस्ती। देखो लाइफ बड़ी छोटी है, सो शाइन लाइक हीरा, शेक योर हिप्स लाइक शकीरा, एंड डांस लाइक गरम तेल में जीरा। वाह, पट पट पट पट पट पट पट पट, ऐसी खुश रहो मजे में अपनी जिंदगी को। चलो लेकर चलते हैं आपको इस दुनिया में जहां पर सिर्फ खुशी होती है, और वो है हमारा रेडियो मस्ती। अब खुशी की बात चली है तो चलिए सतीश जी रोजबल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग टू यू। काफी देर लगा दी मैंने गुड मॉर्निंग कहने में, आई होप कि आपकी मॉर्निंग अभी भी गुड है और अभी बेटर हो गया होगा। तो ऐसा करते हैं आपके लिए हम लेकर आए हैं एक सवाल, और सही जवाब देने पर आपको मिलेगा इनाम। तो द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड, एंड आप खेलेंगे एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ और जीत पाएंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। यस यू कैन विन 4 एंट्री टिकट्स। देखो एक नहीं दो नहीं चार है, सो 4 एंट्री टिकट्स प्लस 1 फूड कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी। कब शुरू होगा? कब कब होगा? वो तो वो हो गया ना कि जब शोले में पूछते दिवाली कब है, कब है दिवाली। हाँ तो ये शुरू हो रहा है 12 अगस्त को, चलेगा 16 अगस्त तक एट SBICC पाई। अब जो लोग सुबह देर से उठना पसंद करते हैं, मैं बता दूं 10 बजे ही यहाँ शॉपिंग शुरू होगी, और जिन लोगों को लेट नाइट शॉपिंग पसंद है तो रात के 9 बजे तक शॉपिंग चलेगी। तो दिन के 10 बजे से रात के 9 बजे तक, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर 5 दिन की शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन जो है आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। अब आप पूछोगे कि क्या होगा, तो मैं बताती हूँ, आराम से बताती हूँ जल्दी। क्या है? इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मस्ती पसंद है ना? हाँ बिल्कुल, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन। जी हाँ, इनको आपने देखा होगा इंडियन आइडल में, तो वो परफॉर्म करने आ रहे हैं। ये छोड़ो, नचाने और नाचने आ रहे हैं धर्मेश सर, बॉलीवुड के कोरियोग्राफर है भाई। इनका एक स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है, तो आपको मौका मिलेगा उनको देखने का, और हो सकता है उनका डांस भी देख पाओ, क्या बात है। कानवा का शो होगा, ब्लड डोनेशन कैंप होगा, और साथ में होगा फूड फेस्टिवल। ये फूड फेस्टिवल सुन के ना कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड। और चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए सवाल लेकर आई हूँ। देखो कल भी मैंने पूछा था तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया था। आपको पता है ना कि यहाँ पर जो उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल है, इसमें धर्मेश सर भी आ रहे हैं, तो इसी चलते मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। वैसे कल बोलने वाली थी, फिर मैंने बोला रहने दो, आज सवाल पूछ ही लेती हूँ। आपको जो बोलना है कि है तो ये कोरियोग्राफर, लेकिन इन्होंने डेब्यू किया था एज एन एक्टर 2013। आपको मुझे फिल्म का नाम बताना है कि वो कौन सी मूवी थी जिसमें धर्मेश सर ने अपना डेब्यू किया था एज एक्टर इन 2013। सही जवाब दोगे तो मिल सकता है इनाम।
1: वेलकम टू RM2
3: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, यस मेरे सभी बंधुओं, कैसे हो कहाँ पहुँचे? अच्छा, ड्राइव कर रहे हो, काम पे जा रहे हो, ट्रैफिक की क्या रिपोर्ट है बताते चलना 549-1294 पे। अब हम तो यहाँ पे बैठे, हमारे गीतों की तो ट्रैफिक बहुत अच्छी फ्लो से जा रही है। चले तो यहाँ पर आपके लिए गेम था, हमने आपसे पूछा था कि क्या पूछा था, हाँ हमने आपसे पूछा था कि हमारे जो कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड के धर्मेश सर, उन्होंने किस मूवी के साथ अपना डेब्यू किया था एक्टर इन 2013, एंड द राइट आंसर इज ABCD। जी हाँ, ABCD में आए थे वो। और चलो तो यहाँ पर थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। और किसको मिला इनाम, यही सोच रहे थे ना, चले लकी ड्रॉ तो हो ही गया है, नाम बाहर ले लें। पर सही जवाब देकर विनर बनी है माधवी बिहारी फ्रॉम थंगबा, कांग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल रहा है यहाँ 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 foot कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। ये शुरू हो रहा है 12 अगस्त को, चले

16 अगस्त तक एट SBICC Pi। अगर आप लेट नाइट शॉपिंग पसंद करते हैं सो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा क्योंकि रात के 9 बजे तक आपको मौका मिलेगा शॉपिंग करने का। एंड ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड, जहां पर शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज और बहुत कुछ होने वाला है। स्पेशली ये जो फूड फेस्टिवल है सबको अच्छा लगता है। तो चले इसी के साथ इट्स टाइम कि हम आगे बढ़े और ABCD2 जैसे आपने जवाब दिया हमें तो उसी फिल्म का एक गाना हो जाए हमारे सभी लिसनर्स के नाम। नहीं मुझसे नहीं होगा, आप ट्राई करो, आपसे होगा? नहीं हुआ ना।

0: तो जितने भी लोगों के हाथ पैर में भी टैटूज इस गाने को सुनने के बाद फ्लॉन्ट कर रहे होंगे, चलो ठीक है। सुबह के 8:32 बत्तीसी बाहर ही रखना, खुश रहना। और चलिए इसी के साथ एक बार फिर अरविंद से मिलते हैं जिन्होंने हमारा स्पोर्ट्स मिस कर दिया।
1: स्पोर्ट्स न्यूज रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: चलो एक बार फिर वेलकम एंड गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। और इस गुड मॉर्निंग

0: मॉर्निंग को गुड न्यूज के साथ शुरू करेंगे। फाइनली द कैट इज इन द बैग एमबीसी के स्पोर्ट्स 11 पर और यहां पर RM2 पर आप लोगों ने लाइव देखा और सुना। मेवे क्लेयर मॉरिशस के लिए पहला मेडल जीत पाया। रंग क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। सो मेवे क्लेयर ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में हमारे लिए मेडल लेकर आएगा। मेवे क्लेयर कल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ, मतलब मेडल पक्का। अब रंग क्या होगा, ब्रॉन्ज सिल्वर या गोल्ड, ये आगे देखेंगे। फिलहाल मेडल टेबल में मॉरिशस का नाम होगा जरूर। मेवे क्लेयर ने क्वार्टर फाइनल में कल गाना के प्रीशियस अकाई नेटी को हराया। आज सेमीफाइनल है। राशेल क्लोपफाइनस्टाइन 800 मीटर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई। डॉक्टर बेर्नार्ड बैटिस भी शॉर्ट पुट के फाइनल में जा पाया। पैरा एथलेटिक्स में नोएमी अल्फोंस फिर से फाइनल में होगी। कल रेस के दौरान अल्फोंस के अलावा ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि कनाडा के एथलीट के कारण रेस पूरा नहीं कर पाए। दोनों ने अपील की थी और अब रेस फिर से लगेगी, मतलब नोएमी के लिए मेडल जीतने का दोबारा चांस। मेडल टेबल में ऑस्ट्रेलिया के पास है अभी 47 गोल्ड मेडल टोटल 103। कनाडा 14, इंग्लैंड 12, 12 स्कॉटलैंड 9, टीम इंडिया के पास 3 गोल्ड मेडल है टोटल 15। भारतीय टीम के लिए तीसरा गोल्ड मेडल पैरा एथलेटिक्स में दिलीप महादू गवीत ने जीता। यूईएफए चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के रिटर्न लेग के मैच कल खेले गए। इनमें कैरात और ओमोनिया के बीच मैच ड्रो गया 1-1। पेनाल्टी पर कैरात की जीत। ज़ालगिरिस 1-0, लेच पोजडन 1, AGF 4। पेनाल्टी पर जाकर AGF की टीम क्वालिफाई हुई। शेवा 2, विकिंगू 0, 3-2 से शेवा क्वालिफाई। क्रायोवा 2, लेव्स्की क्वालिफाई 3-2 से। गोनिक 1, फेनेरबाचे 1, 2-1 से फेनेरबाचे क्वालिफाई। रेड स्टार 5, लार्ने 0, स्लोवान 1, इबारिया 1, 3-2 से स्लोवान की टीम क्वालिफाई हुई। कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफिकेशन में लुगानो रैपिड वियना की जीत और सिडनी सुपर कप में टोटनहम हॉटस्पर ने सिडनी टीम के खिलाफ मैच ड्रो किया 1-1। पेनाल्टी पर टोटनहम हॉटस्पर की जीत हुई। क्लब फ्रेंडलीज में आज सुबह लिवरपूल ने रेक्साम को 1-0 से हराया। सेकेंड हाफ में एंगुमोहा का गोल। रेक्साम की टीम 3 मैचों में ये पहली हार है उसकी। उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी हराया था फ्रेंडलीज में। लिवरपूल की दूसरी जीत है संडरलैंड के बाद। सेडोजो 1, डॉर्टमुंड 0। एथलेटिक और ग्रेटाफे के बीच मैच सस्पेंड कर दिया गया। ब्रिस्टल सिटी 4, न्यूकासल यूनाइटेड 1, डोनकास्टर 0, वुल्व्स 2, बर्नले 2, स्पैनियल 2, वाटफोर्ड 0, फ्लोरेंटिना 1, इप्सविच 1, ओसासुना 2। अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया, पर फीफा डिसिप्लिनरी कमिटी ने उसके खिलाफ तहकीकात शुरू की है। एक तो फाइनल मैच पूरा होने पर हाथापाई यानी वायलेंट सीन्स देखे गए थे जहां अर्जेंटीना के खिलाड़ी लड़ने लगे थे। इसके अलावा इंग्लैंड के को हराने के बाद फॉकलैंड आइलैंड्स मुद्दे पर बन दिखाने के लिए अर्जेंटीना पर आरोप है, तहकीकात है। पेरिस सेंट जर्मेन के ब्रैडली बारकोला के लिए लिवरपूल पहला बिड तैयार कर रहा है। पेरिस सेंट जर्मेन ने उस पर 145 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का दाम रखा है, पर लिवरपूल इससे कम में उसे साइन करना चाहता है। इधर फीफा के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान को आगे ले जाने के लिए प्रेसिडेंट इन्फांटिनो हर फीफा मेंबर देशों को 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार है। यूईएफए इस प्लान का विरोध कर रहा है। सितंबर 19 तक हर फुटबॉल फेडरेशन को अपना फैसला सुनाना होगा। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। सो वी हैड इट लाइव ऑन रेडियो मस्ती कल, जहां पर मेवे क्लेयर ने मॉरिशस के लिए पहला मेडल जीता। रंग बदल सकता है, वाई नॉट गो फॉर गोल्ड। और आज हमारे काफी एथलीट क्वालिफाई होने के लिए फाइनल में होंगे। गो फॉर गोल्ड, Ale Maurice, let's hope for more medals. Take care. Bye-bye.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: बेटा ये गलती से होने वाली मिस्टेक है, आप मत करना।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: हाँ जी, आपको क्या करना है, आपको मुझे सही जवाब देना है और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपके लिए हम लेकर आए हैं गेम और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल और आप मुझे सही जवाब दोगे तो आपको मिल सकता है विनर्स की तरफ से 500 रुपीस का एक गिफ्ट वाउचर। किसको चाहिए? सबने बोला मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। मेरे सवाल तो कर लूं। चलो आप मुझे ये बताओ, अंटिल 2nd ऑफ अगस्त व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ नेचर्स जूस 1 लीटर? ओके, अंटिल 2nd ऑफ अगस्त व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ नेचर्स जूस 1 लीटर? सही जवाब 5491294 पे भेजना। देखो मुझे गली गली में मोहल्ले को छानना नहीं है, जैसे कि यहाँ पर करने वाले हैं हम एक्शन रिप्ले। तो जल्दी करो, जवाब भेजो और अगर जिनके पास मौका नहीं मिलता है पार्टिसिपेट करने का, गाड़ी चला रहे हो आप चाहो तो गाड़ी पार्क करके भी जवाब भेज सकते हो, अगर नहीं तो एंजॉय करो गाना।

0: All right. सवाल किया था हमने खेल रहे मुनीस के साथ यहाँ पर आपके लिए सवाल था until 2nd of August what is the normal price and the promotional price of Nature's Juice 1 liter और normal price 114 rupees 9 cents और promotional price है 74 rupees 95 cents और यहाँ पर सही जवाब देकर winner बने हैं कौन चलिए जानते हैं तो आप हैं रोशन सिकोपोल फ्रॉम बिलियर वेसेश कंग्रेचुलेशंस आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है हमें और आपको मिल रहा है विनर्स की तरफ से 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर जो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा थोड़ी देर में हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट आपको कॉल करेंगी और सारी डिटेल्स देंगी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऑन रेडियो मस्ती
1: RM2 रेडियो मस्ती

दोस्तों कभी सोचा है, अभी हम गाना सुन रहे थे गलती से मिस्टेक। चलो गलती से मिस्टेक तो हो ही जाता है, लेकिन कभी अकेले में बैठकर सोचा है गलती आपसे कभी ना कभी तो हुई होगी, या तो फिर आपने कभी जानबूझ के कुछ किया होगा, सॉरी बोला है, या ईगो बहुत बड़ा है। चलो ये सोचो, जिसको आपने छोड़ा अगर वो किसी और के लिए आपको छोड़ दे तो, आप जिसे चाहते हैं अगर वो आपको छोड़कर किसी और को चाहे तो, जिसका दिल आपने तोड़ा कोई आपका दिल तोड़ दे तो, आपने जिसको पैसे के लिए धोखा दिया और आपका पैसा कोई हड़प ले तो,

0: इंसान जब गलत काम करता है ना तो ये सब नहीं सोचता, क्योंकि वो सिर्फ अपने भले के लिए सोचता है। वो सोचता है कि इसका पैसा हड़प लूँ तो मेरा बिजनेस चलेगा, मैं इसको छोड़ दूँ तो मुझे प्यार ज़्यादा वहाँ मिलेगा। इंसान ये सब कभी नहीं सोचता, लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जिसके साथ हम गलत करते हैं वही गलती कभी कभी हम पे भी आ जाती है, हमारे साथ भी दोहराई जाती है। तो सोचो, और अगर आपको लगे कि आपने गलत किया तो सॉरी बोल दो, और अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लो, और मेक श्योर कि फिर कभी आप किसी का दिल ना तोड़ो और फिर आप किसी को चोट ना पहुँचाओ।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हमारे जाने का भी टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी विदिता ऑन रेडियो मस्ती फॉर मॉर्निंग बीट. उम्मीद करती हूँ हमारे गानों ने अपना मैजिक जरूर किया होगा और आपके चेहरे पे स्माइल जरूर आई होगी. इसे स्माइल को बरकरार रखना पूरे दिन. एंड टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग एट

नमस्कार जी हाँ 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले स्थानीय खबरें। 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट की जांच के सिलसिले में मूवमेंट पैट्रियट मॉरिशियन के नेता अलन गानू से मंगलवार यानी कल फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अंडर वार्निंग पूछताछ की। पूछताछ के बाद अलन गानू ने कहा कि जिन दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी उनका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं के सभी सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए हैं और आवश्यक स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जरूरत पड़ती है तो वे दोबारा भी एफसीसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि ये जांच वर्ष 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को दिए गए 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है। मॉरिशस में एसएमईज को बढ़ावा देने के लिए सरकार नया कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। लगभग 10 साल पुराना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट अब बदला जाएगा ताकि उद्योगों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों से राहत मिल सके। मंगलवार को राष्ट्रसभा में उद्योग मंत्री आदिल अमियामिया ने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कानून में बदलाव जरूरी हो गया है। उन्होंने नवंबर 2024 से एसएमई मॉरिशस द्वारा उद्योगों के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलुओं की भी जानकारियां प्रदान की। बात करते हैं अब शिक्षा के सेक्टर के बारे में। युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए सरकार अगले महीने से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। अगस्त से देश के 25 कॉलेजों में ग्रेड 10 के छात्रों के लिए रिबॉन प्रोग्राम की शुरुआत पायलट परियोजना के रूप में की जाने वाली है। इसका उद्देश्य किशोरों में सही निर्णय लेने की क्षमता और नशे से दूर रहने के लिए जागरूक बनाना है। सनातन धर्म में आज से पवित्र श्रावण मास शुरू हो गया है। भगवान शिव को समर्पित ये महीना श्रद्धा भक्ति और संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है।

0: इस पूरे मास में श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं तथा ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आर्य समाज के लिए ये महीना केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि वैदिक जीवन शैली, आत्म अनुशासन, यज्ञ, प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। इस पूरे मास में आर्य समाज के विभिन्न केंद्रों में वैदिक यज्ञ, वेद मंत्रों का पाठ, सत्संग और सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मॉरिशस में भी श्रद्धालु श्रावण मास को वैदिक परंपराओं के अनुरूप मनाते हुए ईश्वर की उपासना, सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। यूरोप के कई देशों में जंगल की आग का संकट बना हुआ है। ग्रीस में आग बुझाने के अभियान के दौरान 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई, जबकि तेज हवाओं के कारण कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 9:09 हो चुके हैं, सुबह से आपका साथ निभाया नीलमणि ने, उसके बाद आ गई वेदिता। उम्मीद है आपकी सुबह शानदार हो रही होगी। कई लिसनर्स ने वाउचर्स और गिफ्ट भी जीते होंगे, लेकिन अभी मस्ती बाकी है क्योंकि मैं आ गई हूँ आपके साथ पूनम अपने पिटारे में बहुत सारे सुपरहिट गाने लेके, ढेर सारी बातें और नए सारे बहुत सारे सरप्राइजेस गिफ्ट भी। और अगर आपको भी कोई बात कहनी है दिल की तो आप हमें कर सकते हैं 5499124 पर। इंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned, stay musty. Radio

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:18 हो चुके हैं दोस्तों, और आज बर्थडे है दो शानदार सितारों का। वही एक है, एक तरफ है सोनू निगम, जिनकी आवाज़ के गाने आज भी दिलों में राज करते हैं, और दूसरी तरफ है सोनू सूद, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ साथ

0: मुश्किल समय में लोगों की मदद करके सबका दिल जीत लिया। हमारी तरफ से दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और अब सुनते हैं उनके शानदार गाने। और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप भेज सकते हैं 5499124 पर। हम हैं आपके साथ 9 बजे से लेके 12 बजे तक। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: नमस्कार, 34 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। क्या बात है, गाने जब इतने अच्छे चलते हैं ना तो काम तो ऐसे ही हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, एक इम्पॉर्टेंट जो आज डे है ना, हम जो सबको ही जिसको शेयर करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, वो है आज इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। ज़रा सोचिए आपका वो दोस्त कौन है जिसे बिना बताए भी आपकी बात समझ आ जाती है और कह देते हो, बस सिर्फ चुप रहते हो फ़ोन पर और वो बोलते हैं अरे क्या हुआ, ठीक है ना। तो बस उसी को मैसेज कीजिए, उसी को कॉल कीजिए, पूछिए क्या हाल चाल है। अगर आपको भी वही दोस्त याद है और या वो दोस्त का नंबर याद है तो हमें भी बताइएगा, हम भी उन्हें कॉल करेंगे। इंजॉय कीजिए अपना गाना और साइड इफेक्ट जो है दोस्ती के वो है ये।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: Your daily horoscope. RM2, Radio Masti.
2: नमस्कार, 46 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। नई सुबह, नई उम्मीदें और नई ऊर्जा के साथ मैं हूं आपके साथ पूनम। आइए जानते हैं आज आपकी राशि क्या कहती है। सबसे पहले
3: एरीज, मेष राशि।
2: आज नई सोच आपको आगे ले जाएगी। एक अच्छा मौका आपका इंतजार कर रहा है। पूरे जोश के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
3: टॉरस, वृषभ राशि।
2: आज दिल को सुकून देने वाली खबर मिल सकती है। अपनों के साथ अच्छा समय बीतेगा, छोटी सी खुशी दिन बना सकती है। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
3: जेमिनी, मिथुन राशि।
2: आज आपकी बात सबका ध्यान खींचेगी। नई मुलाकात फायदेमंद रह सकती है। आपका अंदाज बनाए रखिए। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
3: कैंसर, कर्क राशि।
2: आज घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। कोई प्यारा सा सरप्राइज मिल सकता है। मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
3: लियो, सिंह राशि।
2: आज आपकी चमक सबसे अलग नजर आएगी। कोई अच्छी तारीफ सुनने को मिल सकती है। हर पल को भरपूर आनंद लीजिए। लकी कलर है गोल्ड, लकी नंबर है 1।
3: वर्गो, कन्या राशि।
2: आज नई योजना आकार ले सकती है। बहुत समय से जिस काम को आप करने का कोशिश कर रहे थे नहीं हो रही थी, वो आज हो सकती है। सही समय पर लिया गया फैसला आज ही होगा। दिन आपके पक्ष में रहेगा। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 4।
3: लीब्रा, तुला राशि।
2: आज रिश्तों में नई मिठास घुलेगी। किसी अपने का साथ खुशी देगा। दिल खोलकर मुस्कुराइए। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
3: स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि।
2: आज रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। आपकी लगन रंग दिखाएगी। आत्मविश्वास बनाए रखिए। लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 8।

0: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज कुछ नया दिखने या सीखने का मौका मिलेगा। अच्छी खबर आपका इंतजार कर रही है, उत्साह से आगे बस बढ़ते जाइए। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 3।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है, चाहे ऑफिस हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप अपने परिवार में हो। नई जिम्मेदारियां खुशी देंगी आपको, कदम आगे बढ़ाते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 10।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज आपकी अलग सोच पहचान दिलाएगी आपको, दोस्तों का साथ मिल सकता है और आपको खुशी दे सकता है, नए मौके का स्वागत कीजिए। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 11।
0: पाइसेस मीन राशि।
1: आज मन में नई उमंग बनी रहेगी, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, खुश रहिए, दिन शानदार रहेगा। लकी कलर है सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो दोस्तों ये था आपका राशिफल। याद रखिए, किस्मत रास्ता दिखाती है लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपको हाथ पैर चलाने चाहिए। बस एंजॉय कीजिए गाने और काम करते रहिए।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
3: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check. सुबह के 10 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से. आस्था आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट की जांच के सिलसिले में एफसीसी ने मूवमेंट पैट्रियट मॉरिशियन के नेता अलान गानू से कल पूछताछ की. पूछताछ के बाद उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध नहीं था. उन्होंने बताया कि एफसीसी के सभी सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए हैं और जरूरत पड़ने पर फिर से उपस्थित होने के लिए तैयार हैं. सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एसएमईज के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार कर रही है. उद्योग मंत्री आदिल अमियामिया ने बताया कि लगभग 10 साल पुराने कानून में बदलाव कर ठेकेदारों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान बनाई जाएंगी. अगस्त से देश के 25 कॉलेजों में रिबाउंड प्रोग्राम शुरू होगा. ग्रेड 10 के छात्रों के लिए शुरू की जा रही इस पायलट परियोजना का उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स के खतरे से जागरूक करना और सही फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित करना है. सनातन धर्म में आज पवित्र श्रावण मास का आरंभ हो गया है. भगवान शिव को समर्पित इस पूरे महीने में श्रद्धालु व्रत रखेंगे, शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करेंगे तथा ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान शिव जी की आराधना करेंगे. मान्यता है कि श्रावण मास में की गई पूजा दान और सत्कर्म का विशेष महत्व होता है और आर्य समाज की शाखाओं में भी विशेष वैदिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस पवित्र महीने के दौरान आर्य समाज के लिए ये महीना यज्ञ, स्वाध्याय, अनुशासन, सेवा और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का संदेश देता है. इसी अवसर पर डीएवी कॉलेज पोर्टली में आर्य सभा मॉरिशस की ओर से श्रावणी के शुभारंभ पर बहुकुंडीय यज्ञ का आयोजन इसी समय किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं. इस दौरान वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ संघ और ईश्वर उपासना के माध्यम से समाज में सदाचार, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण का संदेश दिया जा रहा है. यूरोप के कई देशों में जंगल की आग का संकट जारी. ग्रीस, तुर्की, स्पेन और फ्रांस आग की चपेट में हैं. स्पेन में अब तक 43,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जल चुका है जबकि कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. न्यू रोड घोषणुआ में 70 साल के श्री राजेंद्र कुमार इंदर नारायण की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें माइकल के नाम से अधिक जानती थी. उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनकी पत्नी लक्ष्मी इंदर नारायण के मकान घोषणुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टूडे एट 1 PM. गांधी रोड थ्वा बुटीक यूनियन वेल में 57 साल के संजीव दुग्भंजन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें बुल्टन के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के मकान यूनियनविल से उठा

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 10:15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। भाई मस्ती मॉर्निंग जब होती है ना तो सच में मस्ती ही होती है। यहाँ पे गाने ऐसे चलते हैं जिससे कि आपकी थकान बस दूर रहे, आपको याद ही ना करे, आपको पता ही ना चले कि आपको थकान हो रही है। आप घर के काम कर रहे हैं तो घर के काम कीजिए, ऑफिस में पहुँच गए, सेटल हो गए, ड्राइव करके पहुँच गए, और अभी कई लोग ड्राइव करेंगे वो उनका भी काम है, मतलब जो ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए भी हम यही कहें, आँखें खोल के रखिए, इंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, मस्ती कीजिए। और अगर कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा सीरियस होना है तो चेहरे पर मुस्कान जरूर रखिएगा, बट सीरियस होके अपने काम को पूरा करते रहिए। एंजॉय कीजिए गाने।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned, stay musty. Radio

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: Welcome to RM2.
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
3: अगर आज शॉपिंग का प्लान है तो एक छोटी सी स्मार्ट शॉपिंग टिप सुन लीजिए। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो इस समय ज़्यादा विंटर्स वियर खरीदने से थोड़ा सा रुकिए। अभी तो मॉरिशस में ठंड है, लेकिन सोचिए कुछ महीने बाद गर्मी भी आएगी, क्यों ना अभी से एक दो हल्की साड़ियाँ, समर सूट्स या कॉटन आउटफिट्स ले लिए जाएँ। शादी ब्याह तो पूरे साल आते ही रहते हैं, और एक बात, जो कपड़े ऑफ सीज़न में खरीदे जाते हैं वे अक्सर अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाते हैं, यानी वही स्टाइल लेकिन कम दामों में। तो स्मार्ट शॉपिंग कीजिए, पैसे भी बचाइए और वार्डरोब भी तैयार रखिए। इंजॉय कीजिए गाने, हम तो बस इतना ही बोलेंगे आपको। शॉपिंग करना है तो बस चले जाइए हलकरी फैशन।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:43 मिनट हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। तो चलिए भाई तैयार हो जाओ एक गेम के लिए। और RM2 रेडियो मस्ती लेकर आया है, राजस्थान वर्क्स लिमिटेड लेकर आए हैं आपके लिए मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का एक शानदार गेम जो कि है द गेम इज़ पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। आज आपके पास एक मौका है जीतने का जी, 4 एंट्री टिकट्स और जेंट्स लिटिल इंडिया के लिए 1 फूड कूपन जो कि वेज थाली होगी जिसे कहते हैं शाही थाली, और पूरे परिवार के लिए साथ पहुंच सकते हैं आप 12 से 16 अगस्त 2026 SBICC पाए, जहां सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक आपका इंतजार कर रहा है उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। वहां मिलेगा आपको इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शोज, इंडियन आइडल, प्रणय जैन भी आ रहे हैं जो कि अपनी लाइव परफॉर्मेंस के साथ आएंगे, बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर की स्पेशल अपीयरेंस, कानमा शो, ब्लड

डोनेशन कैंप और स्वाद से भरपूर फेस्टिवल जहां पे आपको खाना ही खाना मिलेगा। आपको घर पे पकाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा जाइए, एंजॉय कीजिए, घर आके सो जाइए। तो बने रहिए आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ, और अगला लकी विनर हो सकते हैं आप। तो हमने कर ली बहुत सारी बातें, अब है भाई गेम खेलने का। तो आपको पता है कि धर्मेश सर, जिन्हें डी सर भी कहा जाता है और धर्मेश यलांडे भी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले 2007 में डीडी नेशनल, जो कि इंडिया का एक चैनल है, उसमें डांस रियलिटी शो में परफॉर्मेंस दी थी। आपको बताना है कि वो कौन सा शो का क्या नाम था। आपको सिर्फ बताना है कि डीडी नेशनल में जो उन्होंने डांस रियलिटी शो में अपीयरेंस दी थी या उसमें गए थे, उस शो का नाम क्या था। जो भी होगा वो बस आपके सामने थोड़ी देर बाद होगा, इस गाने के बाद। तो गेम के साथ खेलते रहिए, इंजॉय करते रहिए, मैं हूँ आपके साथ। 5499 1294 पर आप बता सकते हैं, और साथ में आपको पूरे नाम और पते के साथ बताना है। ये है आपका गाना।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:50 मिनट हो चुके हैं और हमने एक प्यारी सी आपके साथ गेम खेली थी जो कि थी किसकी तरफ से. यस, द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड. और ये हमने आपके साथ गेम बहुत ही छोटी सी प्यारी सी खेली थी, पर हम आपको बता दें कि आपने जीता क्या है. लेकर आए हैं मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का एक शानदार प्यारा सा दिन. आज आपके पास मौका था जीतने का 4 एंट्री टिकट्स और जेंट्स लिटिल इंडिया की तरफ से शाही थाली, एक फूड कूपन, और फिर पूरे परिवार के साथ आप पहुंच सकते थे 12 से 16 अगस्त 2026 को SBICC पाए, जहां सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपका इंतजार कर रहा है उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI and LIC. वहां मिलने जा रहा है आपको इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शोज, इंडियन आइडल सिंगर प्रणय जैन लाइव परफॉर्मेंस देंगे, बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश्वर, यस यानी कि धर्मेश यलांडे जी, जिनकी स्पेशल अपियरेंस होगी, कानमा शो, ब्लड डोनेशन कैंप, और स्वाद से भरपूर फेस्टिवल होगा जहां पर आपको कोई और टेंशन नहीं करनी है घर की. बस हफ्ता जो है ना, बस इंजॉय करना है, थोड़े दिन भूखे रहना है और वहाँ जाके दबा के खाना है, और बस यही आपको काम करना है. और उसके साथ आपने जो गेम खेला उसमें से हमें बताना है कि भाई कौन जीता है. यस यस, जीतने वाले को भी हम नाम लेंगे. तो हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि 2007 में DD नेशनल के डांस रियलिटी शो में धर्मेश शांडले जी ने ज्वाइन किया था, वहाँ पर गए थे, रनर अप बने, और उसका जो नाम था शो का क्या था, तो आपने सबने बताया कि क्या था. बस बता देते हैं, बना देते हैं, वो था क्रेजी क्यारे. यस, क्रेजी क्यारे. और सच में क्रेजी कर दिया आप सबके मैसेजेस ने, इतने सारे मैसेजेस, मुझे पता है सबको भूख लगी होगी, इसीलिए ने सबने कहा कि हमें शॉपिंग करनी है, तो बेस्ट होगा एंट्री टिकट पूरे परिवार के लिए मिल जाता, पर विनर जो है उसका नाम तो लेना है. चलिए जानते हैं कौन है विनर. तो योवना गुजादिन जो कि फ्लाग से हैं, उन्होंने जीता है 4 एंट्री टिकट्स, यस, और एक शाही थाली. बहुत सारी तालियों के साथ भाई आपको हम तो यही कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीता है. और हम यही कहेंगे जाइए खाइए पिए जिए इंजॉय कीजिए. अभी बहुत सारे पूरे दिन चलते रहेंगे हमारे, बहुत सारे वाउचर्स और गिफ्ट हमारे साथ जुड़े रहे. RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ है 24 आवर्स.
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center.

0: 99.4
1: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Time check, सुबह के 11 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से. आस्था आपको नमस्कार.
4: नमस्कार. 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट की जांच के सिलसिले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मूवमेंट पैट्रियट मॉरिशियन के नेता अलान गानू से पूछताछ कल की और इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध नहीं. उन्होंने बताया कि एफसीसी के सभी सवालों के जवाब दे दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर फिर से उपस्थित होने के लिए वे तैयार हैं. सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एसएमईज के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार कर रही है. उद्योग मंत्री आदिल अमियामिया ने राज्यसभा में मंगलवार को बताया कि लगभग 10 साल पुराने कानून में बदलाव कर ठेकेदारों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान बनाई जाएंगी. अगस्त से देश के 25 कॉलेजों में रिबॉन्ड प्रोग्राम शुरू होगा. ग्रेड 10 के छात्रों के लिए शुरू की जा रही इस पायलट परियोजना का उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स के खतरे से जागरूक करना और सही फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित करना है. सनातन धर्म में आज पवित्र श्रावण मास का आरंभ हो गया है. भगवान शिव को समर्पित इस पूरे महीने में श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करेंगे तथा ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान शिव की आराधना करेंगे. मान्यता है कि श्रावण मास में की गई पूजा दान और सत्कर्म का विशेष महत्व है. और आर्य समाज की शाखाओं में भी इस मास के दौरान विशेष वैदिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. आर्य समाज के लिए ये महीना यज्ञ, स्वाध्याय, आत्मानुशासन, सेवा और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का संदेश देता है. इस अवसर पर आज डीएवी कॉलेज पोर्ट्री में आर्य सभा मॉरिशस की ओर से श्रावणी के शुभारंभ पर बहुकुंडीय यज्ञ का आयोजन इसी समय किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं. इस दौरान वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ, सत्संग और ईश्वर उपासना के माध्यम से समाज में सदाचार, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण का संदेश दिया जा रहा है. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की नई रिपोर्ट के अनुसार पढ़ाई में लड़कियां लड़कों से आगे हैं लेकिन लीडरशिप के पदों पर उनकी भागीदारी अब भी कम है. सरकारी सेक्टर में हालांकि वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या में पिछले एक साल के दौरान बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मधेपुर में तनाव एक बार फिर बढ़ा. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी हवाई हमलों की घोषणा की. अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई उसके सैन्य ठिकानों और जहाजों पर हुए कथित हमलों के जवाब में की गई है. इसके बाद क्षेत्र में तनाव एक बार फिर तेज हो गया है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की.
5: गांधी रोड ट्रॉ बुटीक यूनियन वेल में 57 साल के 57 इयर्स ओल्ड के संजीव दुग्भंजन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें बुलटन के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के मकान थ्वाबुटीक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM. पालमिस रोड न्यू कोव में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की धनवती रामधनी की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम कालीचरण. लोग उन्हें नानी के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज सपहर तीन बजे उन्हीं के मकान न्यू कोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागे जानी रोजबल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. 15 जैकलिन स्ट्रीट मोरोश में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की सबीना बीबी उजी गाली पैदाइश नाम उकलू. लोग उन्हें मीना के नाम से अधिक जानते थे. इंतकाल कर गई हैं. उनका जनाजा आज दिन के सवा बारह बजे उन्हीं के मकान मोरोश से उठाकर दफनाने के लिए सैमोत मोरोश का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 2:15 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
1: महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।
2: वेलकम टू RM2
3: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:11 हो चुके हैं दोस्तों, जावेद अली और सुनिधि चौहान के आवाज़ में आप सुन रहे थे दावितेश। और मुझे पता है कि विजय दावत है भाई, वो तो लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है। तो अगर आप लंच की तैयारी कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे आप चाहते हैं कि आपका परिवार का बस मूड जो है ना शाम को बढ़िया अच्छा हो जाए या दोपहर को बहुत मस्त हो जाए और सब कहें क्या खाना बनाया, तो आपको सबसे एक बार पूछ लेना है कि भाई क्या खाना चाहते हो। अगर उन्होंने कह दिया कि ये खाना है तो वही बना दो, जो सबकी पसंद हो वही बना दो, और जो आपकी कभी पसंद खुद की भी है उसको भी हमेशा प्रायोरिटी में रखा कीजिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ परिवार की हो और आपकी पसंद ना हो, तो बस वही खाइए जो आपको पसंद है। और अगर जो इस समय जो हमारे दोस्त हैं जो शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेने जाना पड़ता है, तो बस निकल जाती हैं हमारी माएँ दोस्त बहनें, तो बस क्या करना है कि आपको एक पहले से लिस्ट बनानी है और लिस्ट में वो सब काम कर लेने हैं, वो सब चीज़ें लिख लेनी है जो आपको करने हैं। ऐसा ना हो कि वहाँ जाओ और जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट करना था वही भूल जाओ। और कई बार ऐसा होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेनी होती है कभी कभी हम दुकानों पे ही रख के भूल कर आ जाते हैं और बोलते हैं अरे अब फिर जाना पड़ेगा अगले दिन, तो ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, कल ही हुआ है, इसलिए मैंने बोला चलो आज सब अपने लिसनर्स को भी ये बताते हैं कि भाई जो काम करने के लिए जा रहे हो ना एक अपने साथ एक स्पेशल बैग या छोटा सा बैग पर्स में डाल के लेके जाइए और साथ में उस बैग को पकड़ के लेकर आइए, साथ में पकड़े रखिए, गाने इंजॉय कीजिए। ये वाला गाना बहुत ही मस्त है।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:27 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। और क्या गाना मस्त, मतलब राहत फतेह अली खान की आवाज़ें मैं सुनती हूँ ना, मेरे दिल के अंदर से पता नहीं कौन सी वाली ऐसी सागर की आवाज़ें आती हैं, मतलब एक खनक बहुत बढ़िया है उसकी आवाज़ में, जो टेक्स्चर है, जो क्वालिटी है, जो गानों के वर्ड्स हैं, जो धुन है, जो सुर है, क्या बात है। तो चलिए भैया, ऐसी ही बात बनानी होती है क्योंकि हमें पता है कि कई लोगों के आज ऑफ होगा, हो सकता है किसी ने छुट्टी मारी होगी, किसी को पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे फेस्टिवल आ रहे हैं, कभी किसी फैमिली की वजह से कोई किसी को छुट्टी लेनी पड़ती है, बट हमारा दिन जो है ना आखिरी में कहाँ पे जाके खत्म होता है, भाई स्क्रोलिंग करते हुए, फोन की स्क्रोल करते रहो, ये रील देखो, वो देखो। तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिए, अगर आपका ऑफ है तो थोड़ा सा अपना घर साफ कीजिए, थोड़ा सा अपना टाइम निकालिए, अपने किसी दोस्त को फोन करना है वो कीजिए, कोई पेंडिंग काम पड़े हैं, कोई कुछ भी है, चाहे ऑफिस का ही है चाहे घर का है, अपने मदर फादर पेरेंट्स वगैरह के साथ बैठ के बातें कीजिए, थोड़ा सा चाय पीजिए, थोड़ा सा मूड रिफ्रेश कीजिए। और जो लोग इस समय ऑफिस में बैठे हैं और जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज अपने आप थोड़े से हाथों को मूव कीजिए, गर्दन को अप एंड डाउन कीजिए, कहते हैं ना कि थोड़ा सा रिलैक्स अगर आप बॉडी को दे देते हैं तो बॉडी भी आपको बोलती है थैंक यू। एंजॉय कीजिए गाने और साथ रहिए हमारे।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned. Stay musty. Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: क्या होता है भाई, 11:36 हो चुके हैं और आज सुबह से आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, इतने सारे मैसेजेस आए हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि चलिए 2-3 मैसेजेस ले ही लेते हैं। राजन रघुपत जी इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, लंदन से इंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। दिव्या जी बोबासन से जुड़ी हुई हैं, जना जी साथ दे रही हैं और अपने परिवार के लिए और फ्रेंड सर्कल के लिए एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं। बिल्कुल हम चलाएंगे, अवि बास और अमर के लिए एक प्यारा सा गाना चलाना चाहते हैं हम लोग। अनीता जी साथ दे रही हैं, डैनन श्वेता प्रिशा लुवेशा अपादू फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, आकांक्षा नीतू सुकारी एंड अदिति शिवा प्रिया अमित अमित वनीशा जीवन एंड आदिल साक्षी कृषि एंड रोशनी जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं इन प्यारे से गानों को, और साथ में आपके मैसेजेस भी हमारे को दिल छूते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई मैसेज देना होता है। तो अगर आपको भी कोई मैसेज देना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5499-1294 पर और अपने दिल की बात रख सकते हैं। और बहुत सारे जो मैसेजेस हैं उसमें सबने बस मेरे लिए ही सब कुछ है, हेलो कहा। अरे किसी ऐसे के लिए कोई मैसेज होना चाहिए ना, बस जहां मैं पढ़ सकूं और आपकी चिट्ठी वहां तक पहुंच जाए। चलिए भाई कोई बात नहीं, अभी आप जो मैसेजेस सबके लिए ऐसे कीजिएगा कि किसी स्पेशल के लिए कोई ऐसी बात जो बहुत टाइम से आपने उसे नहीं कही है, क्योंकि भी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है तो इंजॉय के साथ साथ उसके लिए मैसेज जाना जरूरी है। चलो इंजॉय कीजिए, ये गाना बहुत ही प्यारा सा है आपके सबके लिए।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned. Stay musty. Radio.

0: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे की हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
1: चाची, साकवा मोविन को तू गए बों पॉफेंस जुरी, बिरयानी, पुलाव, किसा बों जुरी लासा?
2: अरे बेटी, मोपे सेवी जुरी इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस, सेट एन जुरी 11-21, एक्स्ट्रा लॉन्ग की पा कासे, सुरनमा एक्स्ट्रा बों, ली एन नाचुरली एज्ड राइस, पाबिजे जे तो, सो पॉफेला, देपी दां बूट चमे जी मोन विन देमन मोआ, की जुरी सा? बेटी, वो ला पेन टोल रोड लिसा, इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस।
1: Merci Chachi. Moi aussi m'a poussé à vie. J'aurai India Gate XL Basmati Rice.
3: RM2
4: Radio Musti.

0: कौन? RM2
1: रेडियो मस्ती हाउसहोल्ड एंड डेकोरेशन टिप्स ब्रॉट टू यू बाय लोलो हाइपरमार्केट।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 11:40 हो चुके हैं दोस्तों, और आपको बस बहुत ही छोटा सा प्यारा सा डेकोरेशन के लिए हम एक टिप देने वाले हैं। अगर आज आपको इस सैटरडे संडे को बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, या आपको लगता है कि घर थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है और उसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो लगे ओरिजिनल भी और थोड़ा सा कुछ टाइम चल सके, जैसे कि फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, तो आपको क्या करना है, मार्केट जाना है, ग्लिटर ग्लू लेकर आना है, यानी कि वो उसमें ऑलरेडी ग्लू के अंदर ग्लिटर्स होते हैं, आपको कुछ ओरिजिनल जो लीव्स होते हैं उसको कलेक्ट करना है, कोई पत्तियां होती हैं या कोई ऐसा फूल होता है जिसका बड़ा सा कोई पत्ता होता है, उसके ऊपर वो ग्लिटर ग्लू लगा देना है। बहुत पतली पतली कोटिंग नहीं लगानी है, थोड़ी सी थिक लगानी है और उसे ड्राई होने देना है।

0: कितना वो ड्राई होगा, आप बच्चों के साथ इंजॉय भी कर पाएंगे, और वो ड्राई जब होगा और वो धीरे धीरे से जब कम्प्लीटली 4-5 घंटे बाद वो ड्राई हो जाएंगे, फिर आपको उन पत्तियों से वो ग्लिटर ग्लू को उतार देना है, और जब वो आप देखेंगे वो इतनी सुंदर ऐसे लगेंगे जैसे ओरिजिनल है। और फिर एक अच्छा सा फूल डाल लीजिए, उसके ऊपर हल्की हल्की सी बाहर से टूटी हुई डंडी, सूखी डंडियाँ उतार लीजिए, और उसके ऊपर वो हल्की हल्की सी किसी टेप से उन पत्तियों को, उन फूलों को चिपका दीजिए। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, और मुझे पता है कि ये एक्टिविटी भी हो जाएगी, साथ में बच्चों का भी एक एंटरटेनमेंट होगा, और आपको भी कुछ अच्छा सा करने को मिलेगा। तो ये है फैमिली टिप, और हम तो आपको यही बोलते हैं, हमेशा खुश रहिए, बच्चों के साथ हो, परिवार का ये साथ हो या अपने साथ हो, इंजॉय कीजिए गाने।
1: Pour le 17e anniversaire, du lait liquide Formalate Ever Fresh 1 litre à 57 roupies 75. Rosanna Greenpeace 400 grammes de l'Italie à 19 roupies 60. Elsève, shampoing et après shampoing, 10, 189 roupies 50.

चलते चलते बस इतना ही कहूंगी, आज का भी बाकी दिन भर को हंसते मुस्कुराते बिताइएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, अब मुझे दीजिए इजाजत, मेरे बाद आपको साथ मिलेगा नीतू का रेट्रो रिदम में। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना दीवानिया।

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप समाचार आस्था से आस्था आपको नमस्कार
1: नमस्कार 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट की जांच के सिलसिले में मूवमेंट पैट्रियट मॉरिसन के नेता अलन गानू से मंगलवार को एफसीसी ने अंडर वार्निंग पूछताछ की है अलन गानू ने कहा कि जिन दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी इसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध नहीं था मॉरिशस में एसएमईज को बढ़ावा देने के लिए सरकार नया कानूनी ढांचा तैयार कर रही है लगभग 10 साल पुराना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट अब बदला जाएगा ताकि उद्योगों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों से राहत मिल सके बात करते हैं अब शिक्षा के बारे में युवाओं को ड्रग्स के खतरे से बचाने के लिए सरकार अगले महीने से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है अगस्त से देश के 25 कॉलेजों में ग्रेड 10 के छात्रों के लिए रिबॉन प्रोग्राम की शुरुआत पायलट परियोजना के रूप में की जाएगी इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना नशे से दूर रहने के लिए जागरूक भी उन्हें बनाना है आज से पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ हो गया है आर्य समाज के लिए ये महीना केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि वैदिक जीवन शैली आत्मानुशासन यज्ञ स्वाध्याय और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का प्रतीक है इस पूरे मास में आर्य समाज के विभिन्न केंद्रों में शाखाओं में वैदिक यज्ञ वेद मंत्रों का पाठ सत्संग और सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आज इसी संबंध में जेवी पोटवी में यज्ञ का आयोजन किया गया सनातन धर्म में इस मास का बेहद महत्व है भगवान शिव को समर्पित ये महीना श्रद्धा भक्ति संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है इस पूरे मास में श्रद्धालु व्रत रखते हैं शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और रुद्राभिषेक भी करते हैं तथा ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं विदेश की खबरों में यूरोप के कई देशों में जंगल की आग का संकट बना हुआ है ग्रीस पर आग बुझाने के अभियान के दौरान दो दमकल कर्मियों की मौत हो गई जबकि तेज हवाओं के कारण कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर रॉयल रोड मोंसेनमों सेंट एंड्रे लुलु सुपरमार्केट के पास 82 years old के चितबहाल रामसोहक चितबहाल रामसोहक की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें हरिदत्त के नाम से ज़्यादा जानते थे और वे पहले एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से काम कर चुके हैं उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी पत्नी माया देवी रामसोहक के मकान रॉयल रोड मोंसेनमों सेंट एंड्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन Tomorrow at 10 a.m. Monseigneur VRS Lalmatime, 59 years old, ki 59 saal ki Purnima Bullock ki mrityu ho gayi hai. Paidaish naam nakche di, log unhe Maya ke naam se adhik jante the. Unke arthi kal subah ke 9:30 baje, unke pati Bhujidev Bullock ke makan मुसलमान वीआरएस लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंचुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
2: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन विश्वनाथ मंदिर महिला समाज सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन साथ ही आप इस

0: को टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: रेट्रो रिदम।
1: देखिए भाई, ऐसे गाने सुनकर ना, ऐसे गाने आप तक पहुंचाते हो, हमारा तो दिल भरता नहीं है, कभी भी नहीं। और कितनी भी उम्र हो जाए, ये गाने आज भी उतने ही फ्रेश है। 50 साल 60 साल हो गए हैं, लेकिन दो सॉन्ग्स आज भी उतने ही फ्रेश हैं। इसीलिए तो उनको कहते हैं एवरग्रीन सदाबहार गाने। विशिंग यू ऑल अ लवली आफ्टरनून। दिन के 12:10

कैसे हैं माय डियर डियर फ्रेंड्स लिसनर्स, नीतू का प्यार भरा प्रणाम स्वीकार करें। रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है एंड बस ऐसे ही साथ निभाने के लिए एकदम तैयार हो सुहाने सफर पर जाने के लिए उन यादगार गलियों में। सो 5499-1294 पर 7799-29 कार पर ऑलरेडी तो मैसेजेस के साथ साथ आपकी रिक्वेस्ट भी आ रही है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, कीप ऑन सेंडिंग मी ऑन 7799-29 कार।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

हमारे हम सफर बनने के लिए रेली होप गाने आपको पसंद आ रहे हैं, अपनी भी कोई पसंद होगी, देन 5499-1294-799-299-4 पर नहीं तो आपके साथ। वैसे फी गीतांजलि त्रियोले से आवारा वाला गाना अच्छा लगा आपको, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं, द वॉइसेस ऑफ किशोर कुमार एंड ऑफकोर्स लता जी, ये है त्रिशूल। चलिए ये गाना आप सबके नाम चलाते हैं। हे अनिशा, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर, एंड आज आप 18 इयर्स के हुए हैं। सो तनवीर, तेजल, रायना, रायन, अनिष्ठा, तरश, वानिशा, वर्षा, पुफा है, बिनेश, नवीन, दादी कमला एंड गंगा बिसुन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स टू यू। प्यारी सी ज्योति आज विजुअल फ्रॉम शातो बिनागस, आपके नाम आशनी, रेखा, सुरेखा एंड माधव फैमिली एंड हमारे लिए थैंक यू सो मच। एंड आई नो इस वक्त काफ़ी लोग जो है बाजार में होंगे, लंच टाइम है, बाय द वे बोन अपेटी, शुभ आहार, एंड कई लोग जो है बस में सफ़र करते हुए गानों का मजा लेते हैं। सो बिग हाई, नमस्ते टू यू ऑल। बस अगर हो सके एक छोटा सा मैसेज ड्राइवर को नहीं बोल रही हूँ, ड्राइवर आप सुनते चलो, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं कोई गाना अगर आपको भी सुनना है, अपने सफ़र को खूबसूरत यादगार बनाना है, तो नीतू आपके साथ ऑन 99.99 दूस 99.99।

0: करती हो।
1: ये गानों का कमाल है भाई।
2: जाने मन तुम कमाल करते हो।
0: मैंने कहा जाने मन तुम कमाल।
3: रेट्रो रिदम RM2

0: रेट्रो रिदम।
1: देवानंद साहब के फैंस तो बड़े ही खुश हो गए हैं धनी साहब फ्रॉम बॉशरी, और इन गानों में से आपको भी बहुत अच्छे लगे, बहुत धन्यवाद। 12:33 हो रहे हैं, नहीं 35 मिनट, नहीं तो क्या कर रही हो। चलिए इस गीत की फरमाइश आपकी थी विश्वानी धुमन फ्रॉम वाकवा, इंदिरा, शारदा, नीला, प्रतिभा, शोभा मानी की आपकी बहनें और सहेलियों के नाम। सो बस 5499-1294 पर ये था लवली ट्रैक फ्रॉम द मूवी तेरे घर के सामने, 1963 की मूवी जिसमें देवानंद नजर आए थे, एंड ऑफ कोर्स नूतन और एस डी बर्मन का संगीत आज भी उतना ही फ्रेश लगता है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप जना? शिवसरन परिवार फ्लाक से, और सूरज शर्मा सजादा भाई प्रणाम आपको, पूरे परिवार फ्रॉम थ्रियोले। लेट मी विश हैप्पी बर्थडे टू प्यारी से मिष्टी, और आप प्रिंसेस 4 साल की हुई हैं। सो चाचू बेबी, चाची है प्रीति, आपकी कजन सिस्टर्स हर्षिनी और काव्या की तरफ से, सब परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए प्यार बांटते चले।
2: दिल

0: बढ़िया गाना, आप जैसे लवली लवली पीपल और क्या चाहिए भाई। 5499-1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: Poulele, ce 17e anniversaire. Du lait liquide, fort malade, Eve fraîche 1 litre à 57 roupies 75. Rosanna, Greenpeace 400 grammes, de l'Italie à 19 roupies 60. Elsève, shampoing et après shampoing, 10, 189 roupies 50.

बस अपनी कश्तियों को संभालिए, उनको पार करा दीजिए, डूबेंगे नहीं। 12:51 कैसी है मी वीना संभू कैथोबोन से, ये गाना आपके नाम एंड टू ऑल द फैंस ऑफ किशोर कुमार एंड ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन।

क्या गाना है किशोर कुमार का गाया हुआ है, मंजिलें अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह। वैसे हर कोई तो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चला जा रहा है और रास्ते तो अलग अलग से मिल जाते हैं। कौन सा आपके लिए सही है वो आप चुनाव करें। 5499294 पर 12:56 ऑलरेडी, अरे बाप रे बाप, पर माने कि 1 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। एंड नेक्स्ट जो गाना है डेफिनेटली आपके लिए चलाते हैं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। अभी भी आप पढ़ते हो, आई डोंट नो, लेकिन रफी साहब का गाया हुआ संगम फिल्म का ये गाना आपके नाम विद्या जी, आप हो पिछित खुदखत से पूरे परिवार के नाम। अब्दुल अंसारा बानू, हेलो जी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आपको देव एंड रेखा। आप रहते हैं बॉबू और धनेश्वर जी, दाविदुस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं समाचारों के उस पार।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Ek baja hai. संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे गीता नमस्कार आपको
5: नमस्कार नितुषा सभी को हमारा नमस्कार छोटे और मध्यम उद्योगों को नई रफ्तार देने के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है करीब 10 साल से बिना किसी बड़े बदलाव के लागू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट में अब व्यापक संशोधन किए जाएंगे उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य उन प्रशासनिक अड़चनों को दूर करना है जिन

0: का सामना मॉरिशस के ठेकेदारों को रोजमर्रा के कामकाज में करना पड़ता है। मंगलवार को संसद में एक प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री आदिल अमियामिया ने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों में बदलाव करना बहुत ही जरूरी हो गया है। कॉमनवेल्थ खेलों में एथलेटिक्स में राशेल क्लॉपफेनस्टाइन ने कल शाम शानदार प्रदर्शन किया। वे 800 मीटर दौड़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया है। ये फाइनल इस शुक्रवार शाम खेला जाएगा। पारा एथलेटिक्स में 1500 मीटर T54 के फाइनल में मॉरिशस की नोएमी अल्फोंस गिर गई। रेस के दौरान कनाडा की खिलाड़ी से टक्कर लगने के कारण वे ट्रैक पर गिर पड़ी। इसके बाद मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। मामले की समीक्षा के बाद जजों ने कनाडा की खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया और दौड़ दोबारा कराने का फैसला लिया। आज से श्रावण मास शुरू हो रहा है। आज का पहला दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जा रहा है। इस पूरे महीने के दौरान भक्त पूजा पाठ यज्ञ हवन का आयोजन करते हैं। श्रावण मास हमें प्रकृति आस्था और भारतीय परंपराओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। और विदेशी खबरों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भारी हमला किया है। इस हमले में कई इलाकों में जोरदार विस्फोट हुए और बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। कीव की विभिन्न हिस्सों में मिसाइल हमले के बाद आग लगने की खबरें भी आ रही हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहले ही इसकी आशंका जताई थी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। थोबिश होद थ्रियोले में 73 साल के 73-year-old के श्री मुईशंकर अभिलक, जो ज्ञान से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी सरिता अभिलक के घर थोबिश होद थ्रियोले से उठाकर त्यामिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास, 2 घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
3: महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।
4: रेट्रो रिदम
5: RM2 रेडियो मस्ती।

दीवाने तो है वो तो हमने भी माना लेकिन दीवाने कैसे झूठे हो सकते हैं दैट्स नॉट ट्रू किशोर कुमार की आवाज दैट वाज शरीफ बदमाश ओ शरीफ बदमाश ओके अब समझ पाई हूँ थैंक यू सो मच 1:08 वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती और 2 बजे तक आपकी नीतू आपके साथ विद योर मैसेजेस विद योर रिक्वेस्ट एंड ऑफ कोर्स आपके लिए डेडिकेशंस मिस्टर बाबू अनतवा बासा कैथोबोन से पूरे परिवार के नाम हेलो रोशनी कैसी है माय डियर ये है अखियों के झरोकों से फिल्म से लिया गया वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स एन्जॉय और नयाज आज आप 65 ईयर्स की हो गई हैं शाम एंड फैमिली की तरफ से फ्रॉम प्रेंदी पापाई ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भेज रहे हैं

0: Natural Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: आप ही हो, बस आप ही हो हमारे हम सफर 1:13. थैंक यू सो मच. लवली सॉन्ग्स, कुछ 90s के, कुछ एवरग्रीन 60s 70s 80s के ऑन 5499 1294. उदित नारायण, साधना सरगम. चलिए ये है बाजी, दिल की बाजी आप तक पहुंचा रही है. थैंक यू सो मच.

रेट्रो रिदम, बहुत ही खूबसूरत और सोलफुल गाना रफ्तार फिल्म से लिया गया। 1975 की मूवी जिसमें विनोद मेहरा नज़र आए थे, ऑफ कोर्स उसमें मौसमी चटर्जी, यस, और डैनी मदनपुरी, रंजीत, ये सब नज़र आए थे और सोनिक ओमी का संगीत रहा। थैंक यू सो मच। इस गीत की फरमाइश सात समुंदर पार से आए थे, ऑफ कोर्स आपके नाम मिस्टर राजन देवी, जो गर्मी के मारे अरे बाबा सह नहीं जा रहा है यूरोप में, यस, तो थोड़ा सा आप राहत पा सकते हैं नसर बहार एवरग्रीन के सॉन्ग्स के साथ ऑन रेडियो मस्टी। आप हो फ्रॉम मिलान इटली एंड आप कहते हैं कि प्लीज अगला गाना जो है, बस यही गाना जो था, देविका के नाम एंड रामेश भुजावन ऑफ बेबर्ग, भाई देवानंद देवी एंड फैमिली फ्रॉम ग्लेन पार्क। नेक्स्ट गाना आपके नाम कल्याणी कौतूहल से है, आपके दोस्त आपके पूरे परिवार के लिए, एंड नेक्स्ट गाना आपके नाम भी चलाते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, मेरे ग्रुप बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट भी है। यलेश शाम फैमिली सुरीनाम से कैसे हैं, ठीक ठाक। नेक्स्ट गाना आपके नाम भी चलाते हैं, एंड यहाँ पर है कौन, हेलो जी नीतू नमस्कार, ऑफ कोर्स कल है 31st और बरसी है द ग्रेट महान सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब की, तो डेफिनेटली स्पेशल प्रोग्राम तो होगा 12 से 2 के बीच, उनके गाने आप पूरे दिन सुनते रहेंगे, तो साथ निभाते रहिएगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पर है कौन, नमस्ते नीतू, नमस्ते हैं चाचा धीरज के नाम, चाची सुभाषिनी दिवीज कासिदोस फैमिली फ्रॉम वाकवा, आप जमीर वाला गाना सुनना चाहते हैं, तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए ना।

0: रेट्रो रिदम।
1: ऐसा लग रहा है कहीं झूल रही है, गानों के साथ झूल रही है, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। एंड अगला गाना किन के नाम? वेल नीतू, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड बाबा, थैंक यू सो मच। गाना मेरे पति लालदेव के नाम, बेटा विक्की, बहु कीर्ति, बेटी है श्वेता, दामाद बाबू रोशन, हुकुम, ग्रांड चिल्ड्रन है चार, रिधि, सोनाक्षी, अवनी एंड क्यूट वंश, सुया बिहारी आप हो फ्रॉम कोंगमा, और मौसम बड़ा सुहाना है। अच्छा जी, चलिए मैं कोशिश करती हूँ, इतने सारे रिक्वेस्ट हैं यहाँ पर। एंड शमशाद बेगम बंधु, आप कह रहे हैं कि गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, एंड तकदीर फिल्म का कौन सा गाना अभी तो एक चलाया, आकाश में बैठा, व्हाट ए लवली गाना। मैं कोशिश करूंगी, एंड अगर आज ना हो पाए तो डेफिनेटली कल तो मुलाकात होगी, यानी कि हम होंगे आप प्लेन मानियो, जहां पर सुहाना सफर होगा 12 से 2 के बीच, एंड रेडियो मनोरंजन पर आप सुन पाएंगे, टिकटॉक पर भी। तो जब हम आएंगे

0: देखो तो डेफिनेटली आपके लिए बंधु परिवार फ्रॉम थ्रियोली ओके. गुड आफ्टरनून, हाय नीतू, फ्रेंड्स हैं मगाजे में इस वक्त, आप हैं शॉप में, पामेला और देविका हैं आप पीतों से. गाने बड़े मस्त लग रहे हैं, तो आप काम करते करते बो को आज आपको विश्क तो कर दूं, एंड एंजॉय कीजिएगा.
1: कहा आपका ये
0: वजह है, बहाना ही सही. और साथ निभाते हुए ऑल द वे फ्रॉम डेनमार्क, 30 degrees, उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी. आप है कौन मिस्टर राजीव, आपके फैमिलीज फ्रेंड्स एंड ग्रेट फैन ऑफ राजेश खन्ना साहब, तो बस ये गाना आपके लिए एंड टू द फैंस.
1: बेकार

लवली सूदिंग दिल को छो लेने वाला नगमा कुमार सानू एंड ऑफकोर्स सरका याग्निक की आवाजों में. फिल्म का नाम पूछ रहे थे आप, बड़ा दिन. ये बड़ा दिन फिल्म का गाना है. एंड थैंक यू सो मच माला जी फ्रॉम NHDCP टू आपके नाम पूरे परिवार के लिए. 1:47 हुए हैं. जिंदगी खूबसूरत है ये तो आप ही मानोगे, लेकिन इसको खूबसूरत हम बनाते हैं, है ना. लीना बादशाह कैसे है सुगी नाम से. जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कि हमने कहा अभी टाइम बहुत कम है लेकिन रिक्वेस्ट बहुत सारी. जब भी मौका मिलेगा डेफिनेटली आपको तो नहीं भूलेंगे. लवली वेदर लवली शो. थैंक यू सो मच अपाजू फैमिली फ्रॉम वोशनवा.

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बस अपनी जिंदगी को अपनों के साथ खूबसूरत बनाते चले। प्यार चाहिए तो प्यार बांटना सीखे। हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी आपको सुनीता एंड राजेश आपके बच्चों की तरफ से, जी आश्रीषा, सभी आसगादू परिवार, जीवन एंड सीता परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं एंड मामा उषा और आपके सभी बड़ों की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। जोड़ी सलामत रहे आपकी और आशीर्वाद।

आपके सीपीआर को लेकर हम चले जा रहे हैं 155. थैंक यू सो मच, बड़े प्यार से आपने साथ निभाया. मुलाकात होगी कल, जैसे कि हमने कहा, रेडियो मनोरंजन पर 12 से 2 के बीच. इन सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ आज प्लान माना जो कम्युनिटी सेंटर है वहां पर मुलाकात होगी. तब तक आप स्टे वेल ट्यून्ड एंड ये अंतिम गाना छोड़े जाते हैं आपके लिए. ललित एंड जीतन फैमिली साथ में है. आज करण और शिक्षाना अपनी शादी की 9वीं सालगिरह मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है. सो मोहताबा से आपके जितने भी डियर वंस एंड रेडियो मस्ती परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार. परी थोड़ी देर में आ रही है. इन बॉम्बे टॉकीज़. बाय बाय.

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check exactly 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं गीता जी. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी को हमारा नमस्कार. कॉमनवेल्थ खेलों में एथलेटिक्स में राशेल क्लब फेंस्टाइन ने कल शाम शानदार प्रदर्शन किया. वे 800 मीटर दौड़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं. ये फाइनल इस शुक्रवार को शाम खेला जाएगा. पैरा एथलेटिक्स में 1500 मीटर T54 के फाइनल में मॉरिशस की नोएमी अल्फोंस गिर गई. रेस के दौरान कनाडा की खिलाड़ी से टक्कर लगने के कारण वे ट्रैक पर गिर पड़ी. इसके बाद मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया की ओर से विरोध दर्ज कराया गया. मामले की समीक्षा के बाद जजों ने कनाडा की खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया और दौड़ दोबारा कराने का फैसला लिया. आज से श्रावण मास शुरू हो रहा है. आज का पहला दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. इस पूरे महीने के दौरान भक्त पूजा पाठ यज्ञ हवन का आयोजन करेंगे. श्रावण मास हमें प्रकृति, आस्था और भारतीय परंपराओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है.

0: और विदेशी खबरों में अर्जेंटीना के पश्चिमी प्रांत में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है। ये हेलीकॉप्टर जंगलों की आग बुझाने के अभियान में शामिल था। अभी तक हेलीकॉप्टर हादसे का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ देर में शोक समाचार। पाल्मिस्ट्रोड न्यूग्रोव में 77 साल की 77-year-old की श्रीमती धनवती रामदेनी पैदाश नाम कालीचरण और जुनानी नीता से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहरबाद के 3:30 बजे उनके घर पाल्मिस्ट्रोड न्यूग्रोव से उठाकर रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। थोबिश रोड थ्रियोली में 73 साल के 73-year-old के श्री मुईशंकर अभिलक जो ज्ञान से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी सरिता अभिलक के घर थोबिश रोड थ्रियोली से उठाकर तेमिनिस थ्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। 2 घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
3: आओ महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।
4: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
5: आज आजादी है।
6: बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती।
7: रेडियो मस्ती।

बस कल आखिरी दिन और उसके बाद अगस्त का हम वेलकम करने वाले हैं. एंड लाइक वी से के लाइफ में सब कुछ रुक सकता है, लेकिन एक चीज जो नहीं रुकती वो है टाइम, वो है वक्त. वक्त जो निकल जाता है हाथों से वो दोबारा लौट कर नहीं आता. और तभी तो हम हमेशा कहते हैं कि हर एक दिन हर एक पल को खास बनाइए, बिकॉज ये वक्त लौट कर कहाँ आएगा. आज का ये जो दिन है यानी कि 30th of July 2026 थर्सडे का ये दिन लाइफ में दोबारा कभी नहीं आने वाला है. सो बस देखिए कि आप इस दिन को कैसे खास मेमोरेबल बना सकते हैं, बी इट विद योर लव्ड वंस, बी इट विद योर फ्रेंड्स, बी इट विद दोज जो शायद आपके दिल में बहुत कहीं करीब से छुपे हुए हैं. एंड जैसे हमारे लिसनर्स हैं, आप तो हमारे सबसे खास हैं और यही कोशिश रहती है कि एवरी डे हम आपकी लाइफ को थोड़ा सा हैप्पी, थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएं. बिकॉज रेडियो के जरिए आपसे एक कनेक्शन बनता है जहां पर आप और हम मिल तो नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी एक रिश्ता जरूर बनता है. सो वेल फ्रेंड्स, मैं हूं परी आपके साथ. लंबी चौड़ी बातों के बाद शॉर्ट में आपको बता दूं कि लेकर आई हूं आपके लिए बी टाउन की खबरें, यानी कि इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. खबरों को आप तक पहुंचाएंगे और साथ में कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स भी लेकर आए हैं. एंड होने वाला है एक खास गेम आपके लिए जहां पर आप जीत सकते हैं इनाम. सो कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर. Radio Mastic.

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: So well, ladies and gentlemen, it's question time. वादा किया था कि एक गेम लेकर आएंगे जहां पर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम. So खेलिए आप MBC और राजस्थान वर्क्स के साथ और जीत सकते हैं exciting prizes. Stand a chance to win 4 entry tickets and 1 food coupon for Jen's Little India Shahi Thali. ये आप enjoy कर सकते हैं at Utsav India Mauritius Shopping Carnival powered by SBI and LIC. 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2026 तक at SBICC Pies बदर से लेकर रात के 9 बजे तक. सो वेल, आपके लिए सवाल वेरी सिंपल. सिंपल क्वेश्चंस इसीलिए पूछते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए और सही जवाब देकर ये इनाम अपने नाम कर पाए. लेकिन होने वाला है लकी ड्रॉ और विनर तो कोई एक ही होगा. सो आपके लिए सवाल ये है दैट बॉलीवुड में बहुत सारे खिताब दिए जाते हैं एक्टर्स को. सो वो कौन सा एक्टर है जिसे हम खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड बुलाते हैं? कौन से वो एक्टर है जिनको मिला है खिताब ऑफ खिलाड़ी कुमार? आपके सही जवाब 5499-1294 पर 5499-1294 पर अपने पूरे नाम और पते के साथ. वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स. ऑल द बेस्ट.
1: RM2

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सवाल यहां पर आपके लिए एक सवाल था और आपसे पूछा गया था कि कौन जाना जाता है एज खिलाड़ी कुमार ऑफ बॉलीवुड एंड द राइट आंसर इज अक्षय कुमार उन्हीं को मिला है ये खिताब ऑफ खिलाड़ी कुमार और वेल यहां पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब एंड लकी ड्रॉ के बाद वी आल्सो गॉट अ लकी विनर सो लकी ड्रॉ के बाद जो लकी नाम सामने आया है आप हैं नीमन देवानंद ऑफ ब्रांच रोड खुशनुमा कांग्रेचुलेशंस तो चलिए यहाँ पर आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब खेला आपने एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ और जीती है 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक 2026 एट एसवीआईसीसी पार्क सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स वहां पर आपके लिए बहुत कुछ खास होने वाला है इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल साथ ही होने वाला है इंटरनेशनल होम शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट शोज होंगे मैजिक शोज फैशन शो लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर साथ में होने वाला है कैनमा का शो ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल एज वेल सो आपके लिए बहुत कुछ खास 12 से लेकर 16 अगस्त तक एट SVICC पाए एंड लेट मी टेल यू ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड सो हमारे जो विनर है नीमन देवानंद आप एंजॉय कर सकते हैं इस शॉपिंग एक्सपीरियंस को और साथ में जाकर एंजॉय कर सकते हैं एक शाही थाली एज वेल फॉर एंट्री टिकट्स भी आपको मिल गई है सो परिवार के साथ जाकर यू कैन एंजॉय क्वालिटी टाइम लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार 12 अगस्त तक का और उसके बाद 4 डेज ऑफ फुल ऑन एंटरटेनमेंट सो वेल फ्रेंड्स जीतने के मौके आपको और भी मिलेंगे ऑल यू हैव टू डू इज सिंपल सी चीज करनी है दैट स्टे कनेक्टेड हम टू रेडियो मस्ती के साथ फॉर नाउ लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक अलॉट कराएंगे विद सम मोर म्यूजिक एंड सम मोर बॉलीवुड अपडेट्स
0: RM2
1: Radio Musty
3: Allons chez Lolo
4: Pour Lolo, ce 17e anniversaire du lait Omega 1 kg acheté 10 sachets, gain un spaghetti en cadeau pour 399 roupies Saucisse, qu'est-ce qu'une glu 340 grammes, 37 roupies 95 Tweet, ice cream, 1.8 litres

0: Sponsor de l'hiver, Calido, Côte Ganga Textile Limited, Carolanyan, Varkwa. Depuis les 30 îles, Cali Déout, profite sa grande promotion 50% là dans tout ce bon magasin. Calido, un mot qui tout dit monde content.
1: RM2
2: Radio Musty.
3: Destiny.
4: सोवेल हमारे जो बिना है आपको याद दिला दिए आपको आना होगा एमबीसी अपने आईडी के साथ टू कलेक्ट योर गिफ्ट टू कलेक्ट योर इनाम सो मंडे टू फ्राइडे आप यहां पर आ सकते हैं सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून 3 पीएम तक सो रहेगा आपका इंतजार चलिए आपको वंस अगेन कहेंगे कांग्रेचुलेशंस एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्ती ये है आपका अपना बॉम्बे टॉक

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स बता दें इस दिवाली पर फिल्म रामायण बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। फिल्म को लेकर उत्साह दर्शकों के बीच बना रहे इसलिए मेकर्स ने आज इसका ट्रेलर रिलीज किया। ट्रेलर दर्शकों को बहुत पसंद किया। यस ट्रेलर को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। रणबीर कपूर के फैंस का दिल जो है वो इस ट्रेलर ने जीत लिया और हिंदी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में रिलीज हुए इस ट्रेलर को कितने व्यूज यूट्यूब पर मिले हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सो फिल्म रामायण हिंदी के अलावा कन्नड़ तेलुगु तमिल और मलयालम में रिलीज होगी। ऐसे में इसके ट्रेलर को भी स्थानीय दक्षिण भारतीय भाषाओं में रिलीज किया गया है और यहाँ आपको बताएंगे कि ट्रेलर ने 10 घंटे में कितने व्यूज किस भाषा में कमाए हैं। सो रामायण के हिंदी ट्रेलर को 1.4 करोड़ व्यूज मिले हैं यानी कि 1.4 करोड़ व्यूज इन 10 आवर्स। मलयालम भाषा में जो रिलीज किया गया ट्रेलर है उसे 2,60,000 व्यूज मिले हैं। वहीं तेलुगु भाषा में रिलीज हुए इसके ट्रेलर को 26 लाख व्यूज मिले हैं। रामायण के तमिल वर्जन वाले ट्रेलर को 11 लाख व्यूज मिले हैं और आखिर में कन्नड़ भाषा में रिलीज हुए इस ट्रेलर की बात करें तो इसे 17 लाख व्यूज मिले हैं। लेकिन यहां पर रिकॉर्ड तोड़ा है हिंदी ट्रेलर ने 1.4 करोड़ व्यूज यानी कि 1.4 करोड़ व्यूज वो भी महज 10 घंटे में। सो ये तो हम जानते हैं कि लोगों में कितनी बेसब्री है इस फिल्म को लेकर और दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज होने जा रही है। ट्रेलर जो है वो आज रिलीज कर दिया गया है और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो स्पाइडरमैन फिल्म रिलीज हुई है तो थिएटर में जब ये फिल्म दिखाई जाएगी तो इसके साथ ये जो ट्रेलर है रामायण का इसे भी अटैच किया जाएगा। सो इफ यू आर गोइंग टू वॉच स्पाइडरमैन आप थिएटर्स में देख पाएंगे रामायण के इस ट्रेलर को भी। सो अभी के लिए तो हैप्पी हैप्पी न्यूज है फॉर ऑल रणबीर कपूर फैंस और फॉर ऑल द रामायण फैंस। जिसे देखने के लिए वो है बेसब्र करना होगा इंतजार तिर दिवाली लेकिन ट्रेलर हो चुका है रिलीज आज ही के दिन। सो वेल फ्रेंड्स अभी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रामायण के बाद आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड खबरों के साथ साथ लेटेस्ट बॉलीवुड ट्रैक्स आपके लिए बी इट इंडी पॉप या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स मूवी के गाने सब कुछ होने वाला है आपके लिए अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक। मैं हूं परी आपके साथ। दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के ही पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

And for now, ये गाना हम डेडिकेट करेंगे टू डियरेस्ट मिश्टी रघुनंदन ऑफ मोंटाई ब्लॉन्च. आज 4 साल की हुई है. बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम चाचू बेबी. साथ में है चाची प्रीति, सिस्टर कजिन्स हर्षिनी एंड काव्या और रघुनंदन परिवार ऑफ कोंचे. उनके लिए लेकर आया है प्यार एंड स्पेशल विशेस. सो मिश्टी, हैप्पी वाला बर्थडे आपको ऑन योर स्पेशल स्पेशल डे स्वीट हार्ट. इट्स योर स्पेशल डे, सो ये गाना हम आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं. एंड वी ऑल्सो हैव डेविसन फ्रॉम लाल माटी हमारा साथ दे रहे हैं आप. सो वार्म वेलकम आपका ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. साथ दे रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स. आपको याद दिला दिए मैसेजेस डेडिकेशंस 54991294 पर. एंड यहां पर वी आल्सो हैव स्पेशल विश फॉर आयशा गंगा बिसन. अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. बेस्ट विशेस लेकर आए हैं दादा दादी पूपू पूपा भाई तनवीर तेजल रायना रायन ममा अनिष्ठा पापा तर्श एंड सभी फैमिली ऑफ कटरबोन जो उन्हें विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. सो वेरी गुड विशेस एंड ये ब्यूटीफुल गाना आप सभी के नाम परी का साथ है. एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज. चलिए मूड को सेट करने के लिए वी हैव दिस गाना for all the beautiful girls, for all the pretty ladies. Enjoy this one.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं गीता जी, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम ने अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने आज एनहांस स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देना है। इनमें डिजिटल परिवर्तन, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इस सहयोग को और तेज करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर मॉरिशस यूनाइटेड किंगडम बिजनेस फोरम स्थापित करने की भी योजना है। ड्रग्स के खिलाफ मिलकर लड़ें, यही संदेश इस सप्ताह नोवेल फ्रांस की सड़कों पर गूंजा। ताइक्वांडो जांग ने मॉरिशस ताइक्वांडो फेडरेशन के सहयोग से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इसमें युवाओं, अभिभावकों और इलाके की कई संस्थाओं ने भाग लेकर नशे के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। इस पहल ने ये भी दिखाया कि ताइक्वांडो केवल आत्मरक्षा की कला नहीं है, बल्कि ये मानसिक शक्ति को भी मजबूत करता है और युवाओं को उनके आसपास मौजूद नशे जैसे खतरों के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज से श्रावण मास शुरू हो रहा है। आज का पहला दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने के दौरान भक्त मंदिरों में शिव अभिषेक करते हैं और शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। श्रावण मास के दौरान वेदों की शिक्षाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। आर्य सभा की शाखाओं में यज्ञ हवन का आयोजन किया जाता है और वेदों पर प्रवचन किए जाते हैं। विदेशी खबरों में अमेरिकी सेना ने ईरान पर भारी हमले किए हैं। मंगलवार को अमेरिकी

0: की ताकतों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमले के जवाब में ये हमले किए गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों को दुनिया के लिए कैंसर बताया और कहा कि अमेरिका उन पर दबाव बनाए रखेगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। पाल्मिस्ट रोड न्यूग्रोव में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड की श्रीमती धनवती रामदेनी पैदाइश नाम कालीचरण और जूनानी नीता से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज प्रभात के 3:30 बजे उनके घर पाल्मिस्ट रोड न्यूग्रोव से उठाकर रूजवेल्ट की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। 2 घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
2: आओ महफिल महफिल ऐ शमा, फिरती हो कहां।
3: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
4: आज आजादी है।
5: बॉम्बे टॉकीज़, रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musti.
1: सुहेल लावी के लिए तो हमारे सभी लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं 3:13 हो गए हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। वेल आपका हम स्वागत कर रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती, जहां पर लेकर आए हैं आपके लिए गुड गुड म्यूजिक, कुछ इंडी पॉप, कुछ बॉलीवुड सॉन्ग, सब कुछ होने वाला है अभी से लेकर 4 बजे तक। एंड ऑफकोर्स द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन 5499-1294। सभी के लिए जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, मनीष शर्मा की आवाज़ एंड वी हैव दिस गाना आप सभी के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल इंडी पॉप एंड डेडिकेटिंग दिस वन फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज जो हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए आपके मूड को सेट कर रहे हैं गुड म्यूजिक के साथ और आप भी जुड़े हुए हैं, सो बता दें आपको परी का साथ है till 4 PM, messages, dedications 5499-1294 पर।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: से 3:23 बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। इन दिनों राघव जुयाल फिल्म भाई तेरा स्टार है की वजह से चर्चाओं में है और वहीं शहनाज गिल भी पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों में काफी एक्टिव है। इन दिनों कलाकारों के बीच इश्क पनप रहा है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, यानी कि खबरें जो है वो उड़ रही है कि दोनों डेट कर रहे हैं। हाल ही में अपने रिश्ते को लेकर शहनाज गिल ने खुलकर बात की और यहाँ पर एक पॉडकास्ट में शहनाज गिल ने अपने करियर और जिंदगी को लेकर कई बातें शेयर की। इस दौरान जब उनसे राघव जुयाल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मुंबई में मेरा एक ही सहारा है और वो है राघव। वो मुंबई में मेरे लिए मम्मी पापा की तरह है और अगर मुझे कुछ हो जाता है वो मुझे हॉस्पिटल तक लेकर जाता है। और शहनाज ने आगे कहा कि राघव ने ही मुझे एक्टिंग लाइन में आगे जाने के लिए मोटिवेट किया और साथ ही उनका कहना है कि राघव एक दिन शाहरुख खान से भी ज्यादा पॉपुलर होंगे, ये मानना है शहनाज गिल का। अब गुड फ्रेंड्स है तो फ्रेंड के लिए अच्छी सोच रखना ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड अभी के लिए तो खबरें आ रही है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर दोनों पार्टी से एक साथ बाहर निकलते हुए नजर आए और उसके बाद गाड़ी में एक साथ बैठकर घर जाते हुए भी नजर आए। सो लोगों ने सोच लिया कि क्या पता शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए तो इन अफवाहों पर एकदम रोक लगा दी है और वो है शहनाज गिल ने, जो कहती है कि वो तो मेरा अच्छा दोस्त है एंड बिल्कुल उनका ख्याल रखते हैं और अभी के लिए भाई तेरा स्टार है। इसी फिल्म के साथ हम उन्हें एक बार फिर देख पाएंगे। हम बात कर रहे हैं राघव जुयाल की। सो उसी फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम, फॉर एवरीवन हूज कनेक्टेड हमारे साथ, ब्यूटीफुल ट्रैक जो एक बार फिर लौट कर आया है। देवनेगी पलक मुचल की आवाजें फ्रॉम द फिल्म भाई तेरा स्टार है, आंखों से तूने 2.0 आप सभी के लिए। एंजॉय दिस वन।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स 346 और जैसे हमने बताया कि रामायण फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है और आपको बता दें जब जब रामायण की कहानी छोटी या बड़े पर्दे पर नजर आई है तो कई कलाकारों को प्रसिद्धि के शिखर तक जाने का अवसर मिला है इस महागाथा के जरिए। और आज रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म रामायण का ट्रेलर सामने आया और इस फिल्म में चर्चित कलाकार कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं और आपको बताएंगे कि कौन से वो एक्टर्स हैं जिन्होंने कौन कौन सी भूमिकाएं निभाई हैं। सो सबसे पहले भगवान राम की महिमा अमर गाथा को बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर जीवंत करेंगे और वो इस फिल्म में भगवान राम के अलावा भगवान परशुराम की भूमिका भी निभाएंगे। ट्रेलर में राम के अलावा परशुराम की भूमिका में रणबीर कपूर नजर आए हैं। वहीं सीता माता की जो भूमिका है वो दक्षिण भारत की चर्चित एक्ट्रेस साई पल्लवी निभा रही है। भगवान लक्ष्मण की भूमिका हिंदी टीवी सीरियल की दुनिया में अपना अभिनय का डंका बजा चुके रवि दुबे निभा रहे हैं। रावण की भूमिका में साउथ सुपरस्टार यश है और ट्रेलर में उनका अंदाज लुक देखकर उनके फैंस काफी हैरान है। हनुमान की भूमिका में सनी देओल है और ट्रेलर में उनकी झलक देखने को नहीं मिली है। रामायण के ट्रेलर में बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह लंकापति नरेश रावण की बहन शूर्पणखा का किरदार निभाएंगी। वहीं बॉलीवुड के चर्चित एक्टर विवेक ओबेरॉय इस फिल्म का हिस्सा है। वो

0: रामायण में एक खास किरदार निभा रहे हैं। विद्युत जिहा का किरदार वो निभा रहे हैं जो शूरपंखा के पति थे, और फिल्म में ये दोनों का किरदार कहानी में एक नया मोड़ लेकर आएगा। साथ ही अरुण गोविल जो एक कलाकार नहीं एक पूरी पीढ़ी उनमें भगवान राम की छवि देखती है। रामानंद सागर की चर्चित सीरियल रामायण में उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी, और अब बड़े पर्दे पर रामायण फिल्म में भगवान राम के पिता राजा दशरथ की भूमिका वो निभाते नजर आएंगे। राम से बिछड़ने की पीड़ा और इस बार जो उनका ये दर्द है वो बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। और रामायण के ट्रेलर में बॉलीवुड में कई वर्षों से अभिनय कर रही एक्ट्रेस लारा दत्ता और शीबा चड्ढा भी नजर आए हैं। लारा दत्ता राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई और भगवान राम की सौतेली माँ की भूमिका निभा रही है, और उन्हीं के वचन के कारण राम को वनवास दिया गया था। वहीं शीबा चड्ढा ने दासी मंथरा का रोल निभाया है, और यहाँ पर ये कुछ जाने माने एक्टर्स हैं जो इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। सभी के लिए ट्रेलर देखने के बाद तो आ रही हैं पॉजिटिव रिव्यूज, और वेल इंतजार करना पड़ेगा फिल्म का टिल दिवाली। और अभी के लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, लौट कर आएंगे विद सम मोर म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499124 पर।
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Join the RM2 team this Saturday 1st of August at the Blue Bay Beach Arena for the Family Sports and Leisure Day organized by the Tourism Employees Welfare Fund in collaboration with the Mauritius Recreation Council. RM2 will be live from 10 a.m. to noon, so don't miss out. RM2
2: Radio Musti.

0: Oldies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: तो बिल्कुल लहजा गाना आपके लिए जरूर चलाएंगे, लेकिन आफ्टर आपके मैसेजेस आपके

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो बिल्कुल लहजा गाना आपके लिए जरूर चलाएंगे लेकिन आफ्टर आपके मैसेजेस आपके और कहते हैं दैट नए गानों में जो कुछ वर्जन्स हैं वो सच में अच्छे हैं और अभी के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नए हो या पुराने सभी वर्जन्स को एंजॉय करने के लिए धन्यवाद हमारी प्यारी सी रोशनी सो सेंडिंग यू गुड विशेज और हैप्पी फ्राइडे आज थर्सडे है और कल फ्राइडे उसके बाद वीकेंड भी आने वाला है सो हर एक दिन हो आपका खास यही विशेज हम आप तक पहुँचा रहे हैं और चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय आ रही है हंसनी लेकर आपके लिए योर रफ्तार वाइब्स तब तक के लिए साथ दीजिए हमारा ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती और गुड म्यूजिक आपके लिए हम चलाते रहेंगे गुड वाइब्स आप तक पहुंचाते रहेंगे सो हैव अ ग्रेट टाइम टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ
3: रेडियो मस्ती सुनते रहो

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check 4 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें गीता जी से. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार. स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और उसके ईंधन आपूर्तिकर्ता ओक्यू ट्रेडिंग के बीच का अनुबंध इस शुक्रवार को समाप्त हो रहा है. ऐसे में सरकार ने इसे अस्थायी रूप से बढ़ाने का फैसला किया है. इस अनुबंध के कारण मॉरिशस ने एक साल में लगभग 1 बिलियन रुपए की बचत की है. वाणिज्य मंत्री माइकल सिकियन के अनुसार अनुबंध की ये अवधि बढ़ाने का उद्देश्य देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था भारत के साथ होने वाले आगामी समझौते पर हस्ताक्षर होने तक लागू रहेगी. इस समझौते से मॉरिशस का पेट्रोलियम आयात बिल और कम होगा, जिसका लाभ देश की जनता को होगा. आजसू की विभिन्न टीमों द्वारा चलाए गए समन्वित अभियान में कल 24 घंटे से भी कम समय में देश के अलग अलग इलाकों से 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया. इन सभी पर मादक पदार्थों की तस्करी का संदेह है और उन्हें हिरासत में रखा गया है. तलाशी के दौरान करीब 55 मिलियन रुपए की लागत के मादक द्रव्य बरामद किए गए. इनमें हेरोइन, गांजा, सिंथेटिक ड्रग्स, क्रिस्टल मेथ और कोकीन शामिल हैं. पॉपलेमोसिस के सचिव सागर राम गुलाम नेशनल हॉस्पिटल और फ्लाक के अनिरु जगन्नाथ हॉस्पिटल के बाद अब विक्टोरिया हॉस्पिटल में भी बुजुर्ग मरीजों के लिए विशेष अक्यूट केयर ऑफ एल्डरली वार्ड्स शुरू किया गया है. इन विशेष वार्डों का उद्घाटन आज कई महानुभावों की उपस्थिति में किया गया. इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को आधुनिक और विशेष उपकरणों की सहायता से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. इन वार्डों में बुजुर्ग मरीजों को मल्टीडिसिप्लिनरी चिकित्सा देखभाल भी प्रदान की जाएगी. और विदेश में अर्जेंटीना के पश्चिमी प्रांत में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत हो गई है. ये हेलीकॉप्टर जंगल की आग बुझाने के अभियान में शामिल था. अभी तक हेलीकॉप्टर हादसे का सही कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
0: RM2.

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31st of July दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।

0: 4:30 PM in the afternoon. यहाँ पर सबका वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. सभी को नमस्कार और बिल्कुल विशिंग यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून जो यहाँ पर शुरू हो गया है विद म्यूजिकल शोज. और यहाँ पर आ गई है आपके साथ जुड़ने के लिए ऑटो हंसनी एंड आई बी विद यू यहाँ पर इस सफर को तय करने के लिए. और इस समय आप सुन रहे हो आज का रफ्तार वाइब्स जहाँ पर म्यूजिक की बीट भी एकदम फास्ट है और एनर्जी भी एकदम फुल ऑन ब्लास्ट. सो अगर आप काम से घर अभी वापस आप जा रहे हो सो विश यू अ सेफ राइड बैक होम. और मे बी कई जो हमारे फ्रेंड्स हैं घर पहुँच गए होंगे सो जस्ट हैव अ रिलैक्सिंग टाइम एट होम क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद जो आने वाला है वो ढेर सारा कामकाज होने वाला है स्पेशली जहाँ पर आप किचन में होंगे या फिर कुछ और काम आपके पास आएगा. लेकिन शुरू करने से पहले यू नीड अ ब्रेक राइट. सो यहाँ पर ब्रेक टाइम इज रेडियो मस्ती जो लेकर आते हैं ओनली द बेस्ट ऑफ म्यूजिक आपको एंटरटेन करने के लिए. सो हमारे फ्रेंड्स जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जहाँ पर आप बढ़ रहे हो इट्स ऑलरेडी a heavy flow of traffic आपके सामने. So maintain your patience, आराम से एकदम इत्मीनान से आप गाड़ी चलाएं क्योंकि आपको पता है सफर को तय करने के लिए आपकी मदद कौन करने वाली है वो तो है the one and only Radio Masti जो आपका हम सफर बन गया है. तो यहाँ पर we are here to celebrate your Thursday. आज it's 30th of July और एक दिन बाकी है इसके बाद हम जुलाई महीने को goodbye कहने वाले हैं. लेकिन इससे पहले we have got this beautiful awesome afternoon जो आपके साथ हम बताने वाले हैं. For your messages जहाँ बिल्कुल रफ्तार वाइब्स है जहाँ पर चारों ओर there's a rush चहल पहल है. लेकिन अगर आप फ्री हो तो यहाँ पर मैसेजेस पहुँचाने का नंबर ये तो हम आपको बताएंगे 5499-1294 जहाँ पर आपके मैसेजेस का इंतजार हम करने वाले हैं. सो इट्स ब्यूटिफुल सफर आपके साथ इट्स रफ्तार वाइब्स और वंस अगेन हंसनी का साथ है. आई विश यू ऑल अ वंडरफुल आफ्टरनून.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
1: स्पोर्ट्स न्यूज
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
3: Welcome again on Radio Masti. Yes, यहाँ पर म्यूजिकल शो तो है ही, लेकिन यहाँ पर अभी टाइम हो चला है टू गेट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स न्यूज. और यहाँ पर चलिए हम अरविंद से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या है लेटेस्ट. हेलो अरविंद, विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून.
4: गुड आफ्टरनून आपको हंसनी.
3: आप कैसे हो?
4: गुड गुड. अभी a bit busy with the Commonwealth Games and all. अभी आप लोग फॉलो कर पाएंगे द कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स 11 पर. और यस्टरडे वी हैड द फाइट में वैक्लेयर जो इसने मॉरिशस के लिए पहला मेडल जीता. लगभग इसी समय जब हम लोग स्पोर्ट्स कर रहे थे तो उसके 10 मिनट बाद द फाइट वाज देयर एंड वी हैड इट लाइव. एक तरह से हमारे लिसनर्स को मौका मिला वो पल जीने के लिए व्हेन मॉरिशस वन द फर्स्ट मेडल. अब उस मेडल का रंग बदल सकता है, क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा. सेमीफाइनल में हमारा मुक्केबाज पहुंच चुका है. आज भी एथलेटिक्स में हमारे एथलीट होंगे. बेगना 22 शॉट पुट में होगा शाम को. ऐसे ही कल कुछ रेसेस होंगे. नोएमी अल्फोंस उसकी जो रेस फिर से दौड़ जाएगी उसमें होगी वो. और हमारे जो बाकी एथलेटिक्स के भी एथलीट्स हैं उन पर भी आप फॉलो कर पाएंगे इन स्पोर्ट्स 11, जहां पर हमारे एथलीटों पर खास फोकस किया जा रहा है. फुटबॉल की बात कर लें, अब अभी सीजन शुरू हुआ नहीं है, प्री सीजन है. लेकिन प्री सीजन के मैचों के नतीजों को देखते हुए मैनेजरों को रफा दफा किया जा रहा है. शिकार बना न्यूकासल यूनाइटेड का मैनेजर एडी हाउ, जो क्लब को छोड़ने वाला है विद इमीडिएट इफेक्ट. वो अंडर प्रेशर आया था पिछले सीजन जब उसकी टीम 12वें पोजीशन पे आई थी, लूजिंग 17 ऑफ देयर 18 गेम्स. अब उसका फाइनल मैच इन चार्ज जो था वो ब्रिस्टल सिटी के खिलाफ हार 4-1 से, ये प्री सीजन फ्रेंडली जो कल हुआ. सऊदी प्रो लीग की टीम अल अली का मैनेजर माचियास येजल अब नया मैनेजर बनेगा न्यूकासल यूनाइटेड का. 5 सालों तक न्यूकासल यूनाइटेड में था एडी हाउ. अब कहाँ जाएगा ये देखना है, लेकिन न्यूकासल यूनाइटेड को अपना नया मैनेजर मिल गया है. उधर काफ़ी बातें हो रही हैं रिगार्डिंग जो आज के मैच, खासतौर पर यूईएफए यूरोपा लीग जिसमें फर्स्ट लेग के मैच सभी खेले जा चुके हैं. अब सेकंड लेग जिसमें माकाबी तल अवीव 5-0 से शरीफ को हरा पाया था, तो आज इन दोनों के बीच मुकाबला. फिर राडेक का मुकाबला ट्रोम्सो से, राडेक की टीम 1-0 से आगे. मिडजिलॉन बेसिकतास, ये इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि होम मैदान में है मिडजिलॉन और बेसिकतास 1-0 से आगे हैं. पाफोस और हाजटुक टीम के बीच मैच, 2-0 से हाजटुक टीम की जीत हुई थी. पाफोस होम मैदान में है. पीएओके सालोनिका और दिनामो कीव के बीच मैच है, पीएओके होम मैदान में है 3-2 से आगे. सीएसके मॉस्कू और काराबाग, दो नाम जो हम जानते हैं जो लोग चैंपियंस लीग में भी खेल चुके हैं, इनके बीच फर्स्ट लेग में मैच ड्रॉ गया था 0-0. और अंडेलरिक अमाबी 1-1 गया था. फेरन वारोस का मुकाबला 20 से होगा, इनके बीच मैच ड्रॉ गया था 2-1, ड्रॉ नहीं गया था लेकिन फेरन वारोस की जीत हुई थी 2-1 से. और बेनफिका सेंगालेन बेनफिका जो इस सीजन उतर आया है यूरोपा लीग में, वो होम मैदान में होगा और 2-1 से वो पीछे हैं. इसी तरह यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के भी सभी मैच खेले जा रहे हैं आज, रिटर्न लेग के मैच साथ साथ में फ्रेंडलीज भी. आज सुबह सुबह लिवरपूल ने 1-0 से रेक्साम को हराया, और ये आज सुबह खेला गया जिसमें एंगुमोहा ने गोल स्कोर किया लिवरपूल के लिए. ये लिवरपूल की दूसरी जीत है प्री सीजन फ्रेंडली में, और रेक्साम की पहली हार. दो मैच जीत चुकी थी ये टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था, फिर लीड्स को हराया. लिवरपूल के खिलाफ उसकी हार हुई, लेकिन इस मैच में रेक्साम ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला. एंगुमोहा का एक डिफ्लेक्टेड शॉट गोल बना, जबकि मामादाशविली लिवरपूल के लिए उसने बहुत सेव्स किए. सो जो भी हो, लिवरपूल की जीत हुई. आज भी काफ़ी मैच हैं, अभी एक मैच समाप्त भी हो गया है मालोका और इतिहाद के बीच.

0: मार डोसे इत मालोका की जीत लावाल टीम ने ग्रैनविल को 3-1 से हराया बोर्नमुथ खेलेगा ओसबर्ग के खिलाफ कुछ और मैच जो आज होंगे मालागा इतिहाद ये तो हो गया और क्लब फ्रेंडलीज में बहुत से मैच खेले जाएंगे इन पर आपको समय समय पर अपडेट्स देते रहेंगे और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो मेडल टेबल में अभी ऑस्ट्रेलिया लीडिंग एज यूजुअल शुरू से ही 47 गोल्ड मेडल्स 103 टोटल कनाडा के पास है 14 गोल्ड मेडल टोटल 40 इंग्लैंड के पास है 12 गोल्ड मेडल 57 टोटल स्कॉटलैंड 9 गोल्ड मेडल जीत चुका है नाइजीरिया के पास है 7 साउथ अफ्रीका 6 मलेशिया के पास है 6 इंडिया 8वीं पोजीशन पे है उसके पास है 3 गोल्ड मेडल टोटल 15 अभी बॉक्सिंग आज काफी है तो इनमें भी मेडल जीतने की संभावना है सो आज सुबह बॉल्स और पारा बॉल्स लगे साथ साथ वेट लिफ्टिंग के ट्रक साइकिलिंग पारा ट्रक साइकिलिंग भी हुए वेट लिफ्टिंग काफी था आज और एथलेटिक्स पारा एथलेटिक्स नेटबॉल ये सब आज के लिए स्केड्यूल हैं और कल काफी इंटरेस्टिंग डे होगा जिसमें बॉक्सिंग के 4 सेमीफाइनल जूडो के क्वार्टर फाइनल फिर बॉक्सिंग के और 5 सेमीफाइनल तो यहां पर कम से कम उम्मीद है मॉरिशस के लिए एक जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है क्यों ना वो सिल्वर में परिवर्तित हो या फिर गोल्ड में बदल जाए लेट्स होप फॉर द बेस्ट राइट
1: एकदम राइट अरविंद थैंक यू सो मच फॉर ऑल द न्यूज फॉर ऑल द अपडेट्स एंड यहाँ पे कल सुबह भी हम मिलने वाले हैं ना फोमो
0: और अभी वीकेंड के दौरान काफी कुछ होने वाला है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स खासतौर पर द क्रिकेट आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा जो शुरू होगा और जिसमें विल बी हैविंग प्लेंटी ऑफ गुड गेम्स और एज यूजुअल बेस्ट हमारी टीम जो है वी गिव आवर बेस्ट देयर मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनाइजर्स हमें नहीं भूलेंगे क्योंकि फाइनल में जाकर वहां का धमाका करते हैं हम
1: बिल्कुल एंड दैट विल बी एक्चुअली द सीजन 4 राइट अरविंद
0: यहां
1: पे इससे रिलेटेड यहां पे गेम्स भी आने वाले हैं एकदम जबरदस्त
0: गुड सो क्वेश्चन भी तैयार रखा है तो गो अहेड
1: ऑलराइट अरविंद स्पेशल थैंक यू टू यू एंड विश यू अ ग्रेट इवनिंग अहेड बाय बाय
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट
3: Jumbo, Quality Déco, fin lance extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds pas, 100 roupies. Des pieds pas, 4 pieds pas, 295 roupies.

Assalam namaste to everyone. Ajo yahan par strongly connected hai on our radio musti just to enjoy the best of music. To yahan par hai Hansani jo aapke saath hai. And really hope ki jo aaj ka collection hai, jo aaj ka selection of music hai, bas aapko pasand aa rahi hai. Aur abhi jaise ishaara hua tha with Arvind, jahan par wo cricket ke baare mein baat kar rahe the. So yahan par ek game jo hai, bilkul related. For the Island Cricket Extravaganza Season 4 जो बस शुरू होने वाला है तो यहाँ पर आपको इंडियन खाना पसंद है अगर हाँ तो ये एक ऐसा चांस जो रेडियो मस्ती आपको दे रहा है ₹500 का एक गिफ्ट वाउचर ऑफर्ड टू यू बाय सेफ एंड ग्रिल जो आपका हो सकता है जी सो अगर आप अभी खेलेंगे तो जीतने के चांस टू विन अ डेलिशियस एकदम लजीज जो डिश है ना आपका हो जाएगा वाउचर इंडियन मील जो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे आपके लिए राइट एट सेफ एंड ग्रिल सो कुछ डिटेल्स अबाउट द आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंसा सीजन 4 ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन जो है बिल्कुल वापस आ रहा है विद ग्रेट एक्साइटमेंट फॉर इट्स व्यूअर्स इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP स्टार्टिंग आज फ्रॉम 1st of August ये तो होने वाला है एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू जहां पर 6 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड दैट विल बी कॉन्टिनेंटल चीटास AMG पैंथर्स कैंपस अब्रॉड लायंस APP लियोपर्ड्स वन हेल्थ जगर्स एंड थॉमस कुक टाइगर्स तो ये जो 6 टीम है वो सब मिलकर पार्टिसिपेट करने वाले हैं सो डू हैव अ विजिट एट ग्राउंड टू सपोर्ट योर टीम अगर है कोई आपका फेवरेट टीम सो व्हाई नॉट आपको आना है टू सपोर्ट

0: audio team. Matches will be played on Saturday afternoon और साथ में Sunday morning and afternoon को भी जो matches हैं वो खेले जाएंगे. So ये थे कुछ details जो हमने आपको बता दिया है just for you to be part of the Island Cricket Extravaganza Season 4. तो यहाँ पर एक question तो होना है, question के साथ आपका सही जवाब. और ध्यान रखें कि इस question के लिए आपका पूरा जो नाम पता है ये सब आपको complete लिखना है ताकि आप इन हो जाए for the lucky draw, क्योंकि जो voucher है वो post द्वारा आपको भेजा जाएगा, right? So अभी time for the question, बहुत ही easy one. और यहाँ पर चलिए यहाँ पर पूछ लेते हैं सवाल आप लोगों से. Who is the youngest cricketer to play international cricket for India? सवाल ये है कि कौन है वो सबसे जवान, the youngest cricketer to play international cricket for India, और हाल ही में जिम्बाब्वे में कमाल किया है. अगर नाम को आपको पता है कि वो कौन सा यंगेस्ट क्रिकेटर है सो जल्दी से आप से जवाब भेजें. ऑन 54991294 आप ही का इंतजार है. तो चलिए हंसनी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गुड लक.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम2

जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों तलाश तो है फॉर योर राइट आंसर्स, जहाँ पर हमने सवाल किया है हु इज द यंगेस्ट क्रिकेटर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर इंडिया। अगर आपके पास सही जवाब है तो जल्दी से भेजें ऑन 5499-1294। यहाँ पे ठीक 5 PM हम बढ़ेंगे न्यूज की तरफ, एंड इसके लिए श्रीना इज ऑल सेट। हाई श्रीना, वेलकम इन द स्टूडियो। और 5 बजे के बाद हम अनाउंस करेंगे कि इस गेम के लिए हु इज द लकी विनर, राइट। इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा रेडियो मस्ती, स्टे वेल कनेक्टेड फॉर आज का रफ्तार वाइब्स।

0: Olympic Women's Association, Vishwanath Mandir Mahila Samaj, Senior Citizen Plan Manyo Women's Association और Plan Manyo Social Welfare Community Center Senior Citizen एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 31st ऑफ जुलाई दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।
1: North, South, East or West, tune into the very best Radio Masti, your number one Bollywood station.
2: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

please note of Tasha Aram se to have a safe driving back home. तो यहाँ पर सफर को तय करती हुई आपके साथ हंसनी एंड राइट अभी तो गेम की तरफ हम बढ़ेंगे. We had a question related for the Je Concours, yes, sponsored by Island Cricket Extravaganza, जो शुरू होने वाला है the season 4. So related, we had a question, right? कौन है वो सबसे जवान क्रिकेटर जो बस एकदम मशहूर हुआ है हाल ही में एंड The youngest cricketer to play international cricket for India. वो कौन है? Actually कई सही जवाब मिले हैं. So special thank you आप सभी को हमारे इस game में participate करने के लिए. And the right answer is Vaibhav Suryavanshi. बिल्कुल only with 15 years यहाँ पर उनका नाम आ गया है. बहुत बड़ा नाम in the world of cricket. So Vaibhav Suryavanshi जो सही जवाब है और यहाँ पर जो नाम यहाँ पर आया है आज लकी विनर चलिए लेट्स गो एंड चेक आउट

0: जहां पर म्यूजिक है मस्त तो यहां पर जबरदस्त नाम भी तो आने वाला है आज द लकी विनर फॉर दिस दर्शकों को शी इज फ्रॉम सैंक्वा पोर्टलुइस और नाम है उनका जशीना रामफर कंग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर आपकी जीत हो गई है और आप ले जा रही हो द गिफ्ट वाउचर या यहां पर जो आपको दिया जा रहा है फ्रॉम आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा और इस वाउचर के साथ आप जरूर जाने वाली हो टू एंजॉय इंडियन डिलिशियस फूड्स एट सेफरन ग्रिल तो बिल्कुल आपका जो वाउचर है आपका हो गया है बस जो आपका वाउचर है वो पोस्ट द्वारा आपको भेजा जाएगा ऑल द बेस्ट कंग्रेचुलेशंस हमारी सभी टीम की तरफ से तो ये जो चांस है आपको भी दिए जाएंगे इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा रेडियो मस्ती जो यहाँ पर ऑलवेज एंड जो साथ हमारा होता है बेशक आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं ओनली द बेस्ट ऑफ म्यूजिक और साथ ही साथ सरप्राइजेस तो यहाँ पर जशीना रामफल को मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस आपके जो नाम है डिटेल्स है एड्रेस नॉल ये सब बिल्कुल इन हो गई है और जो डिटेल्स है हमने इनका लिए है ताकि जो आपका वाउचर है वो सही वक्त पर आपको मिल जाए राइट सो यहाँ पर रेस्टार वाइब्स में एक बार फिर से सभी का वेलकम है अगर अभी आपने सुनना शुरू किया है इट्स अ प्लेजर टू वेलकम एवरीवन
1: रेस्टार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम2

रेडियो बस्ती पर इट्स रफ्तार वाइब्स, जहां पर कुछ ग्रेट म्यूजिक के साथ वी आर हियर टू एंटरटेन यू। और चलिए जो मदमस्त मूड है उनको बस आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर और एक चांस, मे बी इन द लास्ट गेम आप कुछ मायूस हो गए हो कि आज भी जीत नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, आपको तो पता है रेडियो मस्ती हमेशा लेकर आता है वो रीज़न ताकि आप खुश रहें, राइट। सो इसकी वजह से और एक गेम जो बिल्कुल तैयार रेडी आप लोगों के लिए, एंड द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। इस बारी टू प्ले विद एमबीसी एंड राजस्थान वर्क्स एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस। यहाँ पे एक चांस है ताकि आपकी जीत हो जाए और आप ले जाए 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी। शुरू होगा वो स्पेशल इवेंट आज फ्रॉम 12 अगस्त 2026 और चलेगा अप टिल 16th ऑफ अगस्त 2026 एट एसबीआई सीसी पाया। ये जो बड़ा उत्सव है वो शुरू होगा आज फ्रॉम 10 AM टू 9 PM डेली, तो वहाँ पर आपको जाना है टू एक्सपीरियंस 5 days ऑफ शॉपिंग एंटरटेनमेंट एंड लॉट्स ऑफ फैमिली फन। तो वहाँ पर कुछ डिटेल्स हम आपको बताएंगे, दैट विल बी अबाउट इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, साथ में होने वाला है स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, वो तो आएंगे मॉरिशस, तो अगर उनको देखने जाना है सो डोंट मिस द चांस टू बी पार्ट ऑफ। यहाँ पर कानमा शो भी वहाँ पर होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप, फूड फेस्टिवल और

0: package that will be at Utsav India Mauritius Shopping Carnival. तो वहाँ पर आपको जाना है इससे पहले ये जो चांस है डू मेक द मोस्ट क्या पता सवाल के बाद जवाब दो जो आप ढूंढ लेंगे तो इसके लिए आप लकी विनर बन जाएंगे राइट है और रेडमस्टी एक सिंपल सा क्वेश्चन राइट मुझे पता है कि दिन भर के लिए काफ़ी आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो काम की वजह से इतनी सारी जिम्मेदारियों की वजह से सो कुछ आसान सा हो जाए राइट क्वेश्चन टाइम जो अगला गाना चलने वाला है ध्यान से आपको सुनना है और पता लगाना है कि मूवी का नाम क्या है और और गाने में जो फीमेल आवाज़ आएगी बस उनका नाम आपको पहचाना है यानी कि यू हैव टू गिव मी टू राइट आंसर्स फर्स्ट मूवी का नाम और सगन जो आपकी जो आवाज़ आपको सुनना है यहाँ पे फीमेल वॉइस जो आप सुनने वाले हो वहाँ पर आपको ध्यान लगाना है और हमें बताना है कि फीमेल सिंगर कौन है राइट सो इसके लिए सही जवाब आप भेजिए ऑन 549-1294 हंसनी और पूरी टीम आई है टू विश यू ऑल द बेस्ट
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

That's our Aftar vibes जहाँ पर म्यूजिक की बीट भी एकदम फास्ट है और एनर्जी भी एकदम ब्लास्ट में है. So keep on being with us, साथ आप निभाते रहिए क्योंकि यहाँ पर ये जो चांस है आपको दिए जा रही है for you to be the lucky winner. यहाँ पर सवाल तो बहुत ही म्यूजिकल था जो गाना अभी चला. That was very nice, the beat of music. और पता आपको लगाना था मूवी का नाम और साथ में जो आवाज गूंज रही थी the female voice वो किसकी थी. एंड वाकई में इतने सारे लोग यहाँ पर अपने फ्री टाइम निकालते हैं टू पार्टिसिपेट इन आवर गेम शोज, तो दिल से आपको शुक्रिया हम कहना चाहेंगे. तो यहाँ पर इट्स लाइक द लकी जो जो अभी वो काम करने वाला है, जोरदार काम वो तो कर लेता है हम सब आरजेस के लिए, राइट? एकदम राइट. तो यहाँ पर सही जवाब इट्स अलीशा शनोय और मूवी का नाम इट्स नमस्ते लंदन. तो यहाँ पर लेट्स गो एंड चेक आउट यहाँ पर कौन सा नाम आया है.

Alright, so यहाँ पर गेम के लिए जो सही जवाब आया है इट्स अलीशा शनोय एंड मूवी का नाम इट्स नमस्ते लंदन जहाँ पे नजर आए थे द ब्यूटीफुल कैटरीना कैफ और साथ में थे अक्षय कुमार. तो यहाँ पर लकी ड्रॉ के द्वारा जो नाम आया है वो तो कैटबोन के रहने वाले हैं और नाम है उनका रितेश रामधनी. कंग्रेचुलेशंस टू यू रितेश जी, आपकी जीत हो गई है और बेशक आप तो जाने वाले हो और धूमधाम से आप उस उत्सव को आप एंजॉय करने वाले हो. दैट विल बी आज फ्रॉम 12 अगस्त 2026 से शुरू होगा उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल और ये जो बड़ा इवेंट है वो तो बस जारी रहेगा अप टिल 16 अगस्त को. एंड डोंट फॉरगेट आपको दिए जा रही है 4 एंट्री टिकट्स प्लस 1 फुल कूपन अफोर्डेड टू यू बाय जेंस लिटिल इंडिया. शाही थाली के लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाइए जो आपको दिए जा रही हैं पावर्ड बाय SBI एंड LIC. जो बड़ा इवेंट है इट्स फॉर द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल एंड दैट्स पावर्ड बाय SBI एंड LIC. तो यहाँ पे जो बड़ा इवेंट है वो तो होने वाला है एट SBICC पायास फ्रॉम 10 AM टू 9 PM ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू रितेश जी, आपकी जीत हो गई है. एंड डोंट फॉरगेट जो नाम है एड्रेस है ये सब आपने भेजे हैं तो जो हमारे रेडियो कोऑर्डिनेटर्स है वो आपको कांटेक्ट करेंगे फॉर दी फर्दर प्रोसीजर्स. राइट, कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल आवर टीम. और यहाँ पर जो म्यूजिकल डोज है बस आपको पहुँचाते रहेंगे और जो हम सुने विद यू फॉर आज का रफ्तार.

0: जहाँ पर रेडियो मिस्टी के साथ आप कनेक्टेड हो तो हो जाए एक फैशन टिप आज के लिए रिलेटेड टू विंटर सीजन. आजकल तो सर्दी का मौसम है ना और हमारे कार्डिगन्स हमारे साथ तो होते रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड एक छोटा सा टिप हो जाए. अपने लुक को और भी स्टाइलिश आप बना सकते हो, तो यहाँ पे कार्डिगन के बारे में आज कुछ है जो जिक्र होने वाली है. यहाँ पर सही फिट को आपको चुनना पड़ेगा. कार्डिगन ना तो बहुत टाइट हो और ना ही बहुत ढीला, सही फिट आपके पूरे लुक को और भी अट्रैक्टिंग बनाएगा. और बेसिक टी शर्ट या फिर शर्ट के साथ पहने तो आपका जो लुक है वो कुछ और क्लासिक हो जाएगा. सफ़ेद, काला या फिर हल्के रंग की टी शर्ट के ऊपर कार्डिगन पहने से एकदम क्लासिक और स्मार्ट लुक मिलता है. और अगर कार्डिगन है तो कॉम्बिनेशन क्या रखें, जीन्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा. जीन्स के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ब्लू या फिर ब्लैक जीन्स के साथ एकदम न्यूट्रल रंग का कार्डिगन हमेशा स्टाइलिश लगता है. सो कॉम्बिनेशन को ध्यान में आपको रखना है. ब्लू या फिर ब्लैक जीन्स के साथ एकदम आपको न्यूट्रल रंग को चुनना है. ये जो कैजुअल लुक है आउटिंग के लिए एकदम बढ़िया चॉइस आपके लिए है. और लेयरिंग को ध्यान में आपको रखना है. सर्दियों में कार्डिगन के ऊपर जैकेट या कोट पहनकर आप गर्म भी रहेंगे और आपका लुक भी एकदम शानदार लगेगा. तो आप जा रहे हो एक कैजुअल गैदरिंग में या फिर रिसेप्शन में आप जा रहे हो और आपने सोचा है आज आपके पास है वो एकदम स्पेशल कार्डिगन, वो क्या करें, यूज़ करें या फिर कोने में रखें? आज यूज़ कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका जो लुक है वो ज़्यादा स्टाइलिश, ज़्यादा आप एकदम स्मार्ट आप लगेंगे. डू ट्राई एंड लुक ग्लैमरस विद रेडियो मिस्टी, जो हमेशा आपके लिए लेकर आती है द बेस्ट ऑफ टिप्स.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.

ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन रफ्तार वाइब्स कीप एंजॉयिंग और टाइम अभी हो चला है टू हैव सम नेम्स जहां पे प्यार से आपने कुछ लिखा है ना तो टाइम फॉर सम डेडिकेशंस राइट ऑन 5491294 हेलो टू दीक्षा हाय दीक्षा कैसी हो आप तो हो फ्रॉम कटबोन बहुत ही हेक्टिक था आज का दिन लेकिन थैंक्स टू रेडियो मस्ती जो यहाँ पर है टू गिव सम सुकून ये तो बिल्कुल बढ़िया बात आपने कही है थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द सॉन्ग्स यहाँ पर गाना आपके लिए चल जाएगा नमस्ते जी कैसे हो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी थैंक यू यहाँ पर गाना फॉर बेटा कनिष्क के लिए हु प्राउडली पास्ड हिज एग्जाम्स बिग कंग्रेचुलेशंस फॉर योर बेटा जी यहाँ पे कीप शाइनिंग का मैसेज उनके लिए और प्राउड पापा जो आए हैं विनेश दर्शन जी आपका वेलकम है गाना जो है आपके लिए आपके बेटे के लिए फॉर वाइफ शालिनी और सबके लिए जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू टू और यहाँ पर एक बार फिर से आपके बेटे को कंग्रेचुलेशंस थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ब्लेसिंग्स यहाँ पर गाना है फॉर अंतेश बाबू के लिए जो कनेक्टेड है फ्रॉम स्विट्जरलैंड आए हैं मॉरिशस प्यार पहुँचाने के लिए फॉर ऑल द डियर वंस सो स्पेशल थैंक यू टू यू और गाना भी आपके लिए चल जाएगा थैंक यू फॉर लिसनिंग और कुछ परिवार जो हमेशा अब्रॉड से

सुनते हैं, लेकिन आज मौका मिला है टू से हेलो फ्रॉम मॉरिशस। तो आपका दिल से स्वागत है जी हमारे इस पैराडाइज आइलैंड में। यहाँ पर गाना फॉर ममा गीता के लिए, फॉर पापा बलम, सभी रिडोई फैमिलीज है ऑफ अमिची। वी हैव स्वीटी, सुजय, हेमा, केविन, एंजल, सरवानिया, बेबी सिया, केयान, और आप तो आई हो ऑल द वे फ्रॉम डबलिन इन मॉरिशस टू हैव सम ग्रेट हॉलीडेज। तो एंजॉय करें और फैमिली के साथ खूब अच्छे वक्त आप बिता लीजिए एंड मेक इट प्रेशियस। तो यहाँ पर बिल्कुल जो मदमस्त गाने हैं हम चलाते रहेंगे, हम सफर आप बने हुए हो ना वो रेडियो मस्ती, तो गाने इसी के हिसाब से हम चलाते रहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग साथ साथ इन आज का रफ्तार वाइब्स।

जहां पर प्यार है जहां पर सुकून है वहीं पर चला आता है आपका रेडियो मस्ती टू बी विद यू हम सफर आप बने रहिए हमारे संग इट्स रफ्तार वाइब्स आर शेयरिंग लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स एंड पॉजिटिविटी ऑल अराउंड जहां पर भी आपका साथ जारी है चलिए म्यूजिक का साथ है और ये जो गाना है हमें ले जाएगा ठीक 6 बजे के समाचार बुलेटिन की ओर और इसके बाद बिल्कुल हम मिलेंगे कुछ और बातें शेयर करेंगे Hi Anil, आप तो हो from Canada. आपका welcome in Mauritius. Very hope कि सब ठीक है. Thank you so much for appreciating the song collections. यहाँ पर गाना है for daughter Kelly के लिए, especially आपके लिए. Wish you a warm welcome in Mauritius. And keep enjoying the best of songs जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए in our Raftaar Vibes.

0: subscribe to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Wish you all a very good evening. Check your time. Sham ke theek 6 baje hain. पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और उसके ईंधन आपूर्तिकर्ता ओक्यू ट्रेडिंग के बीच का अनुबंध इस शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने इसे अस्थायी रूप से बढ़ाने का फैसला किया है। इस अनुबंध के कारण मॉरिशस ने एक साल में लगभग 1 बिलियन रुपए की बचत की है। मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम ने अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने आज एनहांस स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। आजसू की विभिन्न टीमों द्वारा चलाए गए एक अभियान में कल 24 घंटे से भी कम समय में देश के अलग अलग इलाकों से 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर मादक पदार्थों की तस्करी का संदेह है और उन्हें हिरासत में रखा गया है। तलाशी के दौरान करीब 55 मिलियन रुपये की लागत के मादक पदार्थ बरामद किए गए। आज से श्रावण मास शुरू हुआ। आज पहले दिन मंदिरों में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। आर्य समाज मंदिरों में यज्ञ हवन किए जाते हैं। और विदेश में अमेरिकी सेना ने ईरान पर भारी हमले किए हैं। मंगलवार को अमेरिकी ताकतों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमलों के जवाब में ये हमले किए गए। और अब समाचार विस्तार से। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और उसके ईंधन आपूर्तिकर्ता ओक्यू ट्रेडिंग के बीच का अनुबंध इस शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने इसे अस्थायी रूप से बढ़ाने का फैसला किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण मॉरिशस ने एक साल में लगभग 1 बिलियन रुपए की बचत की है। मंत्री माइकल सिकियन के अनुसार अनुबंध की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था भारत के साथ होने वाले आगामी समझौते पर हस्ताक्षर होने तक लागू रहेगी। इस समझौते से मॉरिशस का पेट्रोलियम आयात बिल और कम होगा, जिसका लाभ देश की जनता को होगा।
6: स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और ओमान की कंपनी ओक्यू ट्रेडिंग के बीच गत वर्ष मॉरिशस को पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति के लिए तय किया गया कॉन्ट्रैक्ट 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 1 अगस्त 2025 से एक वर्ष के लिए तय इस समझौते को असाधारण रूप से 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। यह अतिरिक्त समय मॉरिशस और भारत के बीच प्रस्तावित नए पेट्रोलियम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दिया गया है।
7: Qui nous fait étendre ce contrat-là. Et un an de cela, bah, c'est dans la guerre. Et ils ont dit tout prix qu'ils peuvent gagner, bah, le prix, la guerre. C'est-à-dire war price. Ça veut dire pendant 2 mois encore, nous pour soulager. Les bons aussi qui vont dire où, le premium price qu'ils nous font signer avec OQ Trading, quand nous comparons avec l'ancien contrat, c'est-à-dire de l'ancien gouvernement, ils coûtent nous 1 milliard roupies en moins selon un an.
6: इस बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ सरकार से सरकार समझौते पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है।

0: प्रस्तावित समझौते के प्रमुख लाभों में से एक मॉरिशस के लिए भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुकूल भुगतान व्यवस्था है।
1: Entre-temps, nous finalisons le contrat avec le gouvernement indien. Un point très positif qui est capable déjà de dire où nous pouvons payer en roupies, c'est-à-dire un produit pétrolier qui nous passe avec Indian Oil à travers le gouvernement indien. Donc nous pouvons payer en roupies. Donc ça c'est déjà un gros avantage.
0: भारत के साथ नए समझौते के अंतिम रूप लेने तक अधिकारियों का कहना है कि ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए हर आवश्यक प्रयास जारी रहेगा।
1: En janvier, l'UPP va produire pétrolier sur tous les sens autour de 600 dollars métrique tonne. Là, il finit répond, il tourne autour de 1000 dollars métrique tonne. Au niveau de Maurice, le prix de l'essence finit augmenter une seule fois. La MOPJAU, 10 avant la guerre, il est 50% plus cher que janvier. Nous augmenter une seule fois à la hauteur de 10%. Nous pouvons faire tout pour Tinili, pour absorber le choc, parce que du moment où nous montons le prix l'essence et diesel, il fait un effet domino sur les produits alimentaires et aussi sur les produits non alimentaires.
0: अब सभी की निगाहें भारत के साथ होने वाले इस समझौते पर टिकी हैं। इसके क्रियान्वयन से जुड़े अंतिम विवरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य मॉरिशस के पेट्रोलियम आयात पर होने वाले खर्च को कम करना, साथ ही देश के ईंधन आपूर्ति को और अधिक सुरक्षित बनाना है।
2: अभी आप करुणा लालू को सुन रहे थे। आजसू की विभिन्न टीमों द्वारा चलाए गए एक समन्वित अभियान में कल 24 घंटे से भी कम समय में देश के अलग अलग इलाकों से 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर मादक पदार्थों की तस्करी का संदेह है और उन्हें हिरासत में रखा गया है। तलाशी के दौरान करीब 55 मिलियन रुपए की लागत के मादक पदार्थ बरामद किए गए। इनमें हेरोइन, गांजा, सिंथेटिक ड्रग्स, क्रिस्टल मेथ और कोकीन शामिल हैं। ज्यादा जानकारियां अशिता रघु के साथ।
3: 24 घंटे से भी कम समय में एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट आजसू की विभिन्न टीमों ने लगभग 55 मिलियन रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। ये संयुक्त अभियान फ्लाकी रेजिडेंस ओडिसे ओलिविया, बिजडोंबो, कॉन्लेव्यू और ट्रेफल रोजिल इलाके में एक साथ चलाए गए। इन कार्रवाइयों को आजसू की फ्लाक, मेट्रो नॉर्थ और वेस्टर्न डिवीजन की टीमों ने अंजाम दिया। आजसू के इन सभी छापों के जरिए सीधे ड्रग तस्करी के नेटवर्क को निशाना बना रही है, क्योंकि इन जब्तियों में मात्रा और मूल्य जरूरी है। हम ड्रग तस्करों को पकड़ रहे हैं। कल सुबह 7:45 पर रेजिडेंस ओडिसे ओलिविया में की गई छापेमारी के दौरान दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। 60 वर्षीय विल्सी व शार्लोट के पास से 2.3 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं दो घर छोड़कर रहने वाली 22 वर्षीय मारी आजा के घर से 5.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 95 लाख रुपए बताई गई है। आजसू की मेट्रो नॉर्थ डिवीजन ने 26 वर्षीय पैट्रिक ओमुगम को गिरफ्तार किया। उसके घर की तलाशी में 400 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स, 36 ग्राम कोकेन और 589 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार ये मादक पदार्थ बिक्री के लिए रखे गए थे। जब्त ड्रग्स की कुल कीमत लगभग 14 मिलियन रुपया आंकी गई है। इसी दौरान आजसू की वेस्टर्न डिवीजन ने रोजेल के कॉन्लेव्यू इलाके में भी तलाशी अभियान चलाया, जहां 26 वर्षीय रोनाल्डो गबाई को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से करीब 500 ग्राम कोकेन, 400 ग्राम से अधिक क्रिस्टल मेथ और लगभग 500 ग्राम हीरोइन बरामद की गई। आजसू वेस्टर्न ने रोजिल के ट्रेफल इलाके में भी छापेमारी की, जहां लुई मैनुअल को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से 515 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। पांचों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। सभी पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का संदेह है।
2: सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति के निजी आवास में किए जा रहे कार्यों से जुड़ा एक वीडियो प्रसारित होने के बाद राष्ट्रपति दफ्तर ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है, चाहे वे स्थित हाउस में रहें या अपने निजी आवास में। विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित कार्य केवल सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हैं। ये लंबे समय से अपनाई जा रही सरकारी प्रक्रिया के अनुरूप हैं। इन कार्यों की सिफारिश प्रधानमंत्री दफ्तर के सुरक्षा विभाग ने की है और उन्हें शुरू करने से पहले सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

0: आज से श्रावण मास शुरू हो रहा है। आज का पहला दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने के दौरान भक्त मंदिरों में शिव अभिषेक करते हैं और शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। विधि मां सुपुराण को सुनते हैं।
1: श्रावण मास के दौरान मंदिर प्रार्थना करने, ध्यान लगाने और अर्पण करने के लिए आने वाले कई भक्तों का स्वागत करते हैं। भक्त शाकाहारी भोजन करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक के अनुष्ठान में भाग लेते हैं। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके दौरान जल, दूध और अन्य सामग्रियों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है।
2: आप जो भी करते हैं इस महीने में, जो भी मनोकामना है आप मांगेंगे, ये सफल हो सकती है।
3: हम लोग छोटे जब थे, माता पिताजी हम लोगों को सिखाया है ये श्रावण मास बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत लाभदायक है, तो हम यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जहाँ जहाँ तक हो सके हम इस मास के लाभ उठाते हैं।
4: Ça envoie la, ça envoie prospérité, ça nous fait la prière, nous demander avec les cœurs propres, nous progresser. Ça envoie, demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de dévotion.
1: श्रावण मास के सोमवार का विशेष स्थान होता है। ये दिन प्रार्थना, आत्मनिरीक्षण और स्वास्थ्य, पारिवारिक शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने को समर्पित होते हैं। आचार्य दर्शन शर्मा रामफल बताते हैं,
5: श्रावण का नाम ही है श्रवण करना, सुनना। यह मास में तजित होकर के सच्चे मन से अंतर्थम जा करके भगवान की लीला को, भगवान की कथा को, भगवान की जो अमुख्य मुख्य जो दृष्टिकोण है, भगवान का माने की जो असली रूप है, उसको उस पर नमन करें। शिव पुराण में यही कथन कहा गया, जब नारद मुनि जा करके विष्णु भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मैं कहाँ जा करके आपके दर्शन करूँ, मैं कहाँ जा करके आपकी पूजा को करूँ। भगवान वहाँ पर बहुत सुंदर वचन कहते हैं कि हे नारद, ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि योगी हृदयम, यत्र भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठ करके मुझे याद करते हैं, मुझे ध्यान करते हैं, मैं वहीं पर वास करता हूँ। ऐसे महादेव की आराधना करना एक मास तक उनकी बहुत कृपा आशीर्वाद है।
1: लेकिन अनुष्ठानों से परे ये महीना भक्तों को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने, एक सादा खान पान अपनाने और करुणा, धैर्य तथा अनुशासन के मूल्यों के करीब आने के लिए भी प्रेरित करता है। कई परिवारों के लिए श्रावण मास आत्मनिरीक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक समय भी है।
0: श्रावण मास के दौरान वेदों की शिक्षाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। आर्य सभा की शाखाओं में यज्ञ हवन का आयोजन किया जाता है और वेदों पर प्रवचन किए जाते हैं।
1: आर्य समाज के अनुयायियों के लिए श्रावण मास वेदों और आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद की शिक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का एक अवसर होता है, जो वैदिक ग्रंथों की ओर लौटने तथा सत्य, ज्ञान और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित करते हैं। इस अवधि के दौरान आर्य समाज की शाखाओं में वेदों के पठन और व्याख्या के सत्र आयोजित किए जाते हैं। भक्त प्रार्थनाएं भी करते हैं, विशेष रूप से गायत्री मंत्र का जाप, जिसे प्रकाश, बुद्धिमत्ता और विवेक के लिए एक आह्वान माना जाता है। आचार्य आशीष बताते हैं,
6: वेद डिवाइन नॉलेज को कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को कहते हैं। तो जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, उनका स्वाध्याय प्रारंभ किया जाता है श्रावण मास के अंदर। और पर्पस ये रहता है स्वाध्याय के माध्यम से नॉलेज को गेन करके हम विजडम फुल बने, और विजडम फुल बन करके हम अपने सेल्फ को एलिवेट करें, ग्रो करें, जिससे हम अंदर अपने अंदर एक कंट्रोल डेवलप कर पाए। नॉलेज का पर्पस ही यही होता है कि हम अपने अंदर एक कंट्रोल, एक बैलेंस डेवलप कर पाए, जिससे हम जो बैड टेंडेंसीज हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनके स्लेव ना बने, उनसे हम दूर हट करके हम अच्छी वैल्यूज़ को, अच्छी आदतों को, अच्छे नॉलेज को अंदर इस्टेब्लिश कर पाए। तो ये जो श्रावण मास है, श्रावण मास के अंदर अधिक स्वाध्याय किया जाता है, अधिक लर्निंग की जाती है, अधिक पढ़ा जाता है।

0: जाता है, अधिक सीखा जाता है।
1: सभाओं में यज्ञ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पवित्र अग्नि के चारों ओर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जबकि लपटों में आहुतियाँ अर्पित की जाती हैं। यह अनुष्ठान मन की शुद्धि, आपसी मेल मिलाप और अच्छे कर्म करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
2: मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम ने अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने आज एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देना है। इनमें डिजिटल परिवर्तन, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इस सहयोग को और तेज करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर मॉरिशस यूनाइटेड किंगडम बिजनेस फोरम स्थापित करने की भी योजना है। करुणा लालू को सुनते हैं।
3: इस समझौता मॉरिशस और यूके के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा। इसके तहत दोनों सरकारों के बीच ही नहीं बल्कि निजी सेक्टर और अन्य पक्षों के साथ भी नियमित बातचीत का प्रावधान होगा। चार प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, ब्लू और ग्रीन इकोनॉमी, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सेवाएं। सरकार के हालिया बजट में ये प्राथमिकताएं शामिल हैं। मंत्री धनंजय रामफल ने कहा, हस्ताक्षर किए गए समझौते में दोनों देशों के बीच एक बिजनेस फोरम कायम किया जाएगा, जहां बरतानी निवेशक और निजी मॉरिशस निवेशक भाग लेंगे और उन प्रोजेक्टों पर विचार करेंगे जो आपसी देशों के लिए फायदेमंद होंगे। यूके मॉरिशस का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार बना रहता है। 2025 में यूके की ओर 130 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से अधिक का माल निर्यात किया गया। वहीं दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार लगभग 1.8 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का रहा, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 380 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दर्ज किया गया। ये मजबूत आर्थिक आधार इस नए एमओयू के साथ और मजबूत होगा। मॉरिशस में बरतानी उच्चायुक्त पॉल ब्रमल ने कहा, हम एक साझा इतिहास से साझा समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। यूके और मॉरिशस घनिष्ठ साझेदार हैं। पिछले वर्ष हमारी द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का रहा, जो लगभग 15% की वृद्धि है। ये संबंध लगातार मजबूत हो रहा है। एक सुदृढ़ रणनीतिक व्यापार साझेदारी स्थापित करके हमारा मकसद ऐसा तंत्र विकसित करना है, जिसके माध्यम से हमारे दोनों देशों के व्यवसाय और सरकारें मिलकर प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इससे व्यापार से जुड़े मुद्दों का सक्रिय रूप से समाधान किया जा सकेगा, हमारे संबंध और मजबूत होंगे तथा मॉरिशस के विजन 2050 के लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोग मिलेगा। इस साझेदारी को ठोस निवेश में बदलने के मकसद से मॉरिशस यूके बिजनेस फोरम की स्थापना की जाएगी, ताकि दोनों देशों के हित में सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
2: भारत में संसद ने कल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक रोकने से जुड़े कानून में संशोधन करने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया। इस कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। ये विधेयक सोमवार को पेश किया गया था। इसे कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए गए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद संसद में लाया गया। करुणा लालू को सुनते हैं।
3: बुधवार को लोकसभा ने प्रश्न पत्र लीक रोकने संबंधी कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। संशोधित कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों की नारेबाजी भी जारी रही।
4: उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा

0: सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई को लोकसभा में पेश किया। ये विधेयक उन बड़े छात्र आंदोलनों के कुछ दिनों बाद लाया गया जिनका नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था और जिनके कारण धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लोकसभा में बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की।
1: पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 एज पास्ड बाय द लोकसभा मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। द बिल आल्सो टेस्टिफाइज that this government does not stand on prestige. We never stand on prestige. We are open to healthy inputs. We are open to constructive suggestions from all quarters. And that is exactly the reason why, in the wake of the recent sequence of events, Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children.
0: उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक दर्शाता है कि सरकार अपने अनुभवों से सीखने के लिए तैयार है। आज राज्यसभा में इस बिल को प्रस्तुत किया गया।
2: दुनिया भर में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखने या सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही एक घटना है एल साल्वाडोर में, जहां कई अपराधों के लिए एक व्यक्ति को 1000 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
0: एल साल्वाडोर की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए गिरोह के सदस्यों को 1000 वर्ष से अधिक की व्यक्तिगत कारावास की सजा सुनाई है। लंबी सजाएं दक्षिणपंथी राष्ट्रपति नायब बुकेले द्वारा 2022 में शुरू किए गए गिरोह विरोधी अभियान के तहत दी गई। इस अभियान के दौरान अब तक 90,000 से अधिक कथित गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से कई को देश की कुख्यात उच्च सुरक्षा जेलों में रखा गया है। उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग उइगुर क्षेत्र के थियानशान पर्वतों में बर्फ से ढके कार्लिक हिमनद यानी कि ग्लेशियर के आसपास खिलने वाली दुर्लभ स्नो लोटस अब पूर्ण पुष्पन यानी फुल ब्लूम के दौर में पहुंच गए हैं। ये फूल 3,600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर चट्टानों के बीच उगते हैं, जहां हवा अत्यंत पतली होती है और मौसम बेहद ठंडा रहता है। सूर्य की रोशनी में इनकी लगभग पारदर्शी पंखुड़ियां हल्की हवा के साथ धीरे धीरे लहराती हैं। ये फूल एक अनूठा और मनमोहक उच्च पर्वतीय परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। ग्रीस के केप सुनियन स्थित प्राचीन पोसिडन मंदिर के ऊपर रात के आकाश में शानदार बकमून ने अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। गुरु पूर्णिमा का चंद्रमा जब इस ऐतिहासिक स्मारक के पीछे से उदित हुआ तो फोटोग्राफरों ने इस मनमोहक पल को अपने कैमरे में कैद कर दिया। हर वर्ष दिखाई देने वाली इस खगोलीय घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्काई वॉचेस ग्रीस के सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक पर पहुंचे। प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन इतिहास का ये अनोखा संगम सभी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया।
2: और अब मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व से आने वाले बादलों का असर आज रात से मौसम पर पड़ने लगेगा। देश भर में बादल घिरे रहेंगे। पूर्व और ऊंचे इलाकों पर आज रात और कल सुबह बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरे छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह

और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। फॉरेस्ट पार्क हेलनोट रोड इल्फोर्ड इंग्लैंड में 63 साल की 63 ईयर ओल्ड की श्रीमती रूपा मंगरू, जो गोबिंद मंगरू की बेटी थी और जो पहले बालांस सुरीनाम रहती थी, की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार शनिवार 1 अगस्त को मॉरिशन समयानुसार सुपहर बाद के 3:30 बजे किया जाएगा। क्रीमेशन इन इंग्लैंड ऑन सैटरडे 1 अगस्त एट 3:30 PM। मेजुनेट रोड रिविया डिजांगी में 72 साल की 72 ईयर ओल्ड की श्री ठाकुर देव गोराया, जो गौसों साधु से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल उनकी पत्नी स्वस्ति रामदू के घर मेजुनेट रोड रिविया डिजांगी से उठाकर कांचाबल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 3 PM। मधुलेन पिची वैश्य सैंपियर में 70 साल की 70 ईयर ओल्ड के श्री कृष्ण कुमार बंसरोपन, जो क्रैश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर मधुलेन पिची वैश्य सैंपियर से उठाकर सेकोस्तांस सैंपियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 10 AM। महात्मा गांधी रोड फोंजिसाक में 55 साल की 55 ईयर ओल्ड की श्रीमती विश्वानी रामखिलावन, पैदाइश नाम तिमल और जो विश्वानी से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे अमित रामखिलावन के घर महात्मा गांधी रोड फोंजिसाक से उठाकर फोंजिसाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 10 AM। लापे जेरार बाक्स स्ट्रीट पीतो में 81 साल के 81 ईयर ओल्ड के श्री व्यासदत्त रामदोस, जो सुरेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी रमावती रामदोस के घर लापे जेरार बाक्स स्ट्रीट पीतो से उठाकर पीतो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 10 AM। रॉयल रोड मोसलमान सेंट आंद्रे में लुलू सुपर मार्केट के पास 82 साल के 82 ईयर ओल्ड के श्री चित बहाल राम सोहक, जो हरिदत्त से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले एजुकेशन ऑफिसर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी माया देवी राम सोहक के घर रॉयल रोड मोसलमान सेंट आंद्रे लुलू सुपर मार्केट के पास से उठाकर त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 10 AM। मुसलमान VOS लाल माटी में 59 साल की 59 ईयर ओल्ड की श्रीमती पूर्णिमा बुलक, पैदाइश नाम नक्चेदी और जो माया से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके पति बुजीदेव बुलक के घर, जो नंदित बुलक से जाने जाते हैं, के घर मुसलमान VOS लाल माटी से उठाकर लावंचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 9:30 AM। एवेन्यू ला फोर्श रूद बासिन कैथोबोन में 90 साल की 90 ईयर ओल्ड की श्रीमती तयवंती सीतल, पैदाइश नाम नवरतन और जो तयवंती सीतल से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे नीतीश सीतल के घर एवेन्यू ला फोर्श रूद बासिन कैथोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 1 PM। राजा रोड लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे में 84 साल के 84 ईयर ओल्ड के श्री धर्मानंद उगातू, श्री धर्मानंद उगातू जो धर्म से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे संजय उगातू के घर राजा रोड लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे से उठाकर लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 11 AM। शुक्र।

0: में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Musti
2: RM2
1: Radio Musti
3: Pour le Leu, ce 17e anniversaire, du lait Omega 1 kg, acheté 10 sachets, gain un spaghetti en cadeau, pour 6, 399 roupies. Saucisse, qu'est-ce qui nous glue, 340 grammes, 37 roupies 95. Tweet, ice cream, 1.8 litres.

0: और एम टू
1: रेडियो मस्ती रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
0: और एम टू

वेल वेल छुड़ा के दामन आप कहाँ जाएंगे जहाँ जाइएगा हमें ही पाइएगा It's already 6:52 and चलिए हम सुनने के बाद दिव्या का साथ है On the waves of radio मस्ती थोड़ी देर में हमारी और आपकी मुलाकात जरूर होने वाली है जहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए योर इवनिंग लाउंज

0: क्या बात है, इश्क की जंजीरों में सब लोग तो बंद ही गए हैं और कुछ और भी लोग हैं जो बांधना चाहते हैं इस जंजीर में। एंड प्यार का जंजीर तो कुछ ऐसा ही है, मतलब खुद आप लोग सरेंडर करते हैं और कहते हैं ना कि प्यार में जो भी लोग सरेंडर करते हैं बस उसके सामने प्यार खुद झुक ही जाता है। वेल, 7:07 हो चुके हैं। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल थर्सडे इवनिंग। एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है ऑफकोर्स RM2 रेडियो मस्ती पर, एंड दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। रोज़ जब आपसे हम बाय कहते हैं तो हम यही बस वेट करते रहते हैं कि कब फाइनली 7 बजे होगा और हमारी और आपकी मुलाकात होगी और हमारी आपस की कुछ बातें भी होंगी। एंड मी हम बस इसका वेट करते रहते हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद जो फीलिंग्स उभर कर सामने आते हैं, जो वाइब्स आप लोग अपने मैसेजेस के ज़रिए भेजते हैं ना, वो शब्दों में बयान ही हो सकती हैं। एंड आई जस्ट कॉन्ट फाइंड वर्ड्स टू से कि आप लोग हमारे लिए कितना मायने रखते हैं। और आपके मैसेजेस देखने के बाद कभी कभी हम अकेले में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और वो जो फील गुड वाला फैक्टर है ना जो आप हमारे गीतों में ढूंढते हैं वो आपके मैसेजेस के ज़रिए हमें मिल ही जाता है। सो दिल से आपको हम शुक्रिया कहना चाहते हैं टू ऑल दोज जो मैसेजेस भेजने वाले हैं, जो टाइम निकाल कर हमें याद करने वाले हैं और वक्त निकाल कर किसी को पूछना कि सब ठीक हैं और आपका दिन कैसा गया। दीज आर द मैजिकल वर्ड्स ड्यूरिंग द इवनिंग जो आप किसी से पूछ सकते हैं। ट्राई इट और हमें बताइए कि आपके लिए ये कैसा काम कर गया। एंड बिलीव मी, अगर आप थके हारे खुद थके हुए हैं लेकिन फिर भी दूसरों को राहत देने के लिए आप उनको एक प्यारा सा मैसेज भेजेंगे और पूछेंगे कि हाउ आर यू एंड हाउ वाज योर डे, बिलीव मी उनके होंठों पे एक वाइड एंड ब्रॉड स्माइल आ ही जाएगा। सो चलिए हम तो आपसे ये ही पूछने वाले हैं कि आपका दिन कैसा गया एंड सब कुछ ठीक ठाक है, आप कैसे हैं। ज़रूर हमें लिख भेजिए ऑन 5499-1294, वेटिंग फॉर योर मैजिकल मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर विच इज़ 5499-1294।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2
1: Radio Masti।

0: पर कोई जोर नहीं होता है, दिल थोड़ा मजबूर हो जाता है और कभी-कभी दिल बेकाबू भी हो जाता है। अब क्या करें, जब दिल को प्यार होता है ना तो कहाँ किसी की सुनता है। इसीलिए आप दिल को समझाने के बजाय उनको थोड़ा सा और प्यार करने के लिए थोड़ी सी छूट दे दे और थोड़ा सा और बढ़ावा दे दीजिए, क्योंकि प्यार तो दिल करके ही रहता है। वेल दैट वाज अ ब्यूटीफुल गाना टेकन अप फ्रॉम द मूवी इम्तिहान, कुमार सानू एंड बेला की आवाज़ों में। चाह तो बहुत ना चाहे तुझे, हम भी कभी ऐसा कहते हैं ना कि किसी को नहीं चाहेंगे और ज़िंदगी में तो एटलीस्ट हम बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, कमबख्त दिल को प्यार हो ही जाता है, है ना। चलिए, इट्स ऑलरेडी 7:29 टू ऑल दोज हैविंग देयर मील राइट नाउ, आपको विश करेंगे बन अपेची शुभ आहार। साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपका मैसेज आया है, नमस्ते दिव्या जी, प्लीज़ अगला गाना संगीता और उनके परिवार के लिए मोताई ब्लॉन्श से, धन्यवाद। आपको भी एडवांस में शुभरात्रि। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त शायद काम करते करते हमारा साथ दे रहे हैं, आपको भी हम विश करेंगे बों कुहाश एंड बस हमारा साथ ऐसे ही आप लोग देते रहिए। आपका काम भी ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारे गाने कभी खत्म नहीं होंगे। सो चलिए, यहाँ पर दिव्या का साथ है, योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। जितने भी सारे खूबसूरत गाने हैं उनको हम समेट समेट कर बहुत ही प्यार से अपने आंचल में बांध कर आए हैं और खुशी बनकर आपके दामन में बिखेरना चाहते हैं। एंड चलिए, बाहें पसारे आप उस पार से हमारा साथ दे रही हैं तो आप तक बहुत बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बेशुमार प्यार भेज रहे हैं और प्यार के लिए तो कभी मना नहीं करना चाहिए। जितना प्यार आपको ज़िंदगी में मिले उतना ही कम है, ये तो हमें पता है ही। इसीलिए कहते हैं ना कि गम बांटने से थोड़ा और कम होता है और खुशी बांटने से और दुगनी होती है। इसीलिए जितना हो सके आप खुशी और प्यार बांटते रहिएगा, क्योंकि प्यार में ही खुशी है और खुशी में ही प्यार है। सो चलिए, यहाँ पर हमारा और आपका साथ तो है ही, कुछ और खूबसूरत गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बट डोंट फॉरगेट, कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

हाँ, गाने से आप हर एक सिचुएशन को रिलेट कर सकते हैं. शायद ये गाना आपके सिचुएशन से एकदम फिट होता है, जहाँ पर आपका दिल भी कहता है कि दिल में कोई नहीं उतरा है, बस वही भाग गया है या फिर भाग गई है और ज़िंदगी अब उसके साथ ही बसर करना है. कभी ऐसा होता है ना कि आप उनके बारे में सोचते हैं और आप ये भी सोच लेते हैं कि किस तरीके से आप दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, किस तरीके से आप उनको स्पेशल फील कराएंगे. लेकिन एक बार वो इंसान, वो शख्स आपके ज़िंदगी में आ जाए तो आप ये सारी कोशिशें करना बंद कर देते हैं, विच मीन्स टेकिंग द अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड. ये आपको बिल्कुल नहीं करना है और प्यार को बिल्कुल भी कभी फेड नहीं होने देना है. और जिस तरीके से गाड़ी का मेंटेनेंस होता है ना, उसी तरीके से प्यार का मेंटेनेंस भी होता है. मतलब रोज़ रोज़ उस प्यार को मेंटेन करना, इट्स नॉट ईजी. और कहते हैं ना कि कभी कभी प्यार में इट्स नॉट चीटिंग विच किल्स अ रिलेशनशिप, एट टाइम्स इट्स ऑल्सो लेजीनेस. और हम कहते हैं ना कि बाद में, और ये बाद में एक आदत बन जाती है और हम कोशिश कभी नहीं करते हैं और ये कोशिश एक रूटीन बन जाता है और बाद में वो प्यार गायब भी हो जाता है. बट प्लीज़, कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी खुशी हासिल होती है, तो इसी तो उसी तरीके से छोटी छोटी जो आप गलतियां करते हैं उसी से एक दिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें और बेटर है कि आप थके हारे घर वापस आए तो अपनों को देखिए, हंसिए, मुस्कुराइए एंड बी ग्रेटफुल कि आप सही सलामत घर पहुँचे हैं. एंड जस्ट ट्राई टू स्पेंड द मैक्सिमम टाइम विद योर फैमिली और कभी कभी फ्रेंड्स के साथ भी. अगर आपके कुछ पड़ोसी हैं जो आसपास रहते हैं, आप उनके साथ एक गुड रिलेशन रखते हैं, तो बिल्कुल आप प्यार से सबसे बात कीजिएगा. और ये वक्त सिर्फ आपका ही है. काम कर लेने के बाद जब घर आप वापस आते हैं तो आपको काम का प्रेशर भुला देना है और बस ये घर परिवार का जो मोड है वो आपको ऑन रखना है. तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं और कुछ हमारी ऐसी बातें हैं जो आप इनटू कंसिडरेशन ले रहे हैं एंड दैट यू विल पुट इट इनटू प्रैक्टिस. कभी ऐसा होता है ना कि हम जिंदगी में कुछ गलतियां भी करते हैं बट हम इसका एहसास नहीं कर पाते हैं और कभी कभी बाकी जो लोग बोलते हैं तभी जाकर इसको हम रियलाइज़ करते हैं. सो इसीलिए कहते हैं ना कि बेटर लेट दैन नेवर. और इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों के साथ भी एक अच्छा कम्युनिकेशन रखें ताकि दूसरों से आप कुछ गुड एडवाइजेस भी हासिल कर पाए. तो चलिए, यहाँ पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक इन योर इवनिंग लाउंज. कुछ एडवाइजेस के साथ साथ ऑफकोर्स प्यार भरी बातें भी करेंगे और आपके एडवाइजेस भी हम पाना चाहते हैं अबाउट लव. आपको क्या लगता है किस चीज़ से प्यार और बढ़ सकता है और आप की क्या राय है? डेफिनेटली डू सेंड योर मैसेजेस ऑन 54991294. इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो.

लेकिन ध्यान रहे चलते चलते इतना भी दूर नहीं जाना है कि आपके अपने पीछे छूट जाए, आपको साथ साथ चलना है। और अगर कभी भी ऐसा होना कि आपको लगता है कि आप एकदम से स्पीड अप कर रहे हैं, तो एक बार के लिए पलट कर ज़रूर देखना, आपके अपने शायद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए उनको अपने कहते हैं, क्योंकि बस कहते हैं ना कि ज़िंदगी में नो वन विल विश गुड फॉर यू बेटर दैन योर पेरेंट्स, बेटर दैन योर डियर एंड नियर वंस एंड योर क्लोज्ड वंस। वैसे हमेशा हम यही बात कहते रहते हैं कि खून से रिश्ते से बढ़कर दिल का रिश्ता होता है, और अपनों के साथ भी आपका दिल का रिश्ता भी है, और इस दिल के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए आपस में प्यार का होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर प्यार है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ते रहने देना चाहिए, दिन ब दिन ये रिश्ता और भी खूबसूरत बनता जाता है। चलिए, यहाँ पर हम तो रोज़ रोज़ आते हैं, मेहनत करते हैं, आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए हम अपना एफर्ट डालते हैं, अपनी तरफ से गाने

0: चूज करके लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आप जब भी हमारे गीतों को सुनेंगे तो आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे जिससे आपको अच्छा महसूस होगा और इससे हमें दुगनी खुशी मिलती है। सो चलिए यहाँ पर बातें करते करते, गाने सुनाते सुनाते हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं द सेकेंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज, जहाँ पर एक बार फिर से दिव्या का साथ है टिल 9 PM। इट्स अ वंडरफुल थर्सडे इवनिंग। आपके यहाँ माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, डू लेट अस नो। आपने खाना खा लिया, आप बर्तन मांज रहे हैं, किचन साफ कर रहे हैं, या फिर कल की तैयारी कर रहे हैं काम पर जाने के लिए, और आप अगर इस वक्त काम पर हैं तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत सारा प्यार। जीतो और मेहनत आप करते रहिए, इसका फल आगे चलकर ज़रूर आपको मिलेगा। बस हमारा साथ आप लोग देते रहिए एंड थैंक यू सो मच। चाहे आप मॉरिशस में हैं या अब्रॉड में, यू ऑलवेज ऑलवेज चूज अस एज योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, और ये जानकर बहुत ही अच्छा लगता है।
1: Evening Lounge, Evening Lounge,
2: RM2,
1: Radio Masti,

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: कहते हैं कि किसी का पहला प्यार बनना स्पेशल होता है, लेकिन किसी का आखिरी प्यार बनना ये तो सबसे ज्यादा खास है। और इससे भी ज्यादा खास आपको पता है क्या है? कि आप किसी का पहला और आखिरी प्यार बने। This is the most wonderful feeling in the whole world, to be loved and to feel seen, to feel heard and to feel special. चलिए उम्मीद करते हैं कि हम भी सक्सीड हो पा रहे हैं आपको स्पेशल फील कराने में हमारे खूबसूरत गीतों के साथ। अरमान मलिक की आवाज़ में वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना पहला प्यार, स्पेशली गोज टू ईच एंड एवरी वन जो इस वक्त कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, प्यार के लिए एक पल काफ़ी नहीं होता है और कभी कभी ज़िंदगी भर भी काफ़ी नहीं होती है। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके की इंसान से प्यार करते हैं। कहते हैं कि कभी कभी प्यार में एक पल ही काफ़ी है और कभी ज़िंदगी भर भी काफ़ी नहीं होता है।

प्यार का एहसास भी लोगों के लिए अलग होता है, प्यार का वर्जन भी लोगों के लिए अलग होता है। और वैसे कहते हैं ना कि जिस शख्स से आप प्यार करते हैं, दे डिफाइन योर हार्ट, दे डिफाइन योर लाइफ, और उस तरीके से यू गेट टू डिफाइन लव बाय लविंग देम। आपके लिए प्यार क्या है, ज़रूर हमें लिख कर बताइएगा ऑन 5499-1294।

0: ऑलरेडी 8:42 एंड चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस की ओर. हाय गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम, वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर रानी श्वेता हुकुम ऑफ बनाकर फ्रॉम हबी रोशन. जस्ट वांट टू टेल हर दैट आई लव हर सो मच. एंड आप कहते हैं गुड इवनिंग दिव्या जी, जस्ट अ क्विक शाउट आउट टू से आई एम लविंग योर सॉन्ग सिलेक्शन टुनाइट. यू हैव गॉट द परफेक्ट मिक्स गोइंग, कीप अप द अमेजिंग सॉन्ग्स कमिंग एंड थैंक्स फॉर मेकिंग द इवनिंग सो मच ब्राइटर विद सो मच of positive words. It means a lot. Ravi ji, aap hain Rojbhun se and saath dene ke liye aapko bhi hum shukriya kahenge. And yahan par aap kehti hain, hi namaste, I'm Jan from Kaolin, dedicating a romantic song to my love Janu, aur unka naam hai Monu jo abhi van drive kar rahi hai. Aur chaliye Monu ke liye agla gana. And aapne ye 8:15 ko hume bheja tha. I guess Monu to abhi ghar pahunch bhi gaye honge aur shayad khana bhi kha liya hoga. And in case you're listening to us, thank you so much aapke message ke liye, and so sorry ki hame aapka message thodi der se padhne ko mila. So chaliye kuch aur खूबसूरत गीत के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे. इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 पीएम.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: आरएम2
1: रेडियो मस्ती.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: आप हैं तो हम हैं और इसीलिए तो आपसे बार बार मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं एंड इट्स लाइक फीलिंग ग्रेटफुल एंड एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन जो हमेशा रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहते हैं. वेल 8:55 होने को हैं और इसी गीत के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल एक अलग ही मूड के साथ फॉर योर फ्राइडे इवनिंग. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

विशिंग यू ऑल अ लवली इवनिंग माय डियर लिसनर्स. स्वीकार करें नीतूषा का करजोर प्रणाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? सो रेडी हो जाए हमारे हम सफर बनने के लिए 3 घंटों का सफर भाई. लेट नाइट ग्रूव्स अप टिल मिडनाइट, साथ निभाते रहिएगा.

साथ गानों के साथ म्यूजिक के साथ प्यार मोहब्बत इश्क लमों के बारे में भी बात करेंगे। हाँ रोमांटिक हाँ। वैसे प्यार सिर्फ किसी का हाथ थाम लेने का नाम नहीं है बल्कि उसका साथ हर परिस्थिति में निभाने का नाम होता है। जब प्यार में डेडिकेशन और समर्पण जुड़ जाता है तब रिश्ता सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी बन जाता है। कंपैशन हमें सिखाता है कि किसी के दर्द को बिना शब्दों को महसूस करना भी प्यार का सबसे बड़ा रूप होता है।

समर्पण क्या है? समर्पण का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं, बल्कि अपनी खुशियों में किसी और की मुस्कान को भी जगह देना होता है। जहाँ डेडिकेशन होता है, वहाँ भरोसा जन्म लेता है, और जहाँ भरोसा होता है, वहाँ प्यार हर दिन और गहरा होता चला जाता है।

अपनी जिंदगी में किसी ना किसी जंग से गुजर रहा होता है, इसलिए अगर हम किसी के लिए दो प्यार भरे शब्द बोल दे, उसकी बात ध्यान से सुने तो शायद उसका बोझ हल्का हो जाए। कंपैशनेट दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है जिसे हर दिल समझता है।

रिश्ते हो, नाते हो, वेल रिलेशनशिप क्या है ये? रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं, डेडिकेशन से मजबूत बनते हैं। जब कोई हर दिन छोटी छोटी बातों में भी अपनी परवाह और अपना वक्त देता है, तब प्यार सच में महसूस होता है। समर्पण वही है दोस्त, जो मुश्किल वक्त में भी साथ छोड़ने नहीं देता।

सफर का सफर दिल से शुरू होता है और समर्पण पर जाकर मुकम्मल होता है। जब हम किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, तब हम सच्चे प्यार का मतलब समझने लगते हैं।

मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं की जाती है बल्कि रोज अपने व्यवहार बिहेवियर से दिखाई भी जाती है। एक प्यारी सी मुस्कान, एक सच्चा शुक्रिया थैंक यू, एक संवेदनशील, ये सब कंपैशन के रूप है जो दुनिया को और खूबसूरत बना देती है।

के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती है। हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी है किसी को एहसास दिलाने के कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। डेडिकेशन का मतलब है हर दिन अपने रिश्ते को और बेहतर बनाना।

प्यार की सबसे बड़ी निशानी महंगे गिफ्ट्स नहीं बल्कि वक्त और समझ होती है। किसी की बात को ध्यान से सुनना, उसके जज्बात की इज्जत करना और उसका हौसला बनना ही असली डेडिकेशन है। प्यार।

प्यार भरा दिल दयालु दिल हजार कठोर शब्दों से ज्यादा असर करता है डू यू नो जब हम किसी की गलती को माफ करना सीख जाते हैं और उसके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं तब हम सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं बल्कि प्यार के सच्चे प्रतिनिधि बन जाते हैं

ऑलरेडी इन द लास्ट आवर डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. एंड प्यार की बात हो रही है तो प्यार तब और खूबसूरत लगता है जब उसमें भरोसा, समर्पण और पेशेंस हो. जल्दबाजी रिश्ते तोड़ सकती है, लेकिन डेडिकेशन उन्हें जिंदगी भर के लिए जोड़ देता है.

असली दौलत क्या है, योर फैमिली, योर किड्स, योर पेरेंट्स, या फिर दौलत ही पैसा? हम तो मानते हैं कि इंसान की असली दौलत उसका बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसका बड़ा दिल होता है, जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, उनके लिए वक्त निकालता है, और जो बिना मतलब मदद करता है, वही सच में अमीर होता है।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: सच्चा प्यार कभी कमजोरी नहीं है, वो इंसान को और मजबूत बना देता है। समर्पण उसे हिम्मत देता है और कंपैशन उसे इंसानियत से जोड़ कर रखता है। That's why प्यार हमेशा जीतता है।

देखते ही देखते वक्त कैसे बीत गया पता भी नहीं चला. टाइम टू से बाय बाय दोस्त. लेकिन जाने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार गिफ्ट किसी से बेइंतहा प्यार करना और उस प्यार को डेडिकेशन कंपैशन के साथ निभाना होता है. जब हम बिना किसी शर्त के किसी की खुशी की दुआ करते हैं, उसके दर्द को अपना समझते हैं और उसके सपनों को पंख देते हैं, तब जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं रहती बल्कि एक खूबसूरत इबादत बन जाती है. प्यार वही रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है और समर्पण वही ताकत है जो हर रिश्ते को अमर बना देती है. सो कीप लविंग एंड शेयरिंग हैप्पीनेस. टेक केयर. बाय बाय. स्टे सेफ. शुभ रात्रि.

0: होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्क।
1: ये जो हुआ सच कहो कैसा हुआ?